आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरण की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना चाहता है। सदैव उसकी सेवा को स्वीकार करते रहना। हे दातिये,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

की फुहार लाएगी हर दिन जोहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरे इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं, वो मैं अब कर सकता हूं। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स इज की पास्ट। और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और दो घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ न कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
1: देयर वाज नथिंग टू टॉक अबाउट,
0: यू नो, बिकॉज प्रेजेंट में आते ही ट्रैफिक दिख रहा था फिर सामने। So actually how to be in really in present, us pe baat thoda sa karna chahunga.
1: It is very important when we are saying being in the present, ki present moment mein my state of mind kya hai, hota kya hai ki jaise hi hum past ya future ke bare mein sochte hain, pehle sochte hain fir discuss karte hain, to aap dekhenge ki aapki state of mind fluctuate hone lagti hai. पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें ये सारी इमोशंस, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती है। बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट इट डजेंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी वेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा, यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान वॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर टूमोरो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पी तो मैं ऑलरेडी
0: हूं
1: अभी हूं। नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम, हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहे, yes this will happen but my happiness is not dependent.
0: I think somewhere what we need to do is that see meri abhi present mein meri situation kya hai, you know, meri mental state kya hai, phir main past ko bhi analyze kar sakti hu aur future ke bare mein bhi anticipate ya jo planning hai wo ki ja sakti hai, you know?
1: Lekin jab bhi wo sab kuch kar rahe hain, keeping the focus on my state of being, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो, मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now my mind is still blaming other people for the hurt, and that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahi main theek hu, main stable hu, mujhe zarurat nahi lagegi, kyunki main unko ab zimmedar nahi thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं कर

0: अच्छा,
1: लेकिन वो दो जने जब हों तो और दो घंटे हमने निकालने तो बात क्या करें फिर?
0: अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप दो जने बात कर रहे हैं, wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident? Maine kya learn kiya? How did I grow and how I am growing?
1: That's what I did, you know.
0: Yeah, that's
1: what I'm saying.
0: See, as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga? Aap empowered hote jayenge. And aapki jo wo discussion hogi, agar do logon ke saath hai, aapki discussion dusre ke liye bhi empowering hai. Kai bar hame realize hi nahi hota ki jab hum ek dusre ko phone karke ya ek dusre se baat karte hue ghanton ghanton unko apni wo wali kahaniyan sunate rehte hain
1: jahan logon ne
0: jahan logon ne hame dhoka diya, the person is not interested sometimes. And hum kya kar rahe hain? Apna dard, अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं. पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग हर्ट एंड पेन डजंट क्रिएट एनी
1: एक्चुअली क्रिबिंग.
0: कंप्लेनिंग विद लाइफ,
1: क्रिबिंग. हाँ, क्रिब करते रहना, कंप्लेन करते रहना,
0: क्योंकि फिर क्या होता है, वो हर्ट डिस्कस करते करते हम अभी पेन में चले जाते हैं. दैट इज वेन हमने पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया, फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा. एंड देन माई एवरी डे इज इन hurt. It's not just yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then, वो मेरा एक दर्द में रहने का ही संस्कार बनता जा रहा है.
1: So somewhere that is needed to be checked. So वो हम check करने लग गए हैं. और wonderful, you know, the way it is coming out. कि जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
0: जैसे आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
1: अनदर फैक्टर व्हिच एक्चुअली आई विल से नाउ आई एम वेरी केयरफुल व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग इट टेक्स अवे माय हैप्पीनेस. इज दैट आई गेट सो स्ट्रेस्ड आउट एंड लाइक वी आर ऑल लिविंग इन दिस एरिया. मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुंचते ट्रैफिक में दो घंटे आपको लगते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीजें वहां पे होनी है या करवानी है, सो स्ट्रेस्ड आउट एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज टू बी डन अबाउट दैट?
0: उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें, इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन. लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, एंड दैट्स बिकम वन ऑफ द
1: मोस्ट डिफिकल्ट. आई डिडंट से वर्स, बट यस, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज आई एम सीइंग चिल्ड्रन गोइंग थ्रू सो मच ऑफ अगेन स्ट्रेस. एंड इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस, यू नो, अपने ही थॉट प्रोसेस को ऐसे क्रिएट करते हुए. अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क शिवानी इज दैट इज इट द स्ट्रेस वी आर क्रिएटिंग और इज इट लाइक यू नो ऐसे ऐसे सिचुएशंस जो आती जाती हैं और हमने अपने आप को कॉम्पिटिशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप?
0: ये एक स्टेटस सिंबल है आज भी. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मीन्स तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं.
1: उनको क्या फर्क पड़ता है?
0: अगर कोई कुछ कर रहा है, समवन इज इन द रेस एंड वो कॉम्पिटिशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज वाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है,
1: ये तो होना ही चाहिए. हमसे लाइक मेरा बच्चा तो हमसे देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
0: सी, शी इज नॉट इवन कंसर्न्ड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीजों को सेम कैसे बोल सकते हैं?
1: लेकिन हम दोनों चीजों को एक ही मानने लग गए हैं.
0: अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्न्ड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है तो हम पढ़ने भी अगर बैठते
1: पढ़ाई
0: तो हमसे पढ़ाई नहीं होती और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन क्योंकि माइंड तो मन नहीं तो पढ़ना बैठ के तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है तो वो उसमें कैसे जाएगा और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए इट डजंट रियली हैपन दैट वे
1: एंड देन वी से कि हमने इतना काम किया था और
0: क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई तो केयरलेस मिस्टेक यूज टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड कि और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना इजी था एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योरसेल्फ हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ But that itself is a sign कि mind alert नहीं था तो mind ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं कोई चीज होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था लेकिन ये है कि सब कुछ पढ़ता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया दिस इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लैक ऑफ अलर्टनेस क्योंकि माइंड पे वो एंग्जायटी वो स्ट्रेस है तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू इनफैक्ट यू शुडंट बी अंडर स्ट्रेस बट यू हैव टू बी इनफैक्ट वेरी वेरी काम आजकल तो सिखाया जाता है कि एग्जाम से एक दिन पहले बी रिलैक्स्ड बी काम क्योंकि जितना आपने किया है इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आप बेस्ट लेकर आए बजाय कि आप इतना अपसेट हो जाएं कि जितना किया है लेकिन ये बिलीफ सिस्टम भी हम ही तो बच्चों के अंदर डालते हैं अगर बच्चा आराम से है आराम से पढ़ रहा है तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको कल एग्जाम है क्यों क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई हुई है हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग टू अस इट इज नॉट कि एग्जाम डिफिकल्ट है हम क्या कहते हैं प्रेशर बहुत है कॉम्पिटिशन बहुत है या सिलेबस बहुत है इट्स नॉट दैट आई थिंक हमने इससे ज्यादा सिलेबस किए हुए हैं लेकिन अभी है कॉम्पिटिशन है लेकिन जैसे ही मैं वो कॉम्पिटिशन को एंटिसिपेट करती मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ आई डू नॉट पास इन दैट कॉम्पिटिशन तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया फियर जैसे ही क्रिएट किया दैट इज स्ट्रेस फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है नो वन इज स्केर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम मुझे जितना आता है आई विल गिव माई बेस्ट फियर किस चीज का है
1: पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू
0: अगर मैंने उतना अच्छा सी दैट इज वाई बी से फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा मुझे अगर नई एडमिशन मिला मेरा करियर ऑल दोज थॉट्स तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है इसको अगर हम नेचुरल करते जाते ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं या जैसे आपका इस तरह से एग्जाम है कोई ऐसी चीज होती ना अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर
1: कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं पूरा का पूरा पेज पड़ जाते हैं हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता
0: दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड कि मन कुछ एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की दैट इज कंसंट्रेशन एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स कंसंट्रेट कैसे करें इट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है. इट इज जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो, हम क्या करते पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रही है, कैसे अभी चल
1: बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ, प्रैक्टिस नहीं की हुई जब.
0: अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे, वो साइलेंस में बैठते ही तो और

0: सारी वो फियर वाले
1: तो डरने लगते हो और भी डर रहे होते हो.
0: यस इट वॉन्ट हैपन दैट टाइम एंड दैट इज वाई ये जो हम आर्ट ऑफ थिंकिंग कि किस तरह की थॉट्स क्रिएट करने हैं ये अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते आए हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस क्रिएट करें फिर स्ट्रेस को कैसे फिनिश करें. लेकिन स्ट्रेस क्रिएट होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील. अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो बट बी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्यूटली लो एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो. How can you do well? It's not possible. The stress से लेकर कई एक belief systems हैं जिनको अगर हम check करें और change करें और फिर कल चलें अपने जीवन की यात्रा में आधा काम तो वहीं हो जाएगा. क्योंकि जैसे हमने कहा tension तो normal है. just ask anybody. आप 4 साल के बच्चे से ले लो and of course उस senior age group तक चले जाओ. Tension होती है आपको किसी को tension होती है तो कहेंगे tension तो सबको होती है ये कौन सा question है. Tension normal है tension natural है तो अगर वो normal है तो आप उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे.
1: Normal है तो होती है तो क्या करना होता है.
0: नहीं नहीं तो वो तो फिर normal है. You know let's say अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है मैंने बोल दिया उसको तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज है जो अननेचुरल है ये दर्द है ये मेरा नेचुरल नहीं है कंफर्ट लेवल तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूं. लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है तो क्या होगा उसी के साथ चलना शुरू कर
1: देंगे. इनफैक्ट उसके ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना बाकी सारी चीजों पे काम करते
0: आप नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशन है कि जो चीज नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे आज आपको थोड़ा सा फीवर है तो आपने देखा थर्मोमीटर पे 100 है 101 है तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्रायंगल मार्क जहां बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है मुझे बुखार है आई विल इमीडिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माय मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 आवर्स टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है
1: देन आई विल नॉट टेक द मेडिसिन.
0: सी दैट्स व्हाई What is normal is so important. I will take medicine only जब तक मुझे वो पता है कि ये normal नहीं है. अब tension के लिए क्यों नहीं medicine ले रहे क्योंकि हमने कह दिया ये ही
1: normal है ये तो है ये तो आज के इस पूरे युग में
0: तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये belief system को बहुत अच्छी तरह से shake करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल स्ट्रेस इज नॉर्मल दिस इज पार्ट ऑफ एवरी वन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
1: एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता तब हम उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
0: लेकिन तो भी हम उसके सोल्यूशन कहाँ ढूंढते हैं.
1: हाँ वो मुझे कहा से ढूंढ रहे होते
0: कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस दैट्स ऑल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सोल्यूशन परिस्थिति के अंदर कि परिस्थिति ठीक हो जाए किसी भी तरह परिस्थिति.
1: इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है. आपका स्ट्रेस में आना मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे.
0: तो फिर वही है ना हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है.
1: आई डोंट रिमेम्बर.
0: या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे. नहीं टेंशन होना तो नॉर्मल है और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं खुद के फेस और बॉडी.
1: ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो रिलैक्स
0: वो रिलैक्स रहो भी कैसे कहते हैं इट इज सो.
1: और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं
0: एग्जाम के टाइम पे द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट.
1: नोबडी कैन कम यू नो उसके राहुल के एग्जाम्स है ना तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते रिलेटिव नहीं आएंगे. इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट.
0: तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है उसको साइलेंस चाहिए एक अलग कमरा आप दे दो सब कुछ कर दो. लेकिन

0: घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा। जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ।
1: अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम,
0: वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो, लेकिन हमने ही वो एग्जाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता, अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है।
1: सितंबर में आएंगे, पहले फरवरी बोर्ड होंगे,
0: फिर वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये व्हाटएवर, तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है, वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है। वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रेस सीन। इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है। डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो, ये जो फियर क्रिएट हो रहा है वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर।
1: पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा, स्कूल ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ।
0: हमें क्या क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा, सिर्फ हमें एक चीज नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना। वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता। स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो प्रेशर तो है ही ना बाहर, पहले तो कभी स्कूल में आए, व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई डिडंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू, वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है। आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते, तो ठीक है प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठकर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति। मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग। तो हम में से भी हरेक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है, प्रेशर हरेक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा। आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
1: उसको तो वीक करते जा रहे,
0: डिनोमिनेटर घटता जा रहा तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा,
1: तो ऑफकोर्स इज इंक्रीजिंग,
0: बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा, एंड न्यूमरेटर इज ऑफकोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा, and stress factor is increasing very very fast. Yes. It will go beyond our control.
1: We really need to see, you know. और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं, you know, situations ही ऐसी हैं, तो हम अपने आप को उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं। वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीजें करनी है वो तो ठीक है, amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength, you know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे, तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीजों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी, बच्चे के इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊंगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा, इट्स ब्यूटिफुल,
0: एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी, हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है, जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल,
1: वेरी ट्रू। और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना, अभी तक भी तो बच्चे 10th से पहले में तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था, मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीजें कर रहा था, तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमोसफेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज्यादा आगे बढ़ाया है, तो वही तो फिर फ्लो होकर बच्चे तक जा रहा है। सिचुएशंस, टीचर्स,

स्कूल, लोग, सब कुछ कहते रहेंगे। वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा। अगेन, जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूं मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई डरती गई डरती गई। तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। यू नो इट्स एक्चुअली सो ईजी इफ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था। थैंक यू सिस्टर शिवानी। लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट, तो इस पर आप जरूर सोचें। और यू नो अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीजें करनी ही पड़ेंगी। करना और किस स्थिति में मैं करूंगा, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे। पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं, इट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत। आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है। आसान सा सोल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है। फिर देखें कि कैसे जो सोल्यूशंस निकलते हैं। थैंक यू सो मच ओम शांति, और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे। ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हमने इस एस्पेक्ट को समझा था कि किस तरह से मेडिटेशन के बाद, ये समझने के बाद कि मैं एक पावरफुल, एक पीसफुल सोल हूं, हम दिन भर उसे अप्लाई कर सकते हैं और जो मुश्किलें अभी तक आ रही थी हर सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो वो आसान होती जाती है। एक बात हमने कही थी कि इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हर बार मैं ये याद रखूंगा कि मैं एक पावरफुल, एक पीसफुल सोल हूं, तो वो प्रोटेक्शन अपने आप, वो वाइब्रेशन आ जाएंगी। लेकिन प्रोटेक्ट हमने किससे होना था? हर्ट से। कहीं ना कहीं जिंदगी में जो इंटरनल एस्पेक्ट है वो है हर्ट। कहीं ना कहीं कही हुई बात, कोई सिचुएशन हमें जरूर हर्ट करती है। इसको कैसे हैंडल करें? क्या है वो बातें जो हर बार हर कदम पे हमें हर्ट करती जाती है और फिर हम क्या रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन क्या हम बदल सकते हैं? क्योंकि हर बार हम ये कहते हैं कि डिसीजन हमारे हाथ में है। आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: हर्ट हम होते हैं, ये आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिस्टर शिवानी, जब देखना शुरू करते हैं जिंदगी को तो ये भी देखने लग गया है कि वो हर्ट जब आता है तब रिएक्शन कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब इट हैज बिकम सो नेचुरल कि हमारा रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो है वो ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं गलत होगा, हम डिप्लीट हो रहे होंगे। तो हाउ टू एक्चुअली हैंडल हर्ट?
1: अभी तक हमने यही समझ के चल रहे हैं कि द कॉज ऑफ माई हर्ट इज आउटसाइड, कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा, उन्होंने ऐसा कुछ किया। ये छोटे से छोटे लेवल से लेकर कि घर में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपकी किसी बात ने मुझे हर्ट कर दिया,
0: एंड आई लैश आउट।
1: एब्सोल्युटली। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखें तो सारा दिन में कितनी बार हम ये हर्ट, अपसेट होना, एंड यू नो हम कितने इजिली बोल देते हैं यू हर्ट मी, यू नो आपकी वजह से मैं हर्ट हो गई। तो अभी सबसे पहले तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जैसे कि मूल मंत्र है कि नो बडी कैन हर्ट मी। मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मेरे अपने हाथ में है, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता।
0: जैसे हम ये कह रहे थे कि कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलवा सकता, उसी तरह से, पर क्योंकि गुस्सा जो है वो एक आउटर रिएक्शन है, वो ज्यादा दिख रहा था। हर्ट क्योंकि इंटरनल होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम हर्ट हुए और हम लैश आउट करते हैं। वो जो बदला ले रहे होते हैं कि हमें वापस उतना ही देना है।
1: हाँ, तो जब हम लैश आउट करते हैं दैट्स एक्सटर्नल, लेकिन पहले इंटरनल पेन से गुजरे ना। वो हर्ट मतलब कि मैं वूंडेड हूँ इस टाइम। मैं ठीक थी, अभी तक स्टेबल थी, कंटेंटेड थी, संतुष्ट थी, खुश थी, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया कि मुझे चोट लग गई। और अब जिसने मुझे वो चोट लगाई है उसको तो उसका
0: रिस्पॉन्सिबल
1: नहीं पड़ेगा। मैंने ये नहीं, अवेयरनेस नहीं रहती कि दूसरे ने जो किया वो किया। चोट जो लगाते हैं वो दूसरा चोट नहीं लगाता है। कितनी चोट लगनी है, कब तक लगनी है, कब तक दर्द महसूस करना, कि मेरे अपने हाथ में है। तो व्हेन आई फील हर्ट, जब वो हर्ट क्रिएट हो जाता है अंदर, तो अलग अलग प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करते। जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स जो इमिडिएटली निकल आता वो है बदला लेने का, रिवेंज, कि आपने मुझे हर्ट किया, अब मुझे बदला तो लेना है। और इसको हमने ओवरऑल कितना ग्लोरिफाई

0: apply kiya hua hai aur isko justify bhi kiya hua
1: you deserve hai. It you, yes. you started Absolutely. You started the war
0: to kahin na kahin ye justified ho gaya hai ki jisne mere upar wo attack kiya which is in terms of pain jo mujhe dard mehsoos hua to usko uska return
1: milna bahut zaruri hai
0: usko milna chahiye aur wo return kaun dega
1: actually agar atyachar ho raha hai तो व्हाट टू डू अगेन यू नो ये सवाल उठता है कि फिर हम कुछ ना करें
0: तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना अत्याचार जब हम ये कह रहे हैं कि इफ समबडी हैज लेट अ सिंपल थिंग लाइक किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कर दिया जिससे आई एम फीलिंग बिकॉज दिस इज माय परसेप्शन हर्ट क्या है ये मेरी परसेप्शन है आई एम हर्ट ये भी तो हो सकता है कि जिसने कुछ कहा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरे अंदर ही वो सहन करने की शक्ति नहीं और आई विल कीप क्राइंग ऑन इट फॉर पता नहीं कितने दिन लेकिन मैं ब्लेम किसको ठहराऊंगी और आपने मुझे इतना दर्द दिया तो इसके रिटर्न में आपको क्या मिलना चाहिए
1: दर्द आंख का बदला आंख हाथ का बदला हाथ
0: सारा दिन में हम कितनी छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं किसी के एक्शन से हर्ट हो जाते हैं किसी के एक बोल से हर्ट हो जाते हैं कभी कभी तो बस आप सिर्फ थोड़ा सा ऐसे देख लो किसी को यू नो थोड़ा सा स्टेयर कर दो या थोड़ा सा घूरो ऐसे या एक मिनट लंबा देख लो इसे एक मदर एक बच्चे को ऐसे करके देखे ऐसे क्यों देखा मुझे एंड आई एम हर्ट यू नो इमीजिएटली आई एम हर्ट बिकॉज आई डो नॉट हैव दैट पावर नाउ टू बी एबल टू टॉलरेट एनीथिंग सो आई गेट हर्ट एंड जब मैं हर्ट हुई नाउ आई विल टेक रिवेंज क्योंकि रिवेंज हमने समझा रिवेंज इज द वे टू सेटल द स्कोर आपने किया मैंने किया बात बराबर लेकिन एक्चुअली होता नहीं है बात बराबर नहीं होती है अगर आपने किया फिर मैंने किया फिर आप करेंगे मेरे अंदर फिर ट्रिगर होगा ये एक साइक्लिक वायलेंस इंटरनल वायलेंस जिससे ये चलता ही रहेगा और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने छोटे छोटे तरह से एक दूसरे के साथ रिवेंज ले सकते हैं इवन सिंपल तरह से कि आपने मुझे हर्ट किया अब चलो अब अपना काम अपने आप करो मैं नहीं हेल्प करती मैं नहीं कोऑपरेट करती यू नो ऑफिस में भी ऐसा होता या घर पे भी ऐसा होता ठीक है अब अपने आप करो देखते हैं कैसे करते हैं अब आओगे ना मेरे पास अब मैं नहीं दूंगी दिस इज रिवेंज कई बार हम बोलते हैं कई बार नहीं तो हम बिल्कुल बोलना बंद कर देते हैं
1: वी हाँ और रोना शुरू हो जाते हैं हम यू नो एट टाइम्स वी से कि हमने उनको तो नहीं कहा कुछ
0: राइट
1: अपने अंदर हम हर्ट हैं दैट्स माई
0: राइट
1: नो दैट्स माई थिंग वी ऑलवेज
0: लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम बात करना बंद कर देंगे कितनी बार ऐसा होता कि कई कई दिनों तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं दूसरा बार बार कह रहा है इट्स ओके यू नो एवरीथिंग इज ओके मैं नहीं बात करूंगी क्यों मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ आपने मुझे दर्द दिया अब मैं आपको दर्द दूंगी आप बात करना चाहते हैं मैं बात नहीं करूंगी बिल्कुल सो इट्स ईदर समटाइम्स वी विदड्रॉ आर कोऑपरेशन और देन वी जस्ट विदड्रॉ यू नो एंड वी स्टॉप टॉकिंग एंड ये बहुत कॉमन है घर में स्पेशली बहुत कॉमन होता है पेरेंट चाइल्ड पेरेंट्स भी इस तरह से बच्चों के साथ करते हैं कि मैं नाराज हूं अब बात नहीं करूंगी बच्चा इतना गिल्टी फील कर रहा है कि ना मैंने जो गलती की लेकिन पेरेंट का अंदर कहीं ना कहीं है इसने मुझे हर्ट किया
1: अच्छा वही इसमें यहाँ पे एक बात जुड़ती है सर शिवानी की गलती का एहसास तो करवाना चाहिए ना हम हर बार ये कहते हैं कि उन्हें गलती का एहसास कैसे होगा उन्हें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने हमें हर्ट किया
0: राइट हाँ उन्हें पता कैसे चलेगा उन्होंने मुझे हर्ट किया जब तक हम उनको हर्ट नहीं करेंगे लेकिन हम क्या दे रहे हैं उनको हम उनको अब बताना रियलाइजेशन करना तो डिस्कस करके भी हो सकता है एक्सप्लेन करके भी हो सकता है उन्होंने वो क्यों किया वो समझ कर भी हो सकता है लेकिन हम उनको क्या देना चाहते हैं सी व्हेन अ मदर स्टॉप्स टॉकिंग टू द चाइल्ड व्हाट हैपेंस
1: उसके लिए सब बच्चे के लिए सबसे मुश्किल
0: दर्द दे रहे हैं हम समझा नहीं रहे हैं हम दर्द दे रहे हैं अब हमें समझना होगा कि वो बच्चे ने जो गलती की उसके पीछे पहले कोई रीजन होगा वो रीजन को न समझकर वो ऑलरेडी उसने गलती की अब वो दर्द में है अब उस दर्द को हील करने के बजाय हम उसके दर्द को बढ़ाते हैं एंड वी जस्टिफाइड तुमने मुझे इस तरह से किया या तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आई एम हर्ट क्योंकि यू डिड नॉट लिसन टू मी नाउ यू शुड ऑल्सो बी इन पेन कई बार एक दिन दो दिन कई बार उससे भी कहीं ज्यादा दिन हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स माई वे ऑफ गिविंग यू पेन और हमें क्या लगता कि दर्द देने से वो सुधर जाएगा हाउ कैन नेगेटिव एनर्जी ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एक बच्चा ऑलरेडी दर्द में है हम उसको और दर्द और दर्द और दर्द ये कौन सी लॉजिक हमें ये समझाती है कि दर्द देने से परिवर्तन हो जाएगा यहां तक कि ऑफिस में अगर किसी ने मेरे साथ कुछ मुझे लगता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया तो हम क्या कुछ नहीं कर देते ऑफिस में उसके अगेंस्ट
1: हम इंतजार अच्छा

0: और बात, पूरा वक्त हम निकाल देते हैं, इंतजार करते हैं सही वक्त आएगा और मैं वापस, तो मुझे लगता है वो पूरा वक्त जो है इसी प्लानिंग में निकल जाता है।
1: तो वो रिवेंज हम किसके साथ ले रहे हैं?
0: बेसिकली आई थिंक अपने साथ।
1: हम कहते हैं अब आने दो वो मौका, फिर मैं देख लूंगा, अब आने दो जब इसको काम पड़ेगा, मैं देख लूंगा, या हम उसके अगेंस्ट एक पूरा जिसको कहते हैं ना प्लॉट क्रिएट कर देते हैं ऑफिस के, या उसके अगेंस्ट जिसने हम सोचते हैं हमें हर्ट किया उसके अगेंस्ट नेगेटिव औरों को, उसकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसको औरों के सामने क्रिटिसाइज करना, या उसके अगेंस्ट एक्चुअली एक्टिविटी में कुछ गलत कर देना। क्यों? क्योंकि हमें रिवेंज लेना है। वी आर वेटिंग when I will be able to get back to you. तो वो सारा period of waiting and then actually getting back, तो वो किसको नुकसान देगा?
0: I think I'm very
1: तो सारा दिन नुकसान देगा। We need to check सारा दिन में कि कहीं हम उस cycle में तो नहीं गुजर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उस cycle में फंस रहे हैं जहाँ हम अपने अपनों से ही बदला ले रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई बाहर वालों से नहीं डील कर रहे हैं, हम अपने लोगों से अपने परिवार वालों से बदला ले रहे हैं।
0: एंड सचिवानी, आई थिंक उसमें सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो बहुत जरूरी, क्योंकि अगेन वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ्स, कि जब हम अपनों के साथ ये कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो हार्म हो रही है वो हमारी अपनी हो रही है। उनको तो पेन मिल रही है, वो तो ठीक है, वो तो फिर भी जीना सीख लेंगे, डील कर लेंगे उससे।
1: बच्चे को दर्द होगा तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा?
0: माँ
1: को। और फिर माए बच्चे को दर्द दे रही है लेकिन अवेयरनेस नहीं है ना। इसीलिए जहां ही अवेयरनेस आएगी तो हम वो वाला मेथड यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि सारा दिन में एक नहीं तो एक डीप साइकोलॉजी बनती जाती है ये बार बार हर्ट होने की। थोड़ा सा भी कुछ हुआ हर्ट, थोड़ा भी कुछ हुआ हर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर एकदम कम हो रही है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम नॉर्मल पर आ जाते हैं तो किसी से भी अगर आप पूछें तो आप देखेंगे कि हरेक रियलाइज करता है कि ये राइट तरीका नहीं है। यू नो, हरेक को पता है कि बात बंद करना या इस तरह से विथड्रॉ करना ये राइट तरीका नहीं है, लेकिन बिलीफ कि अगर हम शो नहीं करेंगे
0: तो पता कैसे चलेगा,
1: तो फिर हमारा क्या? अगर आपने मुझे इतना कुछ बुरा कह दिया और मैं फिर भी आपके साथ अच्छे बात करती रहूं तो मेरी पर्सनैलिटी क्या है फिर? I am supposed to be that strong one. I am supposed to be the one who can change you. I am supposed to be the one who can correct you. So even though I understand कि ये method right नहीं है, but फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने को change करने के लिए ready नहीं होंगे, क्योंकि लोग समझेंगे कि फिर तो इनको कुछ भी बोल सकते हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और ये return में कुछ भी नहीं करेंगे। तो revenge जो ये deep हमने rooted हो गया है, हमें ये समझना होगा कि revenge is self-inflicting pain. जब हम औरों से revenge या बदला लेने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हम दर्द एक ही को दे रहे हैं पहले, and that is me.
0: How? Because this is what we need.
1: Every time I want to give you that negative energy,
0: it goes through me.
1: क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो ट्रांसमिट कर रहे हैं।
0: वेरी गुड, यू नो दैट यू नो,
1: क्योंकि इमोशनल एडिक्शन है ना, हमें एक एडिक्शन है इस तरह की चीज क्रिएट करने का। हर्ट होने का भी हमें एक एडिक्शन है, एडिक्शन है। सारा दिन में अगर हर्ट नहीं हो किसी बात से तो ढूंढेंगे कौन सा व्यक्ति या कौन सी बात मुझे हर्ट करती है,
0: कोई बात याद कर लेंगे, यू नो
1: हर्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति सामने आ जाएगा, अभी उसने कुछ नहीं कहा, पहले कुछ कहा था, वो बात को एक सेकंड अपने माइंड की स्क्रीन पर ले आइए, वापस वो सारे इमोशंस आ जाएंगे। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर वन सीन, एक सीन ले आइए, किसी ने ऐसा कहा था, यू कैन एक्सपीरियंस दैट हर्ट राइट नाउ। अब इसी से अगर हम समझे, क्या वो व्यक्ति हमें अभी हर्ट कर रहा है? 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, मैंने वो सीन अभी इस समय मेरे सामने ले आए, आई कैन एक्सपीरियंस ऑल दैट हर्ट। तो वो हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? वो व्यक्ति ना सामने है अभी, ना उसने अभी वो कहा है, ना उसकी बात वो इस टाइम वैलिड है, फिर भी आई कैन क्रिएट दैट हर्ट।
0: व्हाई? लाइक आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो, बिकॉज आई थिंक आई हैव सफर्ड दिस द मोस्ट, सो व्हाई? व्हाई कांट इवन इफ वी अंडरस्टैंड कि ये क्रिएट मैं कर रही हूँ, इसको जाने क्यों नहीं दे सकते? हम इसके साथ रहते क्यों हैं? और बहुत लोग होते हैं जो
1: वी लाइकिंग इट।
0: हाँ,
1: ये कहीं ना कहीं हमें वो विक्टिम फील करने में अच्छा लगता है कि मुझे लोग हर्ट करते हैं, यू नो, सेल्फ सिंपथी, ये जो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है, क्योंकि अंदर इतना खालीपन है तो उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो विक्टिम की फीलिंग है, बेचारा मैं, बेचारा मैं

0: सारी दुनिया मुझे ही तकलीफ देती है, सब लोग मेरे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, सब लोग मुझे ही धोखा देते हैं, दिस गिव्स मी द परमिशन टू बी द वे आई वॉन्ट टू बी. मैं उदास हूँ तो क्या करूँ, सब लोग तो मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं. मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो जस्टिफाइड है ना, कितना लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है आपको पता है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है कि आई कैन चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को परिवर्तन करूँ. कैसे कर सकता हूँ, दुनिया ने मेरे साथ क्या क्या किया.
1: अच्छा, और ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप से धोखा करते हैं.
0: लोगों के लिए नहीं है.
1: हाँ.
0: कुछ भी लोगों के लिए नहीं हो रहा, वो तो लोगों को बाद में सुनने में मिलता है. ये सारा दिन जो मेरे अंदर थॉट साइकिल चलता है, मैं अपसेट हूँ, अगर हमें कोई समझा रहा है कि अपसेट हो, कम आउट ऑफ इट, इट्स ओके. नहीं, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट,
1: इट हर्ट मी सो डीपली.
0: मैंने बात ऐसी की, इट हर्ट मी सो डीप. सो मैं अपने आप को परमिशन दे देती हूँ उस दर्द पे रहने का. क्यों? क्योंकि मैं वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहती उस दर्द से बाहर निकलने का. तो अगर मैं दर्द से बाहर नहीं निकलना चाहती, मुझे कुछ न कुछ लॉजिक तो अपने आप को देना पड़ेगा उसमें रहने के लिए. तो मैं अपने आप को दे देती हूँ. क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरा ब्रॉटअप ऐसे किया, उन्होंने मुझे डांटते ही रहे सारी जीवन, तो आज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है. क्या करूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, हर टाइम मुझ पर कंट्रोल करते हैं, मुझे फ्रीडम नहीं देते हैं, इसीलिए मैं अपसेट रहती हूँ. क्या करूँ, बच्चे सब मेरी कोई बात ही नहीं मानते. सो एवरीवेयर वी हैव समवन टू ब्लेम फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. And then I give myself the certificate, you are allowed to get hurt. Because the world is like this. I do not want to change. They need to change. Again, we'll come back to the conclusion.
1: No, but why do we want to be in that state? You know?
0: In pain?
1: Yeah.
0: Because that's become an addiction. Ya to andar happiness hoge, ya dard hoga. Happiness to hai nahi. दर्द क्रिएट हो गया. शरीर को दोनों तरह के इमोशंस मिलते हैं, हैप्पीनेस से भी मिलता है तो दर्द से भी मिलता. अब हैप्पीनेस तो क्रिएट ही नहीं हो पाती है, दर्द क्रिएट होता और काफी बार क्रिएट होता जाता है. तो वो आदत पड़ गई है, मन को भी वो स्टिम्युलेंट मिल गया है, बॉडी को भी वो हॉर्मोन्स मिल गए. नहीं मिलता अगर खाली बैठे हैं. आई वॉन्ट टू फील हर्ट. कई बार आप देख लो कि मुझे कई बार एकदम खाली लग रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा,
1: कुछ नहीं पूछ रहा.
0: तो बस एक सीन रिवाइंड करना है, किसी के बारे में बस सोच लेना है कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा था. दैट्स इट. एंड फिर आई फील गुड. नाउ फील गुड क्या, कैसा गुड, जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट दैट थिंग अगेन, मुझे वापस वो मिल गया. यस, आई एम जस्टिफाइड कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ. तो वी कीप गोइंग थ्रू दिस एवरी डे, और ये बार बार करने से वो एक इमोशनल एडिक्शन बन गई है. तो समवेयर आई हैव टू वेक अप. आई हैव टू वेक अप कि व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ. औरों को दर्द तो नहीं दे रही, लेकिन अपने आप को सारा दिन कितनी बार दे रही हूँ. तो रिवेंज मतलब हम अपने ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करते, और वो इसलिए करते क्योंकि हम समझते मेरे हर्ट का कारण कोई और है. तो सबसे बड़ी इल्यूशन, सबसे बड़ा बिलीफ अगेन, वेक अप आउट ऑफ दैट कि मेरी हर्ट का कारण मैं हूँ. अभी आप कुछ भी बोलो, इफ आई वॉन्ट आई कैन कीप माई सेल्फ protected, and if I keep myself protected, I will not find the need to take revenge.
1: And wonderful, you know, and for that you don't even have to withdraw, you know. See,
0: not at all. In fact, आपको मैं समझ पाऊंगी कि आपने जो कहा या जो किया वो क्यों किया. आपके अंदर कौन सा गुस्सा या कौन सा दर्द था, क्योंकि जब कोई हमें कुछ कह रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ अ रीजन.
1: उनका कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस है, वो इमोशन जो हमने बात की थी कि देयर इज सम डिस्टर्बेंस समवेयर.
0: तो अगर मैं अपने को स्टेबल रख पाऊं तो मैं आपको भी हेल्प कर सकूंगी. लेकिन आपकी अनस्टेबिलिटी को मैं अपने ऊपर हावी होने दूं एंड मैं जस्टिफाई कर लूं, इन्होंने मुझे अनस्टेबल किया, अब मुझे भी डिस्टर्ब्ड रहना है, अब क्योंकि इन्होंने मुझे किया मुझे इनको डिस्टर्ब करना है, तो व्हाट एम आई डूइंग. It's a cycle that will go on again and again. तो सारा दिन में ये चेक करना होगा कि हम कितने लोगों से बदला ले रहे हैं. और कभी कभी ऐसा होता कि हम रिवेंज से भी आगे जाते, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता हर्ट का वो है पनिशमेंट.
1: He should be punished.
0: पनिशमेंट भी एक्चुअली क्या है, एक रिवेंज लेने का ही तरीका है कि आपने ये गलती की, अब आज ये आपकी पनिशमेंट है. यू नो, पेरेंट चाइल्ड में हम देखें या टीचर स्टूडेंट में देखें, तो पनिशमेंट हैज बिकम अ वेरी कॉमन वर्ड. एंड पनिशमेंट हैज बिकम द वे ऑफ चेंजिंग अ पर्सन, कि आपने गलती की, अब आपको सुधारने का तरीका आपको पनिश करना है. और ऐसा कहा जाता है जितनी बड़ी गलती
1: उतनी बड़ी पनिशमेंट. ऑफकोर्स फिजिकल पनिशमेंट जो है वो बच्चों के साथ स्कूल्स में इतनी

0: और इतनी ज्यादा
1: और वो कितना उनकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं।
0: लेकिन इनफैक्ट अगर हम ज्यादातर टीचर्स या ज्यादातर पेरेंट्स से बात करें तो दे फील दैट पनिशमेंट इज जस्टिफाइड, अदरवाइज किड्स विल नॉट अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन विल नॉट अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं ये भी हमने
1: तो वो हमें समझना होगा कि पनिशमेंट अर्थात क्या, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं क्या उससे हमें वही रिजल्ट मिल रहा है जो हमें चाहिए। यू नो, क्योंकि जहां बच्चे और स्टूडेंट्स की बात आती तो एक्चुअली हमारी भावना तो बहुत अच्छी है कि उनके अंदर जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं उसको हम सुधारना चाहते हैं, या उनके अंदर जो पेन है उससे उनको फिनिश करना चाहते हैं। तो इस पनिशमेंट द वे Is it getting the result? I need to find out that. क्योंकि बाहर से हो सकता है कि रिजल्ट हो गया, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है उस बच्चे की पर्सनैलिटी पर, उस बार बार की पनिशमेंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार घर में कमरे में बंद कर देते हैं, या कहेंगे खाना नहीं देंगे,
0: घर से बाहर निकाल देते हैं,
1: घर से बाहर निकाल देते हैं, या क्लास में टीचर बेंच पर खड़ा कर देगी, या क्लास से बाहर खड़ा कर देगी, या कई बार तो क्या क्या बनाकर खड़ा कर देते हैं, या सबके सामने फिजिकली भी रूलर से। व्हाट इज दिस डूइंग टू द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड? आई नीड टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने सिर्फ पनिश कर दिया, क्या मैंने ये सोचा कि उसने जो किया उसके पीछे का रीजन क्या था? इवन एट द टॉप लेवल ऑफ आर जुडिशरी सिस्टम इज पनिशमेंट, कि किसी ने कोई गलती की तो उसका सोल्यूशन एक ही है, पनिश। क्योंकि हमने समझ लिया कि इन्होंने ये गलती की है, हम इनको सुधारने का तरीका पनिशमेंट। अब ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसी को अपने घर से दूर कर देना और एकदम सबसे दूर कर देना और एक ट्रैप करके इस तरह से रख देना, तो क्या वो उनके अंदर सही मायने में परिवर्तन ला सकेगा जो परिवर्तन हम चाहते हैं?
0: नहीं, वो कभी भी आता नहीं है। एक्चुअली अगर हम क्रिमिनल्स को भी देखते हैं, जेल में डालने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता, इनफैक्ट हार्डन्ड क्रिमिनल बन के निकलते।
1: सो व्हाट इज हार्डन्ड क्रिमिनल? क्रिमिनल अर्थात ही क्या, कि उन्होंने कुछ किया है जो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से फील होता कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके पीछे भी कोई एंगर, कोई जेलेसी, कुछ ना कुछ ऐसा मोटिव ही होता है। अब जब उसके फलस्वरूप हम उनको सबसे दूर अपनी लाइफ की फ्रीडम से भी हटा देते हैं और ट्रैप करके इस तरह से रख देते हैं, अब वो जो एंगर, जो रिजेंटमेंट अंदर था, अब क्या वो हील हो जाएगा उससे? इज दैट द हीलिंग प्रोसेस?
0: नो, इनफैक्ट आई थिंक वो अपनी इमेज, कई बार तो वो ब्रोकन निकलते हैं, कई बार वो बहुत रिवेंजफुल होके एक हार्डन क्रिमिनल बन गए।
1: यस, क्योंकि हमने उनके ऊपर लेबल दे दिया कि आप क्रिमिनल हैं, आप रिजेक्टेड हैं समाज से, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ये एनर्जी हम उन तक भेजते हैं, तो उनके अंदर क्या एनर्जी क्रिएट होगी? मतलब क्या हम उनकी तरफ प्यार भेज रहे हैं, कंपैशन भेज रहे हैं, या हम और ही उनकी तरफ, उनके अंदर तो ऑलरेडी गुस्सा है, अब और हम उनकी तरफ क्या भेज रहे हैं? और गुस्सा और नफरत। तो ऑलरेडी गुस्सा है औरों से, सबसे चारों तरफ से और गुस्सा मिला, तो अंदर क्या बिल्डअप हो जाएगा? जस्ट रिजेंटमेंट, मोर ऑफ एंगर। ठीक है, आप समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपका भी हमारे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें बाहर आने दो,
0: देन हाँ, विल शो
1: आई विल शो यू वट आई कैन डू, एंड देन आई विल लिव इन दैट पीरियड ऑफ पनिशमेंट ओनली प्लानिंग and only going through this, you know, deep rooted pain, and wo jo mera dard hai wo utne saalon mein of punishment wo dard aur bhi zyada badhta jata hai. To ye parivartan hai.
0: Lekin sister Shivani, yahan bahut se parents ke samne ya teachers ke samne ek dilemma ye aata hai ki bachcha chori karke aaya, bacche ne koi aisa kaam kiya jo us waqt usko, aur isiliye chahe wo physical punishment na ho lekin ek aisa example set karne ki baat ye kehte hain ki aage wo dobara na kare aur na us tak pahunche. Ho sakta hai samajhne ki situation mein na ho, utna bada na ho ki wo samajh paye, samjhaya ja sake, lekin kahin na kahin example set karna padega. Jaise wo chhota bachcha jab ho, so then how, what to actually do?
1: I will have to understand ki usne wo kyun kiya hai. That is very important. Actually, punishment एक easy तरीका होता है transformation लाने का, क्योंकि बाह्य रूप से तो transform हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे ने एक गलती की, आपने उसको you know उसके लिए punish कर दिया, उसके अंदर वो बैठ गया कि ये करेंगे तो ये result होगा, तो आगे से ये नहीं करना है. लेकिन उसकी जो उसकी

0: क्या वीकनेस थी अंदर की या उसके पीछे क्या रीजन था जिसकी वजह से उसने वो की। अगर आज उसने चोरी की वो क्यों की उसका तो हमने नहीं सोल्यूशन निकाला, तो वो जो संस्कार होगा या जो वो कारण होगा जिसकी वजह से उसने चोरी की वो कारण को हमने ठीक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अंदर का जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है वो तो वही का वही रह गया ना। हमने सिर्फ ऊपरी तरीके से उसको कह दिया कि चोरी नहीं करनी, चोरी की तो ये होगा। पहली बात तो इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि उससे वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर जो रीजन है वो बहुत
1: बच्चे के मन में कहना कि भय का संस्कार,
0: भय का संस्कार क्रिएट कर दिया, कॉन्फिडेंस का तो क्रिएट ही नहीं किया। तो हमने क्या किया, ऊपर से जैसे कि ठीक कर दिया लेकिन अंदर की चोट तो वो अंदर ही रह गई, और अंदर की चोट तो रह गई और साथ में डर भी क्रिएट कर दिया। तो पर्सनालिटी को क्या किया, एम्पावर किया। कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम जो था वो गलत था, और वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उसने कोई ऐसी गलती की, ग्रीड वश, एंगर वश वो कर्म उसने बाहर किया, लेकिन हमने तुरंत से उसको लेबल कर दिया क्रिमिनल। और जैसे ही क्रिमिनल लेबल किया, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, हमारी जो थॉट्स उसकी तरफ जाती, ये क्रिमिनल है, वी फॉरगेट ही इज लाइक अस, लेकिन उसने बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग थॉट ही हैज डन दिस एक्ट। तो वो पीछे की थॉट कौन सी गलत थी जिसकी वजह से ये किया वो हम नहीं सोचते हैं। सारा दिन में अगर हम अपने आप को देखें तो हम कितने सारे क्रिमिनल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर सो कॉल्ड क्रिमिनल थॉट्स हमने कहने, सिर्फ ये है कि किसी मेजोरिटी के, हम सबके वो थॉट्स के अंदर ही रह जाता और किसी के वो थॉट्स में बाहर आ गया, एक्शन में आ गया। अब इससे क्या हो गया, जैसे ही वो एक्शन में आ गया तो हमें गुस्सा आ गया, हमें समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पनिश करना चाहिए, हमने सोचा इससे एग्जाम्पल सेट होगा नहीं तो सब लोग ऐसा करने लग जाएंगे, हम डर से ताकि आगे से वो ऐसा नहीं करे हम उसको पनिश कर देते हैं, लेकिन हमने उसकी डीप रूटेड प्रॉब्लम को नहीं समझा कि उसने जो किया वो किस लिए किया, वो नहीं समझा हमने। सो आई नीड टू गो वन स्टेप फर्दर एंड अंडरस्टैंड दैट, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट विल चेंज फॉर मी
1: एंड देन द हीलिंग विल स्टार्ट। Actually, the changing and the transformation
0: absolutely
1: actually happens. Okay, the way we talk about reforming.
0: Absolutely.
1: So, okay, how does reforming happen? Actually, उसके बात चीत करेंगे, लेकिन आज जो एक एक बार हम कहें कि बिना कोई कलर लगाए हुए इस चश्मे पे हमने देखा रिवेंज को भी, हर्ट होने को और फिर हमारे लैश आउट या रिवेंज लेने को, और उसके बाद जब हम बड़े राइटियस होके पनिशमेंट की बात करते हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो बात समझ में आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। जब रिवेंज नहीं होगा, जब सजा नहीं होगी, तब रिफॉर्म होगा। गलती हम में से हर कोई करता है लेकिन उसे बदला जा सकता है। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999334555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा, जिंदगी के और कई पहलुओं को एक नए परिपेक्ष में, सही परिपेक्ष में देखने का हमारा ये सफर अगली कड़ी में भी चलेगा। अब दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अब्बू खुदा।

बन के क्षमा का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तुम पे।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, कई बार ऐसा सुनने में आता है ना कि ये क्या गुड्डी गुड़ियों के खेल में लगे हुए हो, कब तक खेलते रहोगे गुड़ियों से। गुड़ियों को हमेशा ही हमने बचपन का साथी माना है, कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि इन गुड्डे गुड़ियों का हाथ पकड़ के हम कभी किसी ऊंचे मकाम तक पहुंच भी सकते हैं। और क्यों नहीं, जो हमारे बचपन के साथी है वो क्या हमारे जीवन के साथी नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं। 107.8 रेडियो मधुबन FM पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। मैं आरजे शांसुन आपके बीच में आया हूँ एक और नए मेहमान को लेकर के। आज गलती हो गई, मेहमान नहीं कुछ मेहमानों को लेकर के आया हूँ। आज एक नहीं बल्कि दो मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2023 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जोड़े को। जोड़ा इसलिए कहा क्योंकि वो पति पत्नी है। श्री रमेश परमार जी और श्रीमती शांति परमार जी झाबुआ से हैं और उन्होंने झाबुआ के आदिवासी शिल्प कला को अपने जीवन का एक लंबा अरसा प्रदान करके एक नया जीवन दान दिया है। आदिवासी कला को आज जिस मुकाम पर हम देखते हैं उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं रमेश जी और शांति जी का हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर। तो रमेश जी, शांति जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। आप वास्तव में बहुत व्यस्त हैं क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद आपको शायद इंदौर के लिए निकलना है, ऐसा मुझे पता चला है। और आप पूरे देश का भ्रमण करते रहते हैं आपके कामकाज के सिलसिले में, तो इसलिए आपको एक बार हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी कहानी आपकी जुबानी कैसे शुरू हुई, क्योंकि आमतौर पे खिलौने बनाना गुड़ियों का खेल समझा जाता है, गुड्डे गुड़ियों का खेल समझा जाता है, लेकिन उस गुड्डे गुड़ियों के खेल को कोई इतना शिद्दत से करे कि उसे राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है। तो इस कहानी को हम जानना चाहेंगे आपकी जुबानी, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे आपकी कहानी। रमेश जी आप शुरू कर सकते हैं और बीच बीच में कहीं शांति जी भी मदद कर सकते हैं या जैसा भी आप दोनों चाहें।
4: मैं शिल्पकार रमेश परमार पद्मश्री इसी वर्ष 5 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हम दोनों पति पत्नी शांति परमार और रमेश परमार हमें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये कला क्षेत्र में हमें सम्मानित किया, कला क्षेत्र मतलब झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया तीर कमान दलसनवाला पेपर में सी मिट्टी की मूर्तियां और अन्य शिल्प में मतलब कला क्षेत्र में हमें पद्मश्री से सम्मानित किया और दोनों पति पत्नी को किया। हम लोग काफी करीब 38-39 साल हो गए। मेरी शादी 1982 में हुई थी। 1986 में हमारी पत्नी शांति परमार को उद्यमिता विकास केंद्र TCPC सेंटर में आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था और फिर 1993 में भी आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प का

प्रशिक्षण दिलवाया था जब से हम लोग कला क्षेत्र में लगे हुए हैं, और वैसे हम गरीबी रेखा के अंतर्गत ही है, हम अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। झाबुआ जिले का एक रातीतलाई वार्ड है, वार्ड क्रमांक 11, इसी में निवास करते हैं। यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी के लोग काफी संख्या में रहते हैं, और हम लोग अन्य लोगों को भी रोजगार देते आ रहे हैं। उस समय गरीबी काफी थी तो नए कपड़े खरीद नहीं पाते थे, इसलिए हम क्या करते थे, टेलर लोगों के यहाँ जाते थे, दर्जी लोगों के यहाँ जाते थे, कपड़े की कतरन लाकर उससे आदिवासी गुड़िया बनाते थे। तो हम लोगों ने लगातार ये प्रशिक्षण के बाद कार्य जारी रखा। फिर 1997 में 15 अगस्त 1997 को उस समय हमारे कलेक्टर महोदय मनोज श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने जिला स्तरीय पुरस्कार दिया था। जिला स्तरीय पुरस्कार के बाद फिर हमने देखा कि हम और आगे बढ़ना चाहिए, फिर हम लोग हमारी कला को इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, गुजरात, अहमदाबाद सभी जगह हम प्रदर्शन करने लगे। फिर 1999 में हमारे कलेक्टर आए थे वसीम अख्तर, उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, दिल्ली विज्ञान भवन दिल्ली में भेजा। वहां पर हमारे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने हमारी आदिवासी कला को काफी सराहा और एक ही बात कही थी कि इस कला को बनाए रखे, तो वही हमें बात याद रही अटल जी की, इस कार्य को बनाए रखे मतलब इस कार्य को हम बंद नहीं करेंगे, लगातार करते आ रहे हैं। फिर सन 2000 में हमारे इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने सम्मानित किया। फिर हम लोग जिला स्तर से संभाग स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के शिल्पी मेलों में लगातार भाग लेते आ रहे हैं, और वर्तमान में भी हम लोग मालवोत्सव उद्यान में लगे हुए हैं। इसके साथ हम लोगों ने, अब ये कला तो हम जानते ही है, तो हम लोगों ने इस कला को थोड़ा फैलाया कि हमारा झाबुआ जिला 80-90% आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पर हमारे आदिवासी भील भिलाला पटेलिया कोटवार अन्य जाति के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम ये प्रशिक्षण देते आ रहे हैं, और निःशुल्क भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। गरीब तबके के लोगों के उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं उन महिलाओं को, ताकि वो इस कला को सीखकर आगे बढ़ाए, और कुछ महिलाएं इस कला को सीखकर आगे भी शिल्पी मेलों में भाग ले रही है और हमारा और उनकी जीविका चला रही है। तो हम लोग इसी अभी तक बंद नहीं किया है, और हम वेस्टेज सामग्री से भी आदिवासी गुड़िया का निर्माण कर रहे हैं, और हमारे मोहल्ले में जितने भी गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको हम इस कला को सिखा दिया है, वो स्वयं का रोजगार कर रही है। और वर्तमान में हम लोग नवोदय विद्यालय झाबुआ जिले में है, जो प्रत्येक जिले में एक विद्यालय होता है, तो नवोदय विद्यालय वो केंद्र शासित होता है, वहां पर भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा हम जो सीएम राइज मॉडल स्कूल होते हैं वहां पर भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, एक एक स्कूल में 200-250 छात्र छात्राएं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, और इस कला को और आगे बढ़ाए रखा है, इस कला को हमने बंद नहीं किया है। और झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया के अलावा यहाँ पर तीर कमान की ज्यादा डिमांड है, विदेशों में भी डिमांड है, तीर कमान भी ज्यादा बना रहे हैं, पत्थर फेंकने वाले की गोफन आती है वह भी बना रहे हैं, और एक पिथोरा कला जो आदिवासी चित्रकला होता है उसको पिथोरा बोलते हैं, पिथोरा भी बना रहे हैं, अनेक ऐसी सामग्री बना रहे हैं। इस कार्य को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, और अभी देश विदेशों में भी हमारी गुड़िया की अच्छी मांग है, जर्मनी में भी अच्छी मांग है हमारी गुड़िया की, अभी हमें स्वीडन भी बुलाया, और हम अभी हमारा पासपोर्ट नहीं बनाना इसलिए हम स्वीडन नहीं जा पा रहे हैं, अभी काठमांडू भी बुलाए हैं, अभी काठमांडू के लिए हम तैयारी करेंगे। वैसे इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस कला को आगे बढ़ाए रखें, और मैं तो शुरू से कहता ही आ रहा हूँ, साल डेढ़ साल से कहता आ रहा हूँ कि हमारे बेरोजगार युवक युवतियों को जो पढ़े लिखे कॉलेज किए हुए हैं, हायर सेकेंडरी किए हुए हैं, बीएमएससी जो भी मतलब योग्यता प्राप्त है, अगर नौकरी नहीं मिलती तो घर बैठे रहते हैं, तो एक एक घंटा भी अपना बहुत कीमती होता है, तो हमारे लोग बेरोजगार होकर भी आगे बढ़ते नहीं, स्वरोजगार नहीं अपनाते हैं। तो मैं तो सभी बेरोजगार छात्र छात्राएं युवक एवं युवतियों को कहना चाहता हूं कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर जाना चाहिए। अभी चीन का देख लो, चीन में खिलौने हैं, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं, हम अपनी हस्तकला को आगे बढ़ाए रखे हैं, और हम लोग स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। इसलिए मैं हमारे छात्र छात्राओं बेरोजगार लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें नौकरी नहीं, नौकरी देने वाला करना बनना चाहिए, नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में हमारे

0: हमारी पत्नी ने भी अभी करीब 1600 महिलाओं को जो बेरोजगार महिलाएं थी उनको ट्रेनिंग दिया, वो महिलाएं स्वरोजगार बना रही है। हमारे झाबुआ जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं जो हस्तशिल्प कला को नहीं जानती है उनको भी हम ट्रेनिंग देके आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत सरकार भी अब हमको हेल्प कर रही है, जो हमारे दिल्ली में एक ऑफिस है, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प आयुक्त विभाग आरकेपुरम में स्थित है, उनकी शाखाएं पूरे भारत में है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, पर हमारे लोग जानते नहीं है ये मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम क्या है, राजस्थान हस्तशिल्प विकास भी है, मतलब हर जो राज्य सभी जगह है, लेकिन अपने लोगों को पता नहीं रहता कि ये क्या है। तो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आप लोग इस विभाग के बारे में जानकारी लें और बेरोजगार नहीं रह सकते, इस कला को आगे बढ़ाए रखें। कलाएं अनेक है, हस्तशिल्प से जो कार्य करते हैं वो हैंडीक्राफ्ट ऐसी वस्तुएं, मतलब अनेक तरह की वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे काष्ठ कला जो लकड़ी से बनने वाली हस्तशिल्प सामग्री है, इसके अलावा कपड़े से बनने वाली हस्तशिल्प सामग्री अनेक प्रकार की जैसे बनाई जाती है, मिट्टी से बनने वाली मूर्तियां हैं, पेपर में इससे बनने वाला सामग्री है। इसलिए हम झाबुआ जिले में एक नया फार्मूला भी हमने तैयार किया, एक काली मिट्टी आती है जो तालाबों में मिल जाती है और स्टेज पेपर होता है उसको हमने दलाकर और धावड़ा एक पेड़ होता है, धावड़े के गोंद को मिक्स कर एक पेपर में जो मैसी तैयार करते उससे भी हम मूर्तियां बना रहे हैं, हस्तशिल्प सामग्री बना रहे हैं। इसलिए कला अपने अंदर है लेकिन दिखाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ हमारे बेरोजगार लोगों को कि आप हस्तशिल्प कला क्षेत्र में आ गए, आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ सर, धन्यवाद। अब हमारी पत्नी से ही बोल सकते।
1: आप भी बताइए शांति जी कि आपने कैसे इस काम में हाथ बटाया, क्योंकि आपको घर बार भी देखना है, परिवार को भी संभालना है, तो आपने कैसे रमेश जी का साथ निभाया इसमें, आपको क्या रुचि हुई कि हाँ मुझे भी ये चीज करना है?
2: नमस्कार सर, ये है कि ये पढ़े लिखे थे, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ, तो अपन में कि ये दिमाग में सोचा कि ये काम चालू करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, नौकरी तो मिल नहीं सकेगी अपन को, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं ज्यादा, तो ये मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी मैंने, इसलिए मैं सीखी और फिर परिवार को सिखाया, जेठानी को, बहू को सिखाया, बेटा को, सब इन्होंने भी सिखाया, मैंने सभी परिवार सीख गया मेरा और सभी मेरा काम कर रही है। मैं 10 महिला मेरी समूह की भी है, वो भी कर रही, और अभी मैंने 30 टेलिंग की बाया खड़ी करी, वो भी गुड़िया का काम सीखेगा। तो अभी ये चाह रही कि गरीबी तो है सर, मैंने सरकार थोड़ी हमारी मदद कर सके तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई बिठाने बहुत तकलीफ हो रही है हमको, बहुत काम तो बहुत है मेरे पास, गुड़िया भी मांग भी बहुत आ रही, पर बिठाने की थोड़ी कमी हो ही ना, ये हमारी पूर्ति हो जाती बहुत अच्छा रहे, काम चले हमारा, धन्यवाद।
0: गुड़िया होता है बैलगाड़ी, गुड़िया बैलगाड़ी कैसी बनती है ये भी हम आपको बता देते हैं कि पूरे भारत में बैलगाड़ी हमारे जो कई फॉरेस्टर लोग हैं उनके पास भी है, इस तरह की बैलगाड़ी बनाई जाती है, ये बैलगाड़ी आती है और आदिवासी गुड़िया ऐसी आती है।
1: मैं मेरे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि रेडियो में तो आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ क्योंकि ये जूम कॉल पे है, और अगर यूट्यूब में आप कभी हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा इतना रंग बिरंगा, इतना खूबसूरत, और ऐसा लगता है जैसे जीवंत है ये सभी झांकियां, जो खिलौने इन्होंने बनाए हैं बड़े ही खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ बड़े ही कोमल भी है, इनको पकड़ने में भी ऐसा लग रहा है कि हैंडलिंग भी बड़े केयर से करना पड़ेगा क्योंकि ये है बड़े ही नाजुक। चूंकि ये हस्तशिल्प है इसलिए इसका जो मैं समझता हूँ कदर है या इसका जो वैल्यू है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एक खिलौना किसी मशीन से नहीं बनाया गया है बल्कि हाथों से कार्व आउट किया जाता है। तो रमेश जी, शांति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये चीजें दिखाई। आपने सबसे पहला खिलौना जब बनाया, रमेश जी आपके लिए ये सवाल है कि कौन सा खिलौना आपने बताया कि कुछ आपने जो वेस्ट कपड़े होते हैं आदिवासी जिलों से वो उठा करके लेके आए और उन लोगों के साथ मिलकर के आपने इसको बनाना शुरू किया, तो कौन सा वो एक या दो ऐसा खिलौना है या गुड़िया है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा शुरुआती दौर पे सबसे ज्यादा काम का था?
0: हाँ, वो ये वाली गुड़िया जो आदिवासी प्रिंट कपड़ा होता है, झाबुआ जिले का आदिवासी कपड़ा है,
1: झाबुआ

0: ने का आदिवासी कपड़ा है ये,
1: ये कपड़ा, ये प्रिंट पूरे भारत में अभी कहीं प्रिंट होता भी नहीं है, बहुत कम होता है, लुप्त हो गया ये कपड़ा, कहीं मिलता नहीं जी। और फिर भी हम बुलवा लेते,
2: इससे शुरुआत करी हमने था,
1: ये कपड़ों से शुरुआत किया,
2: यही गुड़िया से,
1: ये छोटा शर्ट बनाते हैं, ऐसे छोटा सब पूरा छोटे छोटे कपड़े होते हैं ये हम उसको दर्जी लोगों के लिए के वहीं से ले आते थे
0: जी। ये तो बहुत सुंदर है, जैसे बचपन में लोग अपने गुड्डे गुड़ियों के लिए कपड़े बनाते हैं, उनके लिए खाना पकाते हैं, छोटा सा किचन बनाते हैं, तो ये एकदम से जैसे कि आपने हमें और हमारे सारे श्रोताओं को अपने अपने बचपन की गलियों में आप ले गए, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिल करके न केवल समय बिताते थे लेकिन एक कहानी बिनने लगते थे कि भाई मेरी गुड़िया, आपकी गुड़िया, हमारे गुड़ियों के बीच का एक नया सा अपना सा संसार होता था। मुझे इसमें एक चीज जानने का बड़ा मन करता है कि जब रमेश जी आप इस सफर में शुरू किया आपने चलना, क्या आपके आसपास के लोग आपके सहयोगी थे या उनको आपके प्रति कुछ विरोध होता था कि ये क्या काम में लग गए हो, इससे अच्छा तो कुछ और कर लिया होता है, कुछ कभी ऐसा आपने सुना है या फेस किया है कभी ऐसा?
1: हाँ, शुरू शुरू में तो कई लोग कहते थे कि ये तो एक बच्चों का खेल है, ये इतना ही करना चाहिए, ये तो एक पुतला पुतली बनाते हो, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, आप दूसरा कोई कार्य करिए, तो कई लोग मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे यार ये तो बेकार काम, सही नहीं है, तो बच्चे का बना के खिलौने बना, इसमें क्या कोई इनकम नहीं है। फिर भी हम लोगों की बात सुनते रहते, मैंने कही कि हम तो हमारी कला है करते जा रहे हैं, तो हम लोग इस कला को बंद नहीं किया, लगातार करते रहे। और जैसे हमको पद्मश्री का जैसे खबर आई थी तो सब लोग सुनने रह गए, यार ये कैसे हुआ, पद्मश्री कैसे मिल गया, ये सबसे कई कुछ लोग विरोध में भी हो गए थे कि इस कला में पद्मश्री कैसे मिल गया, इस तरह से भी लोग बोलते। फिर भी हमने सहन किया, ठीक है, फिर भी हमारी तो आदत है, सुनते रहे हम तो, जैसे वो हाथी होता ना सब, हम तो हाथी है, वो क्या बोलते कुत्ते भोगते हैं, भोगने वाले भोगते रहते हैं, हम चिंता नहीं करते,
2: ये दूसरे है नहीं, मजदूर से बनवाते हैं, हम खुद बनवाते, हम खुद कर रहे हैं, वो मजदूर से बनवाते, तो आपको कैसे मिल गया, मैं तो इंदौर में सवाल साथ मैंने सवाल दे दिया, मैं खुद बनाती थी, वो मजदूर से बनवा रहे, तो क्यों नहीं मिला, मैं कहती वो मजदूर से बनवा रहे, मेरे को मिला, दे दिया पेपर वाले
1: स्वयं बना और गरीब तबके के लोग दिया।
0: तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने बात कही कि हमारे में और उन लोगों में फर्क ये है कि हम जो है हर एक गुड़िया के पीछे अपना समय लगाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो उसमें जो वो आपका पन है या आपका जो एक बेंचमार्क है या आपका जो एक टेस्ट है वो आपकी हर गुड़िया में होता है, और इस वजह से हर गुड़िया जो है वो बहुत बेशकीमती हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जब कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है तो अक्सर लोग उसके विरोध में खड़े होते हैं, और बगैर विरोध के अगर आपको सफलता मिल जाती है तो जैसे कि नामुमकिन ही है आज के जमाने में कि कोई आपका विरोध ही ना करे। और मैं समझता हूँ विरोध अगर होता है तो इसमें आपका स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ता है, आप उसको एक बार एक चुनौती की तरह धारण करते हैं और उसके प्रति आप सतर्क हो जाते हैं, बहुत समय बिताते हैं, तो चुनौतियां तो अच्छी बात होती है, और विरोध करने वाले लोग भी अच्छे ही हैं क्योंकि उनकी वजह से हम तराश रहे होते हैं अपनी कला को। रमेश जी आपसे एक और सवाल मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने स्वयं तो इस चीज को अपना लिया और आपका मैं कहूंगा सौभाग्य है कि आपको ऐसी धर्म पत्नी मिली जो कि इसका आपको सहयोग करती है और उल्टा और साथ में सहयोग देती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब घर में जो पुरुष है अगर वो इस प्रकार के किसी व्यवसाय में जुड़ जाते हैं तो घर की जो महिलाएं होती वो बोलती ये सब किन चीजों में लग गए हैं, इनका तो शायद बुद्धि किसी और तरफ जा रहा है, महिलाओं की तरफ से या घर की जो गृहिणी होती है उनकी तरफ से बड़ा विरोध होता है, बाहर वालों का विरोध तो चलो छोड़ देते हैं, घर के अंदर में कभी विरोध अगर ऐसा हो तो कैसे निभाया जाए? आपको तो नहीं हुआ लेकिन अगर किसी और को हो तो वो क्या करे?
1: इसमें क्या है कि जैसे आपको बताया थी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प कला को अभी भी नहीं समझते, अभी भी नहीं समझ पा रहा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि पूरे भारत में भारत सरकार के जो हस्तशिल्प आयुक्त विभाग के ऑफिस बने हुए हैं, हस्तशिल्प विकास निगम बने हुए हैं, और यही पता नहीं अनेक तरह की वस्तुएं बनाई जा, इसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता हमारे झाबुआ जिले में, झाबुआ जिले में पलायन ज्यादा होता है, तो आप देखते ही होंगे पलायन अभी भी हो रहा है, अभी भी बसे भर भर

0: क्लाइंट लोग गुजरात जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में झाबुआ का आदिवासी गया हुआ है, लेकिन शासन की योजनाओं में ध्यान नहीं दे रहे। अब अधिकारी अपने घर नहीं आएगा, अपने को अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि ये क्या है हस्तिल। इसलिए कभी कभी महिलाओं को हम यही कहते, जैसे हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी प्रशिक्षण इनने लिया था आदिवासी गुड़िया का, और इनसे हमने सीखा, मतलब महिलाएं ने ट्रेनिंग लिया और उनसे हमने भी सीखा। पहले मैं नगर सैनिक में था, होम गार्ड्स में था 10 साल, नगर सैनिक में ड्यूटी की, फिर मैंने बोला, फिर मैं शुरू से आया ये आदिवासी चित्रकला में ज्यादा था, मैं वैसे पेंटर भी हूँ, चित्रकला ज्यादा बनाता हूँ, आदिवासी चित्र बनाता हूँ, पिक्चर आर्ट्स बनाता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि अब ये कब तक करेंगे इस तरह की गुलामी, ये मुझे रोजाना नमस्कार, जय हिंद नमस्कार सर। फिर मैंने बोला अपना स्वयं से रोजगार स्थापित करें। फिर मैं नौकरी करते हुए 1993 में हमारे झाबुआ में हथकर का ऑफिस था, वहां पर नारायण व्यास सहायक संचालक अधिकारी आए थे, उन्होंने मेरी कुछ पेंटिंग देखी थी होमगार्ड्स में, मैं कुछ चित्र बनाते रहता था मंदिरों पे, शिवजी के चित्र बनाए, तो शिवजी का चित्र देखकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट खुश हो गए, वो खुश हुए, फिर हमारे हथकर का अधिकारी खुश हो गए, बोला तुम ऑफिस में आओ। तो हमारे हथकर का ऑफिस राजौड़ा में स्थित था, बोला कि हमारी एक समिति बंद पड़ी है, कभी आप आ जाओ, कुछ सदस्यों के नाम दो और वो समिति आपको पुनर्जीवित कर लो, चालू कर लो। की एक समिति थी, उस समिति का नाम था प्रशिक्षित औद्योगिक कामगार कार्यक्रम, तो उसको हमने पुनर्जीवित किया, उसने 20 महिलाओं की सूची बनाई और इस कार्य को फिर हमने आगे बढ़ाया। फिर मैंने होमगार्ड विभाग से और सारे गणपति की महिलाएं भी लगे हुए हैं, ये हमारा पोता है, इनको भी दिल्ली बुलाए थे नरेंद्र तोमर जी ने, ये भी अच्छा आर्टिस्ट है अर्जुन। तो इस तरह से कला थोड़ी फैल गई है हमें और कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और कुछ महिलाएं हमारे हिंदुस्तान में कई जगह शिल्पी मेलों में भाग ले चुकी है और अभी भी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि अभी कुछ देर पहले बताया था कि नौकरी के ऊपर ना बैठे, स्वरोजगार अपना है। अब कई लोग नौकरी ना मिलती तो आत्महत्याएं कर रहे, कितनी आत्महत्याएं बढ़ गई हिंदुस्तान में, बोला नौकरी नहीं मिली हम तो बी एम एस सी पढ़ गए और छोटा कार्य नहीं करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, स्वरोजगार अपना है, अपने सामने रोजगार है। अगर अपने में हुनर है तो मिट्टी से भी अपन सोच सकते हैं, मिट्टी से जब।
1: ये बहुत अच्छी बात कही रमेश जी ने आपने कि अगर अपने हाथों में हुनर है तो आप अपने हाथों की तकदीर की लकीरें खुद बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, रास्ता खुद ब खुद निकल आता है अगर मन में विश्वास होता है। ये मुझे आपका एक जज्बा और भी बहुत अच्छा लगा जब आप कह रहे थे कि कब तक हम कुछ ऐसा काम करते रहेंगे जिसमें दिल को सुकून नहीं मिलता, जैसे कि आप होमगार्ड थे तो उसमें आपको रोजगार तो मिल रहा था, पैसा आ रहा था घर पे भले, लेकिन दिल को चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने अपना जो आपका जो पैशन है, आपका जो कला के प्रति रुझान है, उसको कभी नहीं जाने दिया। वो भले आप सिक्योरिटी में बैठ करके भी उस काम को कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको बरकरार रखा। ये चीज अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा शांति जी से कि शांति जी, जब प्रशिक्षण की बात आई तो आप अपने घर का सारा काम संभालते हुए प्रशिक्षण लेने जाती थी, घर का काम संभालना और सीखना कोई एक नया कला, दोनों में बहुत समय देना पड़ता है, और एक गृहिणी को जो कि एक परिवार का मैं समझता हूँ केंद्र बिंदु होती है, वो अगर हिल जाती है तो पूरा परिवार हिल जाता है। तो ऐसे में जब आपको एक नई चीज सीखनी है, उसके प्रति समय देना है, उसके प्रति मेहनत करनी है, तो आपने कैसे ठान लिया कि चलो हाँ ये मुझे करना है? कभी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या कर रही हूँ, इससे अच्छा तो अपना घर बार ही संभाल लूँ तो अच्छा रहेगा?
2: 4 महीने क्या संभाल लेती ये गुड़िया, घर भी संभाल लेती थी, मैं सास ससुर भी थे वो संभाल लेते थे, बच्चे को भी खिला देते थे, 4 महीने के बच्चे थे, मैंने चली गई तो 2 बजे छुट्टी होती मेरी, घर पे आती थी मैं खाना खाने, फिर 2 बजे फिर चली जाती थी मैं, 3 बजे आती थी घर, तो घर भी संभाल लेती मैं, बच्चे को भी संभाल लेती थी और घर का काम करके निकल भी जाती 10 बजे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए
1: मैं समझता हूँ एक महिला ही होती है जो इतनी सारी चीजों को आसानी से संभाल लेती है और फिर भी मुस्कुराती रहती है, इसलिए शायद देवी दुर्गा को 10 हाथ दिखाते हैं कि 10 लोगों का काम अकेले कर सकती है एक महिला। लेकिन ऐसा आपको कब फील होता है, कैसा

0: होता है जब आपके पति जो है रमेश जी वो कहते हैं कि मैंने इनसे सीखा है, एक तरीके से देखा जाए तो आप उनके गुरु हो गए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये क्या सीखने के लिए बैठ गए मेरे साथ, कैसे ये चल रहा है, मैं ही कर लूँ तो काफी है, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ?
1: मैं वहाँ जाके सभी काम सीखी है, कोई 30 बाया में थी, हम 5 बाया सीखती है, अभी भी कर रही हूँ 5 ही बाया। मैं कुछ सिखाती थी घर पे लाके, ऐसे कपड़े सिलते, ऐसे माप निकालना, ऐसे जोड़ना है, ऐसे इसको तैयार करनी है, मैं सिखाती थी बेटी, सीख गए सभी, सीख गए बेटी
2: सभी कलाकार हो गए।
0: ये आपने बहुत अच्छा बताया कि घर में अगर एक कलाकार आता है तो वो बाकी सबको कलाकार बना देता है, और अगर वो प्राथमिक कलाकार अगर घर की गृहिणी है तो सब तो कलाकार बन के ही रहेंगे। ये तो दिख गया कि उन्होंने सबसे पहले आपको ही वापस से कला से जोड़ दिया, लेकिन आप दोनों का जो आपस का तालमेल है वो बड़ा अच्छा है, एक दूसरे का जो सहयोग है वो बहुत ही सुंदर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आज आप देखते होंगे कि किसी भी परिवार में लोग आपस में मिलकर के कुछ काम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतभेद होता है, मनमुटाव होता है, अहंकार बहुत ज्यादा सामने आता है, आप दोनों कैसे काम करते हैं?
1: 30 बाया तो अभी बड़ी वाली बहू मेरी है नी, उसको भी मैंने ले ली, वो भी गुड़िया सिखाएगा अभी 30 बाया इसमें जोड़ ली मैंने, वो भी सिखाएगी, मैं भी सिखाने जाऊँ।
2: वो राजस्थान की है,
1: वो राजस्थान की लाई में, तो उसको भी पूरी गुड़िया सिखा दी मैंने, तो ऐसे मन में ऐसे नहीं होते कि इसको सिखा दूंगी मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं, पूरा दिल खोल के हम तो पूरी दुनिया को बोले सिखा देंगे, हम हमारी कला हमारे पास नहीं रखी, हमने सबको सिखा दी हमने।
0: रमेश जी आप भी थोड़ा इस सवाल पे जवाब दीजिएगा कि आप दोनों साथ में कैसे काम करते हैं, मतभेद कैसे नहीं होता है, कैसे संभालते हैं, अहंकार का क्लेश कभी होता है या नहीं होता है?
1: नहीं होता सर, खुश रहते हैं तो
2: नहीं होता, बिल्कुल सभी खुश रहते हैं,
1: खुश रहते हैं, हमारा पोता का पोता इतना बड़ा हो गया, खुश से काम करते हैं, हमने खुशी से जाते बाहर।
2: इसमें विशेष तौर से धन परिवार से जुड़ा हुआ, और पहले भी हमारे ब्रह्म कुमार जी का आश्रम है गोपालपुरा, उनके भी एक दो कार्यक्रम में गया था, उस समय एक आप समझते हैं संघ में क्या होता है, जैसे मैंने कला को इसलिए भी आगे बढ़ाया क्योंकि वे लोग हर कला में हस्तशिल्प में आगे हैं, साड़ी बेचने वाले वो लोग हैं, लकड़ी का कार्य करने वाले वे लोग, और लोहारी का कार्य करने वाले वे लोग, मतलब हर प्रकार के वे लोग, तो हमारे लोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, इसलिए अपने लोगों को अधिकतर प्रशिक्षण दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी हस्तशिल्प कला क्षेत्र में आगे आए और अपने लोग थोड़े कहना नहीं चाहिए आलसी भी होते हैं, जैसे गुड़िया बनाते हैं, अरे तो बहुत मेहनत से छोटी कुटिया ये बनाती, ये बनाना पड़ेगा, हाथ बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, अरे बनाएंगे जब तो पैसा मिलता है, अब ये बैलगाड़ी 1500 की है, ये गुड़िया 300 रुपए की है, सामग्री ज्यादा नहीं लग रही, सामग्री नहीं है, बहुत कम लगती है, लेकिन केवल मेहनत है,
1: मेहनत है सर।
2: एक महिला मतलब 3 जोड़े गुड़िया बना लेती, 3 जोड़ा बना लेती है, मतलब 300 है 900 का हो गया रोज, उसमें आप समय भी निकाल लो, खाना बनाना, कपड़ा धोना, घर का कार्य, मतलब स्वतंत्र, किसी के बंधन में नहीं, अपने ऊपर कोई अधिकार जमाने वाला नहीं, स्वतंत्र, स्वतंत्र होकर भी आप 3 जोड़े गुड़िया बना सकते हो, चाहे दिन में समय निकाल के बनाओ और रात्रि तक बनाओ, रात्रि के करीब 9 बजे तक बनाएगी, आप बेरोजगार कैसे रह सकते हैं, तो आपने ये करना चाहिए, स्वरोजगार है, किसी के बंधन में नहीं, किसी की गुलामी नहीं, स्वरोजगार, अपना रोजगार अपन स्वयं करें, इसलिए अपने लोगों को मैं अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहा हूँ, आप स्वरोजगार अपना है, जैसे हमारे और भी बहुत सी वस्तुएं बनती है, आदिवासी जुड़ी जैकेट होता है, उसकी बहुत डिमांड है, 3000 में बिक्री होता है, केवल 2 मीटर कपड़ा लगता है, 1 मीटर का कपड़ा कितने का 50 रुपए का, 2 मीटर कपड़ा 100 रुपए का, और वो जैकेट बनाकर आप भेजोगे 3000 का, इतना चाहिए, लेकिन वही मैंने बताया लोग आलसी हो गए, बोला इसमें तो मेहनत बहुत है, कौन समय खराब करे, बहुत मेहनत, ये सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मोबाइल पे बिगड़ जाइए, मोबाइल जब से मोबाइल निकला है तब से बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई, इसलिए मेरे को भी बराबर मोबाइल चलाने आते, ये हमारा पोता दिखा रहा, मैंने बताया कि ऐसे होता, मैंने कहा ठीक है, इसलिए मेरा यही कहना है मोबाइल का सिर्फ 1 घंटा देखी, अब वो खाना खाने के बाद भी मोबाइल, स्कूल में बैठे वहां पर भी मोबाइल।

0: और मोटरसाइकिल से बैठे भी मोबाइल, इसलिए ज्यादा मोबाइल ना देखकर सोलह हजार अप्लाए और समय बर्बाद न करें, हस्तित्व कला क्षेत्र में आ गए, ये मेरा कहना है।
1: ये आपने बहुत अच्छा एक संदेश भी दिया सबको कि हमें चेक करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारा सारा दिन भर का जो समय है वो कहाँ कहाँ हम लगाते हैं, और जिन जिन जगहों पे हम हमारे समय को लगा रहे हैं उसमें से कितना हमें आमदनी हो रहा है। मैं सिर्फ पैसों की आमदनी नहीं कहूंगा, लेकिन कोई चीज अगर हम सीख भी रहे हैं, कितना हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कितना हमारे अंदर शिक्षा आ रही है, या हम कितने अच्छे बन रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति घंटों घंटों कोई एक काम कर रहा है लेकिन उससे उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो वो काम किसी काम का नहीं। कोई व्यक्ति अगर घंटों घंटों मोबाइल पे अपना समय लगाता है लेकिन उससे ना वो कुछ सीख रहा है, ना कुछ कमा रहा है, ना किसी का जिंदगी बदल पा रहा है, तो इसका क्या फायदा। रमेश जी और शांति जी ने बहुत साफ और बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि स्वरोजगार जो है वो ना केवल आपके समय को बचाता है लेकिन आपको भी बचाता है बहुत सारे व्यसनों में डूबने से। और जैसे कि आजकल के जमाने में सोशल मीडिया या मोबाइल जो है एक व्यसन की तरह बन गया है नहीं व्यसन, लेकिन लोगों ने इसको ऐसा एक लत बना दिया कि वो व्यसन की तरह हो गया है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, बगैर सिगरेट के वो रह नहीं सकता, ऐसे किसी से आप उसका मोबाइल छीन ले, थोड़े समय के लिए दूर रख दे, तो उस व्यक्ति को अंदर से तड़प होने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है। ये जो आजकल का जमाना है, जो तकनीक की तरफ इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और मोबाइल आदि, मोबाइल पे गेम्स खेलना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। लोग टीवी, यूट्यूब आदि इन चीजों पे बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में कभी आपको अंदर से नहीं लगता कि हमारे खिलौनों का जो है वो भविष्य थोड़ा अंधेरे में है, या लोग शायद इन खिलौनों को कम पूछेंगे, या इसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जा रही है? क्या दिखता है आपको इसका भविष्य, और कैसे आप इसको संभालते हैं?
0: जैसे मैंने बताया कि खोए जाओगे जिले विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए तीर कमान ले लो, आदिवासी का परंपरागत हथियार तीर कमान, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी पहले गांव के आदिवासी तीर कमान बना लेते थे, ये तीर कमान बनाते थे ये वाला, अब आजकल के नौजवानों को बनाना नहीं आता, और तीर कमान खरीदने के लिए गुजरात जाते हैं, पावागढ़ रोड पर, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग बनाकर बेचते हैं। पहले बनाते थे आदिवासी, लेकिन अब नहीं बनाते, आता नहीं है। एक पत्थर फेंकने वाली गोफर आता है जो जूट की बनती है, वो नहीं आती बनाती, नहीं आते बनाते। और यहाँ पर आदिवासी माला पहनती थी गले में, जो एक ज्वेलरी आती थी, दर्शन माला बोलते थे, गले में पहनती थी आदिवासी महिलाएं। वो आज से 20 साल पहले प्रत्येक आदिवासी जो महिला होती थी उसके गले में दर्शन माला होती थी, देसी मोती होते थे झाबुआ जिले, लेकिन अब कोई नहीं बनाता, क्योंकि रेडीमेड बाजार में 150-200 वाली मालाएं पहन लेते, वो मालाएं नहीं पहनती। ये तो शर्म भी आती है, ये तो आदिवासी मालाएं जो अपने बेकार लग रहा है। आजकल फैंसी आइटम निकल गए, फैंसी मालाएं, फैंसी लॉकर, हर चीज फैंसी। और पहले जकेट आता था, जुड़ली बोलते थे, आदिवासी जुड़ली मंडी जो राजस्थान के बांसवाड़ा कुशलगढ़ में मिलती है, वो विलुप्त हो गई झाबुआ जिले में, कोई नहीं बनाता जुड़ली मंडी। और बनाते भी है तो पहनते नहीं, लग गया तो ये तो सही नहीं लग रही फैशन सही, इसलिए बहुत से वस्तुएं विलुप्त हो गई। मेरा कहने का मतलब जो मिट्टी के बनने वाले खिलौने विलुप्त हो गए, तीर कमाना विलुप्त हो गया, दर्शन माला बनाना विलुप्त हो गया, यहाँ का ये कपड़ा विलुप्त हो गया, ये कपड़ा प्रिंट है ये नहीं बनता है, सूरत में बनता है, ये बहुत मेहनती था आज से 30 साल पहले, ये लुगड़ा आज जल के लड़कियां 2 मीटर का एक छोटा सा जाकला सर पे डाल लेती, छोटी साड़ी, वो भी फैंसी डिजाइन, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं विलुप्त हो गई। कारण यही है कि हमारे लोग इस संस्कृति को भूल रहे हैं, और आने वाला हम लोगों ने इस संस्कृति को जिंदा रखा, जिंदा रखा और इसको जिंदा रख रहे हैं, और भी लोग इसको मतलब विलुप्त न होने दे, इस कला को बनाए रखते हैं, तो गिने चुने लोग का।
1: जैसे कि रमेश जी ने बताया कि लोगों की अवहेलना की वजह से ये कला जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और कई चीजें ऐसी हैं आदिवासी संस्कृति की जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज वो है नहीं, क्योंकि लोगों ने उसके प्रति सही ध्यान नहीं दिया, उसका सही मूल्यांकन नहीं किया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन रमेश जी और शांति जी जैसे लोग जब तक हैं, और उन्होंने जब तक अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है इन आदिवासी कलाओं के प्रति, तब तक इनको कुछ नहीं हो सकता। और इस चीज का ही सबूत है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया रमेश परमार जी और शांति परमार जी को। ये सम्मान दर्शाता है कि आप के पसीने की एक एक बूंद जायज नहीं गई है, उन बूंदों से जो फूल खिला है, जो फसल उगी है, वो

0: लंबे समय तक रहने वाली है। और सबसे कीमती चीज जो आपने की है केवल ये नहीं है कि इस संस्कृति को आपने संजोया है, बल्कि ये है कि इस संस्कृति को आपने अगली पीढ़ियों से जोड़ा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कलाकार जो होते हैं वो खुद ही उस कला में बहुत पारंगत होते हैं, लेकिन उनके आने वाली पुश्तियां जो होती हैं या जो उनके अगली पीढ़ी होती है वो उसमें रुचि नहीं लेती है। लेकिन आपने इस, मैं कहूंगा, अभिशाप को तोड़ दिया है और आपने अपने पूरे परिवार को उससे जोड़ा है। आपने बताया कि आपके बच्चे, उनके बच्चे आदि सभी इस कला से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक ये रोचक यात्रा है और लोगों के लिए भी ये रोचक यात्रा है। आप कभी जब अपने झाबुआ क्षेत्र से बाहर जाते हैं और लोगों को जब सिखाते हैं इस कला को, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? क्या वो सीखने में रुचि दिखाते हैं या उनको लगता है कि ये क्या सीख रहे हैं? कैसा रहा है अभी तक का आपका सफर लोगों के साथ?
1: सीखने वाले लोग बहुत अच्छा सीखे हैं, 15 दिन में सीख के गुड़िया उसी से सिखाते हैं, तो मन छोड़ के सभी को गुड़िया सिखा दी, एक एक बच्चे को गुड़िया सिखा दी, मैं तैयार भी कर ली उन्होंने।
2: अभी कुछ वहाँ पूर्व दिल्ली बुलाए थे हमको, वहाँ पर 6 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया, एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली, वहाँ पर हमारे अनित शर्मा जी प्राचार्य महोदय, और सभी स्कूलों में हमने प्रशिक्षण दिया सिखाया। दिल्ली में यमुना नदी है, वहाँ पर मिट्टी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमने प्रशिक्षण दिया और वहाँ के छात्र छात्राएं उनके साथ स्टाफ के जो शिक्षक सीखा है वो भी सीख गया है, तो हम सभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी गुजरात भी गए थे, वहाँ पर भी सीख गए, इंदौर में अभी हम कले आ रहे हैं तो वहाँ पर भी सीख गए हैं। हम चाहते हैं इस कला को पूरे भारत में फैलाएं, सभी कर रहे हैं, इस कला को विलुप्त न होने, तो इस कला को हम बिल्कुल आगे।
0: जैसे कि आपने बताया कि भारत के कोने कोने में आप जाते हैं और जाकर के इस अनोखी कला को आप सिखाते हैं और लोग खुशी खुशी सीखते भी हैं, जो सीखने और सिखाने की खुशी है वो तो किसी भी सम्मान, किसी भी रोजगार या आमदनी से बहुत ज्यादा बढ़कर होता है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। जो खुशी आपको किसी को कुछ सिखाने में मिलती है और जो खुशी किसी को कुछ सीखने में मिलती है, तो इसके लिए तो आपका हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम ही होगा। एक सवाल जो मुझे ये जानने का मन करता है कि जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं सिखाने के लिए, तो आप भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे होते हैं, अलग प्रकार की जीवन शैली को देखते हैं, लोगों का उठना बैठना, पोशाक, आशाज, वेशभूषा आदि सब कुछ बदल जाता है, और आपको भी भारत एक नए तरीके से देखने को मिलता है, जैसा कि आप जहां रहते उससे थोड़ा अलग। जब आप ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आपको भारत का इतना विविध रंग बिरंगा स्वरूप देखने को मिलता है, कौन सी एक वो बात है जो आपको ऐसा लगता है कि पूरे भारत को एक बना देती है? भले अलग अलग दिखता है लेकिन एक बनाने वाली बात कौन सी है भारत की?
2: मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताई देता हूँ, जैसे हम हस्तशिल्प से संबंधित ही बता, पूरे भारत में अगर हमारे पूरे भारत के नौजवानों को रोजगार दे रहा है तो स्थिति पे आगे आए, लेकिन एक हमने देखा कि जम्मू कश्मीर है, केरल, कर्नाटक, वहाँ पर हस्तशिल्प सामग्री की वो मूर्ति कला जैसी वो बिक्री नहीं होती है, तो बोलता है कि हम इस चीज को नहीं काम कर, सारी सामग्री भी ले जाए लेकिन बिक्री नहीं होती। एक बार हमने एक महिला को भेजा था, हमने जो जीवन वाला लाया एक आदिवासी महिला को भेजा था, लेकिन वहाँ पर क्या उनको परेशानी आ गई, स्टॉल भी लगाए लेकिन बिक्री नहीं हुआ, किराए के पैसे की मोहलत हो गई, अधिकारियों से पैसा मांग कर आना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में हस्तशिल्प जैसा तो है नहीं, अलग प्रांत अलग तो नियम, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। अभी कला क्षेत्र केवल मध्य भारत में ही मेरे को देखने में आ रहा, गुजरात में तो अच्छा है, गुजरात अच्छा है, केरल में ठीक नहीं है, कर्नाटक ठीक नहीं है, अंडमान निकोबार वहां ठीक नहीं है, मिजोरम वहां नहीं है, अभी हमको असम में भी बुलाया था लेकिन इतना हमने मान लिया असम नहीं गए, तो कई क्षेत्र में ऐसा भी है कि पूरे हिन्दुस्तान में अगर हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाए तो देना चाहिए, सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, पर इस तरह का भी एक मत नहीं है, अलग राज्य अलग मत रहता है।
0: भारत को जोड़ने वाली जो एक चीज आपने बताई वो है उसका हस्तशिल्प, चाहे कहीं पर भी आप जाएं, चाहे किसी भी कोने में जाएं, रंग रूप और जो प्रस्तुति है उस कला की वो बदल सकती है, लेकिन कला का जो उद्भव है, जो उसका प्राण है, वो है उस कलाकार का दिल से उस कला के प्रति समर्पित होना, जो कि पूरे भारत में एक जैसा ही है और इसलिए भारत को एक बनाती है। भले झाबुआ में आप जाएंगे तो आपके खिलौने

0: देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो किसी को वर्ली चित्र देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें जो व्यक्ति अपना जी जान फूंक देता है वो बहुत बड़ा समानता है। उसकी वजह से भारत एक सूत्र में बंध जाता है और भारत तो सदा से ही हस्तशिल्प के मामले में अग्रणी रहा है। आज की परिस्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ जब रमेश परमार जी और शांति परमार जी जैसे लोग होते हैं तो वो इस दशा दिशा को जबरदस्त तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि वो लगे हुए हैं, वो कभी किसी की सुनते नहीं, विरोधों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा मुकाम तय करते हैं जो कि लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। जैसे रमेश जी और शांति जी ने इस मुकाम को हासिल किया जहाँ केवल हस्तशिल्प के द्वारा उन्होंने न केवल अपने झाबुआ क्षेत्र का नाम रोशन किया पूरे भारत के मानचित्र पर, लेकिन पद्मश्री सम्मान प्राप्त करके इस कला को भी बहुत बड़ा एक उम्दा प्रशस्ति दिया है। इस वजह से रमेश जी और शांति जी आपका हम बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन का एक लंबा समय इस कला के प्रति समर्पित कर दिया और इसकी वजह से भारत और भारत की आबादी हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहेगी। हम सब हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने समय निकाला और रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आप आए, आकर के आपने हमारे श्रोताओं से बातचीत किया। कभी मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथी झाबुआ जरूर पहुंचेंगे और आपसे आपके द्वारा ही सीखा हुआ गुड़िया बना करके वापस आएंगे, या कभी आप माउंट आबू आइएगा हमारे बीच में और हमें और हमारे श्रोता साथियों को गुड़िया बनाना जरूर सिखाइएगा। आपकी नई पुत्रवधु जो है वो तो राजस्थान की ही है, तो उनके साथ ही भले आ जाइए और आकर के हमें भी गुड़िया बनाना सिखाएं। ये जरूर हम सबके लिए बहुत ही एक नया अनुभव होगा, क्योंकि जब हम किसी रचनात्मक कार्य में जुड़ते हैं तो हमारे मन से बहुत सारा नेगेटिव नकारात्मक विचार जो है वो दूर हो जाता है। दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, इन चीजों से हम दूर हट जाते हैं क्योंकि हम कुछ क्रियात्मक कार्य में, रचनात्मक कार्य में लग जाते हैं। तो जाते जाते अगर पूरे भारत को कोई संदेश देना है तो सबसे पहले रमेश जी आपसे वो संदेश सुनना चाहेंगे और फिर शांति जी आपसे वो संदेश सुनना चाहेंगे।
1: मैं हमारे भारतवासी युवक युवतियां, बेरोजगार लोग, छात्राएं, सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट शासकीय नौकरी को करना बैठे आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार अपनाए, रोजगार के बहुत साधन है, इसमें चिंता की जरूरत नहीं है और निराश होने की जरूरत नहीं है। रोजगार हमारे सामने है और हमें रोजगार करना चाहिए। और इसी बात को लेकर मैं हमारे युवक युवतियों को बताना चाहता हूं, आप स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाएं, यही मैं संदेश देता हूं।
0: शांति जी आप भी अगर कुछ बताएं। शांति जी का जो अनुभव है वो यही है कि उनके जैसे और भी महिलाएं तैयार हों और जो न केवल अपने घर गृहस्थ को अच्छे से संभाले लेकिन देश की कला परंपरा को भी संभाल सकती हैं, ऐसा उदाहरण शांति जी ने प्रस्तुत किया है। और रमेश जी और शांति जी ने दोनों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब किसी परिवार में जो युगल होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों जब एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ते हैं तो वो परिवार बहुत ही फलीभूत होता है। ऐसे ही जब वो दोनों साथ में मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम भी बहुत अच्छे से फलीभूत होता है। एक दूसरे के आइडियाज का सम्मान करना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे की कमजोरियों को समझ करके उनको मदद करना, ये वाकई में नींव बन जाता है किसी भी कार्य के सफलता का। शांति जी और रमेश परवार जी आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत कुछ सुना, सीखा और देखा भी। आपके खिलौने बहुत ही खूबसूरत हैं और उनको देखते साथ ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, जैसे कि आप दोनों के शक्ल पे है शुरू से। हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा कभी हमारे साथ जुड़े और रेडियो मधुबन के श्रोता साथियों से रूबरू मिलने के लिए कभी आप माउंट आबू जरूर आए। और ऐसा तो मुझे लगता है कि आकर के आप अगर हमें और हमारे श्रोता साथियों को कुछ सिखाते हैं ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आप जहां भी जाएं, जिस भी देश के कोने में जाएं, चाहे भारत के या किसी विदेश के कोने में जाएं, भारत का नाम आपसे रोशन होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये आदिवासी शिल्प कला जो है जिसको आपने एक नवजीवन दिया है वो भी आगे यूं ही बढ़ता रहे। आप सुखद स्वस्थ जीवन के सौभाग्य के साथ जिए, ये हमारी आपके प्रति शुभेच्छा है। यशस्वी भारत कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: आज का एपिसोड वाकई में जीवन को मुस्कुराने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती जीवन में मुस्कुराहट लाने के लिए, छोटी छोटी चीजें, लेकिन छोटी छोटी चीजें इतने प्यार से, इतने शिद्दत से करनी होती हैं कि वो छोटी चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ा रूप ले लें। एक छोटी सी चीज, गुड़िया बनाना, लेकिन उस गुड़िया बनाने में खुद को समा देना, एक एक गुड़िया को अपने हाथ से बनाना, सीखते रहना। उम्र आगे बढ़ रही है लेकिन सीखना भी बढ़ते जा रहा है। कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से रमेश परमार जी और शांति परमार जी देखिए आज कहां तक पहुंच गए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होना, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि अगर हम कोई भी एक चीज को पकड़ ले अपने जीवन में और उसको अपना संपूर्ण समर्पण दे, अपना मेहनत दे, अपना समय दे, अपना प्यार दे, अपना लगन दे, तो वो जरूर चमकती है, वो सोना बन जाती है। और जब ऐसे सुनार भारत में हो तो भारत को सोने की चिड़िया बनने में और ज्यादा समय नहीं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं खुद को, और मैं समझता हूँ आप भी खुद को, बहुत सौभाग्यशाली समझते होंगे कि हर एपिसोड में हम कुछ ऐसे मेहमानों से मिलते हैं जो भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनाने के पीछे तहे दिल से मेहनत कर रहे हैं। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान से, या क्या पता मेहमानों से। जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा यशस्वी भारत कार्यक्रम के साथ, रेडियो मधुबन के साथ। सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, 107.8 FM रेडियो मधुबन।
1: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन।

0: जहां विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का विषय है ध्यान का विज्ञान और आत्मिक शांति। यह विषय सुनने में जितना आध्यात्मिक प्रतीत होता है उतना ही वैज्ञानिक भी है। आज का मनुष्य बाहरी रूप से सुविधाओं से घिरा हुआ है और भीतर से अशांत, तनावग्रस्त और असंतुलित होता जा रहा है। लगातार बदलती अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा, सूचनाओं का बोझ और भविष्य की चिंता, ये सब हमारे मन को थका देते हैं। प्रश्न यह है कि क्या शांति केवल परिस्थितियों के बदलने से आएगी या फिर उसका स्रोत हमारे भीतर है। यहीं से ध्यान की आवश्यकता और उपयोगिता समझ में आती है। ध्यान को अक्सर केवल साधु संतों की साधना या धार्मिक क्रिया मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में ध्यान एक मानसिक और तंत्रिका वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार तरंगें उत्पन्न करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स। जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं तब बीटा वेव अधिक सक्रिय होती है। ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा और थीटा अवस्था में प्रवेश करता है, जहां शांति, स्पष्टता और रचनात्मकता बढ़ती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है और यहाँ तक कि नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। यह केवल अनुभव नहीं बल्कि प्रामाणिक तथ्य है। अब प्रश्न उठता है, ध्यान आत्मिक शांति कैसे देता है? आत्मिक शांति का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। ध्यान हमें सिखाता है कि हम मन के अधीन नहीं है बल्कि मन के निरीक्षक हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं पर हम उनसे जुड़ते नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आत्मा की मूल अवस्था शांति का अनुभव होने लगता है। झील का पानी जब तक हिलता रहता है तब तक उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। पानी के स्थिर होते ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार मन के स्थिर होते ही जीवन के निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। ध्यान का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पक्ष यह भी है कि यह न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, अर्थात मस्तिष्क की खुद को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता। नियमित ध्यान करने वाले व्यक्ति में करुणा, धैर्य और भावनात्मक संतुलन स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगता है। ध्यान के लिए किसी विशेष स्थान या लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। दिन में केवल 10 से 15 मिनट शांत बैठकर आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करना भी पर्याप्त है। यदि हम चाहें तो सकारात्मक संकल्प या आत्मिक पहचान, मैं शांत आत्मा हूं का अभ्यास भी कर सकते हैं। याद रखिए, ध्यान पलायन नहीं है या जीवन से भागना नहीं है बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला है। ध्यान हमें परिस्थितियों को बदलने की नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने की शक्ति देता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस शांति को हम बाहर खोजते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही है। ध्यान उस शांति तक पहुंचने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सेतु है। यदि हम इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो न केवल हमारा मन शांत होगा बल्कि हमारा व्यवहार, हमारे संबंध और हमारा संपूर्ण जीवन भी संतुलित हो जाएगा। इसी संदेश के साथ आज के चिंतन को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
5: थँक यू सो मच. ओम शांती.
4: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
5: थँक यू
4: सिस्टर. करेज के ऊपर कुछ मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूंगा. दिस इज करेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द वर्च्यूज. Because without courage, you can't practice any other virtue consistently. You can practice any virtue erratically, but nothing consistently without courage.
5: हमने पिछली बार देखा power to decide against all public opinion also. चाहे लोग कुछ भी और कह रहे हों, चाहे मान्यताएं कुछ और हों, belief systems कुछ और हो, और ये इतना beautiful है कि ये सब कुछ करने के लिए, मतलब अपनी सारी values, qualities, originality पे सदा टिकने के लिए. ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट थी कि erratically तो आप कोई भी वर्च्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कभी किया कभी नहीं किया, थोड़े दिन किया फिर छूट गया, छोटी मोटी बातों में किया बड़ी बातों में गिव इन कर दिया. तो इरेटिकली तो आप कोई भी वर्ष्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है तो फिर सदा के लिए सबसे बड़ी वर्च्यू, या इसको हम पावर भी कह सकते हैं, वो है करेज, हिम्मत. क्योंकि बातें आएंगी हर बार, परिस्थितियां आएंगी हर बार, अपनी वैल्यू को पकड़ के रखना, अपनी उस ओरिजिनलिटी पे टिके रहना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होगी हमारी हिम्मत, हमारी करेज, विच ऑल्सो मीन्स द पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड एनी पर्सन.
4: हो सकता है कोई रॉन्ग डूइंग के लिए मुझे बहुत सारा पैसा मिले, रॉन्ग बिजनेस मतलब विच इज नॉट लीगल और वट एवर विच इज नॉट राइट, तो वहाँ करेज टू से नो भी आना चाहिए ना.
5: दिस इज ओनली इट कि अपनी वैल्यूज पे टिके ना, लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं सकम्प किया, ग्रीड क्या कहती है उस पर नहीं सकम्प किया, फैमिली भी कई बार कह सकती है कि इट्स ओके टू डू दिस, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, सारे प्रेशर्स के अगेंस्ट, अपने पुराने संस्कार के भी अगेंस्ट,
4: अपने ग्रीड, अपने लालच,
5: अपना ईगो, अपना स्टेटस, अपनी पोजीशन, वो सब कुछ तो बढ़ेगी ना अगर हम धन ले लेंगे इस तरह से, उन सारे चीजों के अगेंस्ट खड़े होकर अपनी ओरिजिनलिटी के थ्रू डिसाइड करके आंसर देना.
4: कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, करेज,
5: करेज, कितनी हिम्मत होनी चाहिए. और इसलिए राजयोग में जब हम पावर्स सीखते हैं, समझते हैं और

0: अनुभव करते हैं ये हमारी नेक्स्ट पावर बन जाती है. दैट इज पावर टू फेस एनी सिचुएशन एंड पावर टू फेस एनी संस्कार एंड पावर टू फेस द संस्कार ऑफ एनी अदर पर्सन. एक हमने देखा सहन करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति. पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. देर इज ऑलवेज दैट फर्क कि किस बात में सहन करना है, किस बात में सामना करना है, किस बात में एडजस्ट करना है, किस बात को फेस करके मुझे एक्सप्लॉइट नहीं होना है. ये भी थिन लाइन है. ऐसे नहीं हम तो सहन कर रहे थे. कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा था, हमने कहा हम तो सहन कर रहे थे. कितने सालों के बाद बोलेंगे आई वॉज बींग अब्यूज्ड फॉर सो मेनी ईयर्स. होता है ना ऐसा. एक बार भी कोई ऐसा कुछ करे तो हमारे पास सामना करने की शक्ति होनी चाहिए. कितने लोग 5 साल 10 साल के बाद आई वॉज बींग अब्यूज्ड बाय सो एंड सो इन माई फैमिली, आई वॉज बींग एक्सप्लॉयटेड बाय सो एंड सो एट माई वर्क प्लेस. कितनी बहने पता नहीं कितने सालों बाद कहते हाँ मेरे हस्बैंड तो मुझ पर हाथ उठाते ही हैं, मुझे मार तो खानी ही पड़ती है, क्या करे सहन कर रहे हैं. तो परमात्मा कहते इसको सहन नहीं करना है. सहन क्या करना है और किसका सामना करना है वो भी परखने की शक्ति चाहिए. सहन क्या करना है, किसी का कोई संस्कार है उसके साथ एडजस्ट करके हमें चलना है. लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हमारा नुकसान कर रही है और उसका हम सामना करने की बजाय मजबूरी से सोशल प्रेशर के कारण हमने कहा हम इसको सहन कर रहे हैं. और जो छोटे छोटे लोगों के संस्कार हैं जिसको हमें सहन करना है उसको हम सामना करते हैं. वी कन्फ्रंट पीपल. जहां हमें एडजस्ट करना चाहिए हम कन्फ्रंट कर देते हैं. जहां हमें कन्फ्रंट करना चाहिए वहां हम कहते हमने एडजस्ट कर लिया. दिस थिन लाइन, ये करेज इसलिए चाहिए. करेज टू फेस सिचुएशंस एंड पीपल ऑल्सो.
1: वो वाली लाइन याद है आपको, ओ गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज.
0: वेरी ट्रू.
1: द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो
0: द डिफरेंस बिटवीन द टू.
1: तो ये विजडम
0: सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है. कई जगहों पर ऐसा होगा कि हम जो प्रिंसिपल्स पे चलना चाहते हैं, जो सही है, वैल्यू सिस्टम जो सही है, दूसरे लोग नहीं चलेंगे हमारे आसपास. उसमें भी उस चीज का भी सामना करना हो सकता है. उसके लिए हमें कुछ तंग भी किया जाए, कुछ किया, उसका भी सामना करना. एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल. कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करना है अपनी वर्च्यूज को तो फिर करेज के बिना तो वो होने वाला नहीं है. जहां सामना करना है अगर हम वहां नहीं करते तो अंदर ही अंदर आत्मा की शक्ति बढ़ने की बजाय एक्चुअली घट रही है. राइट. कभी कभी हमें कुछ कहने की जरूरत है, हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करने की जरूरत है. हमें असर्टिवली होकर अपनी बात कहने की जरूरत है. हम वो नहीं करते. हम कहते हमने सहन किया, हम चुप रहे. जहां सामना करना था वहां अगर चुप रहे तो वहां आत्मा की पावर बढ़ नहीं रही है. हर बार हर डिसीजन में सिर्फ चेक करना है आत्मा की शक्ति बढ़ रही है या आत्मा की शक्ति घट रही है. ये अगर हम चेक करते जाएंगे देन वील कम टू नो इफ यू आर यूजिंग द पावर इन द राइट वे. एक बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम कहते हैं. अगर हम एक पतीले में पानी को बॉईल करने के लिए रख दें और उसके अंदर एक फ्रॉग को डाल दें, क्योंकि फ्रॉग के अंदर बहुत एडजस्ट करने की पावर होती है, वो अडेप्ट करता रहता है पानी के टेम्परेचर से अपने आप को. बॉइल फ्रॉग सिंड्रोम में क्या समझाते हैं कि आप पानी को गर्म करना शुरू कर दो तो फ्रॉग क्या करता है, वो मेंढक अपने आप को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट ही करता जाता है. जब वो पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर आता है तब उस फ्रॉग ने एक्चुअली जम्प आउट करना होता है, क्योंकि नाउ इट कैन नॉट टेक इट एनी मोर. उसने अब एडजस्ट नहीं कर सकता वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर. तो व्हेन द वॉटर रीचेज द बॉइलिंग पॉइंट वो फ्रॉग जम्प करने की

0: कोशिश करता है, लेकिन जंप करना जो उस फ्रॉग की नेचुरल चीज थी वो उस क्षण जंप कर ही नहीं पाता बाहर, क्योंकि वो एडजस्ट करते करते अपनी पूरी शक्ति को खत्म कर देता है. एंड देन इन द मैनेजमेंट वर्कशॉप्स दे आस्क अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, व्हाट किल्ड द फ्रॉग, इज इट द वॉटर और इज इट द डिसर्निंग पावर ऑफ द फ्रॉग टू सी व्हेन इट हैड टू जंप आउट.
1: सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबके पास ये शक्ति नहीं है. कई आप लड़कियों को पूछो कि आपके घर के अंदर आपके रिश्तेदार आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे तो आप बोल नहीं सके, तो मुझसे वो उन्होंने कहा भी कि मैंने अपनी माँ को बोला और मुझे माँ ने मुझे थप्पड़ मारे, तो वो क्या करे, मजबूर है वो.
0: अगर आप वो अलाउ करते रह गए समथिंग विच डजेंट अग्री विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट,
1: क्या करें, घर छोड़ के भाग जाए,
0: अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे. आज प्रोटेक्शन
1: नहीं होता, कई गांव में कई गरीब लोगों में नहीं होती, तकलीफ है ये.
0: ये है हमारी शक्ति की कमी. इसका गांव और शहर और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है. गांव में भी बहुत कमाल की कहानियां सुनने को मिलती है, कहां कितनी हिम्मत से क्या कुछ नहीं ओवरकम कर लेते हैं लोग. इसमें गांव और शहर की बात नहीं है, इसमें बाहर सपोर्ट क्या मिलेगी नहीं मिलेगी की बात नहीं है, इसमें है आत्मा में कितनी पावर है सामना करने की बात की.
1: यहाँ के विलेज में औरतों ने मिलकर पूरे बुटलेगर्स को और पूरे अल्कोहल के जितने सेलर्स को विलेज के बाहर निकाल दिया.
0: तो वो तो शहर में भी नहीं हुआ अभी तक.
1: नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया, गांव की औरतों ने बोला कोई नहीं बेचेगा.
0: तो इट्स नॉट अबाउट वेयर यू आर, बात कभी भी सिचुएशंस की, लोगों की, सर्कमस्टांसेस की नहीं होती है. बात होती है मेरी अपनी शक्ति की. बार बार इसको हमें अपने आप के साथ रिवाइज करना है. आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ. मैं किसी चीज के लिए भी नहीं कह सकती मजबूरी, मजबूरी नहीं. हाँ, सही है कुछ और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, उस पर मुझे वर्क करना है. लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा और उसके साथ हम एडजस्ट करें, ये हिम्मत नहीं, ये मेरी कमजोरी की निशानी है. तो हर बार चेक करना है, मैं आत्मा कहीं लोगों से डर के, दुनिया क्या कहेगी सोशल प्रेशर से डर के, या ये डर के कि मेरा आगे भविष्य क्या होगा इफ आई स्टैंड अप अगेंस्ट दिस, इन दैट just because of all these things am I compromising on my values and principles somewhere, because that will also deplete soul power. Jitna hum roz parmatma se connection jodenge, again meditation ke bina har ek ke andar ye shakti agar nahi bhi hai to daily meditation karne se ye shakti emerge hoti hai. Ye har ek ko aaj check karna padega, kahin aisa koi cheez to nahi hai, कोई लोग तो नहीं है, कोई हमारा अपना संस्कार तो नहीं है जिसका हमें सामना करने की जरूरत है. वी हैव टू फेस इट एंड चेंज इट. कोई ऐसा तो नहीं है जिसके साथ हमें सहन नहीं करना, लेकिन अगर हम सहन करते जा रहे हैं तो मेरी अपनी शक्ति कम हो रही है. वो करेज को मुझे वापस अपने अंदर वापस इमर्ज करना है. आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल. सर्वशक्तिवान, जब हम कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, रोज उससे अगर कनेक्शन हम जोड़ेंगे, रोज पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो ये जो फियर्स है ना छोटे छोटे हमने जो पकड़ के रखे हुए, चाहे वो सोशल स्टिग्मा के हैं, चाहे वो अपनी ही कोई फियर है, ये सारे फियर्स से हमारे लिए ऊपर उठना बहुत ईजी हो जाएगा. इसलिए आपकी वो लाइन बहुत अच्छी है, कोई भी एफर्ट हम करें, कोई भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, कोई हम डिसीशन आज लेते हैं कि ये मैंने चेंज करना है, ये संस्कार को मैंने बदलना है, उसको बदलने के लिए भी हिम्मत चाहिए. बाहर लोगों के साथ तो हिम्मत चाहिए, संस्कारों के साथ औरों की हिम्मत चाहिए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी आदत को, उसका सामना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए. क्योंकि हम नहीं तो कभी कभी अपने ही संस्कार से हार जाते हैं कि सोचा तो था आज से करेंगे, डिसाइड तो किया था आज से करेंगे, लेकिन सामना करने की बजाय अपनी, फिर हम क्या कहते हैं, आदत से मजबूर. कुछ हमारे अपने संस्कार हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका भी सामना, वो भी हिम्मत से, कि हम कभी भी अपने ही संस्कार के परवश होकर हार तो नहीं जाते.
1: पुरानी

0: आदतें,
1: पुरानी आदतें, तो उस पर भी तो हिम्मत से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना।
0: मैंने महात्माओं में देखा है, बड़े बड़े संतों में देखा है, किसी को एंगर कितने बड़े बड़े महात्माओं में देखा है, वो संस्कार कितना लास्ट जाता है उन्होंने खान पीन पान पे बात करने पे, साइलेंस करते हैं, मौन करते हैं दिन में 5-5 घंटे, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन है
1: हाँ, तो उस संस्कार का सामना करना, लेट अस नॉट अलाउ इट टू लिव इनसाइड अस, हमें उसका सामना करना है, उसको भी अपने घर से निकालना पड़ेगा।
0: वो कम्फर्ट जोन है ना मेरा, आई एक्सेप्ट दिस कम्फर्ट जोन, ठीक है जी मेरा नेचर एक ही तो है, बाकी सब जगह तो मैं अच्छा हूँ।
1: एक चीज भी हमारी पावर को क्या करेगी, डिप्लीट करेगी ना। इट्स नॉट कि हमने एकदम से उस पर ओवरकम कर लिया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। सी, जैसे हम औरों को क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं एक्सेप्ट करना है,
0: दूसरे के अंदर जो एंगर है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ऐसे,
1: तो अपने
0: अंदर एक ही है, बाकी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा।
1: कभी भी अपने को हम ये नहीं कहें कि क्या करें, ये तो नहीं जाता, यू नो, ये आदत तो चेंज नहीं होती, मैं कमजोर हूँ। परमात्मा हमेशा सिखाते हैं, इवन अगर आप 1,00,000 बार हार गए उस आदत से, नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल हैव टू गेट अप विद अ डिफरेंट थॉट। अगर अगले दिन ये थॉट से उठे, नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है, कितनी बार सोचा है, शायद ये आदत मेरी जल्दी चेंज नहीं होगी, चलो औरों में भी तो है, धीरे धीरे कभी न कभी मेरी भी हो जाएगी, इतना भी कौन सा नुकसान हो रहा है इस आदत से, ये वाली थॉट्स अगर क्रिएट की तो हमने अपनी ही विल पावर को कम कर दिया। इट्स लाइक पुटिंग अ डिलीट बटन इन द विल पावर।
0: यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग।
1: बिल्कुल,
0: ट्राई करना छोड़ दिया और बोले नहीं अब मेरे से अभी सुबह में क्या होना जी,
1: तो वो कंसिस्टेंसी खत्म हो गई फिर। वो जो हिम्मत, हिम्मत मीन्स हर रोज यही कहना, आज मैं इस संस्कार को फिनिश कर दूंगी।
0: 10 साल पहले सिस्टर मैंने ये लाइन बोली थी, अब यार इस उम्र में क्या करना, नहीं होता है, अभी ये उम्र में चेंज करना अपने आप को मुश्किल है, और आज इतनी चेंजेस आज की मैंने,
1: बिकॉज वी डिड नॉट गिव अप ऑन एट ना, हिम्मत।
0: हाँ, लेकिन बड़ा इजी था वो बोलना।
1: बोलना इजियर है क्योंकि वो बोलते ही फिर उसके बाद कुछ करना थोड़ी पड़ेगा,
0: और लिबर्टी है ना।
1: हाँ, जैसे
0: आपको लिबर्टी भी दे रहे हैं,
1: जैसे
0: कि दोबारा करो और कर लो,
1: तो वैसे ही रहेंगे। अब वैसे रहते रहते आत्मा की पावर धीरे धीरे तो घटेगी ना, द मोर आई यूज माई अक्वायर्ड संस्कार, आत्मा की पावर तो धीरे धीरे धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। और जैसे ही हमने कहा नहीं दिस इज गोइंग टू चेंज, ये संस्कार कंफर्टेबल नहीं है, इट हैज टू गो, और फिर हिम्मत से इसने कहा करेज, उस करेज से उसके साथ लगे रहे, जैसे किसी के साथ लड़ते हैं ना, तो लगे रहते हैं, गिव अप नहीं करते, लड़ते जाएंगे जब तक जीतेंगे नहीं। ऐसे ही अपने संस्कार के साथ हिम्मत से लड़ना, वी विल नॉट लूज, वी मे नॉट हैव रीच्ड कंप्लीट विक्ट्री, बट इफ वी गिव अप ऑन दैट संस्कार टुडे, वो हिम्मत अगर आज छोड़ दी कि नहीं होता, चलो ना धीरे धीरे कर लेंगे, ये एक एक वर्ड भी, ये एक एक थॉट भी आत्मा की कितनी शक्ति को वेस्ट कर देता है। हम बहुत इजीली कहते ट्राई कर लेंगे, चलो कल करते हैं, आज अभी। परमात्मा एक बहुत अच्छी लाइन हमें कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं।
0: इवन टू स्टार्ट मेडिटेशन,
1: यस,
0: मैं कितनी बार सोचा आज तो लेट नाइट हो गया था, मेहमान आए थे, फलानी जगह डिनर है, आज पार्टी है, कल सुबह तो लेट उठूंगा, कल मेडिटेशन नहीं, परसों से कर।
1: हाँ।
0: परसों बच्चे आ गए, रात को बच्चे नींद उठा दी, ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे साथ सो गए थे, बच्चे बाहर गए, परसों से करूंगा।
1: ऐसे करते करते इट्स लाइक जैसे हमें कोई और कोई कमिटमेंट देता है और फिर नहीं उसको पूरी करता।
0: वाह,
1: होता है ना ऐसे कुछ?
0: बहुत बुरा लगता है मुझे,
1: बुरा लगता है ना। अभी मैं आपको आज कहूँ मैं कल सुबह आपका ये काम कर दूंगी,
0: मेरा टेलर ये कुर्ता अगर बोले कल सुबह देता हूँ और दो दिन तक नहीं
1: दे, तो क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी उस व्यक्ति की? तो कहेंगे व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये सेम थिंग विद अस।
0: मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ ही, मैं तो अपने असलियत जानता हूँ ना।
1: क्रेडिबिलिटी नहीं हुई ना, आज अपने आप को कहा कल सुबह मैं उठूंगा या कल से मैं ये करूंगा, ये कहा, मतलब अपने आप को कमिट किया,
0: तो फिर मैं बोलूंगा मैं तो

0: ऐसे ही बोलते ही रहता हूँ करते तो करते
1: और जो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, ऐसे भी लोग मिलते हैं ना जो लोग बोलते रहते हैं हाँ हाँ कर देंगे, यस यस यस आई विल डू फॉर यू डोंट वरी, तो थोड़े दिन के बाद हम क्या कहते हैं इस व्यक्ति की तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं, इसकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हम अपने आप को रोज एक बात कमिट करेंगे कि कल से मैं ये करूंगा, फिर हम खुद अपने आप को कल दो बहाने भी बना देंगे उसके लिए कि नहीं आज तो ऐसा हुआ, फिर दो दिन बाद हम फिर कमिट करेंगे कि आज से तो पक्का करूंगा, फिर हम फिर कुछ कारण बना देंगे कहेंगे आज हम नहीं कर पाए क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ था। ये करते करते अपना अपने ऊपर विश्वास कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे फिर कहेंगे मेरे से नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, अदर पीपल मस्ट बी डूइंग इट नॉट फॉर मी। एंड अपने ऊपर पहले विश्वास खत्म हुआ, फिर अपने ही ऊपर गिव अप ही कर दिया और फिर अपने आप को अलाउ कर दिया उस कमजोर आदत या कमजोर संस्कार के साथ चलने में, और धीरे धीरे वो आदत संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, कुछ समय के बाद तो हम उसको छोड़ने का भी नहीं सोचेंगे, कहेंगे आई लिव विद दिस।
0: छोड़ने का मन नहीं है इसलिए हम ये कल परसों करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास करेज नहीं है,
1: हम हिम्मत नहीं, हम उस क्षण गिव अप कर देते हैं ना उस आदत।
0: गिव अप कहाँ किए है, अंदर से मन ही नहीं है।
1: अगर डीप विद इन मन ही नहीं है चेंज करने का, तब तो प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ अभी।
0: तो सिस्टर कई बार देखो अलार्म भी लगाते हैं अंदर से मन ही, चलो मैं ट्राई करूंगा ये करूंगा, फिर बंद कर देते हैं।
1: ट्राई जो शब्द है, ट्राई करूंगा, कोशिश, प्रोबेबली, मे बी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे आपने कहा मैंने टेलर को कहा कल सुबह ये कुर्ता देना, अगर वो आपको कहता ट्राई करूंगा, मे बी, शायद, देखता हो होता है या नहीं, और अगर आपको ये कल चाहिए,
0: मैं उसको नहीं दूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा,
1: द सिंपल है, मतलब विश्वास उस आत्मा के ऊपर, ट्रस्ट, फेथ नहीं बैठेगा इस वोकैबुलरी के साथ, लेकिन जो आपको कहेगा टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock ये आपके पास पहुंच जाएगा, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट डिटर्मिनेशन, वो हिम्मत है। जिसने वो थॉट भी नहीं क्रिएट की, फर्स्ट थॉट भी, तो आगे जर्नी में वो हिम्मत नहीं आएगी। इसीलिए आज कोई भी अपनी एक आदत उठाए, कोई अपना संस्कार उठाए जिससे बहुत बार हारे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पर उसके लिए विश्वास ही नहीं है कि ये हमसे छूटता भी है कि नहीं छूटता है, ये आदत मेरी छूटती है कि नहीं, ये नेचर मेरी जाएगी कि नहीं, और फिर अपने आप को अंडरस्टैंड कराएं, जहां इतनी सारी चीजें छूटी हैं, जहां इतने सारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, तो मैं आत्मा अगर ये वाले संस्कार पर वर्क करूं, तो ये भी चेंज होना ही है, चाहे कितना भी वो कड़क संस्कार है मेरे अंदर, चाहे कितना भी पुराना संस्कार है मेरे अंदर, मैं आत्मा अगर 4 काम कर सकती हूँ ऐसे वाले, तो 5वां भी कर सकती हूँ।
0: चलिए सपोजिंग मेरा 5वां एक और संस्कार है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं करना ही नहीं चाहता चेंज, सो
1: टिल वी हैव द डिजायर टू चेंज, आगे तो कोई जर्नी चल ही नहीं सकती, आगे तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर हम अपने आप को ऊपर ऊपर से ऐसे करते हैं, फिर किया कोशिश फिर नहीं हुआ, क्योंकि सूक्ष्म में अंदर अभी तक हमने अपने आप को समझाया नहीं है कि मुझे ये चेंज क्यों करना है, इसमें मेरा क्या फायदा है, तो फिर हम जल्दी से उसको छोड़ देंगे, फिर तो बहुत इजी है उसको छोड़ना। फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू बी 100% मोर देन 100% कन्विंस्ड कि ये संस्कार मुझे क्यों चेंज करना है, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, अभी का बेनिफिट, हेल्थ का बेनिफिट, लॉन्ग टर्म आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी उसका बेनिफिट। एक संस्कार जो कड़क होता है ना, उसको अगर हमने चेंज कर दिया, एक और बहुत पावरफुल संस्कार जो क्रिएट होता है वो है संस्कार ऑफ विल पावर, वो भी तो बढ़ गई ना, विल पावर भी तो घट रही है ना इसकी वजह से। सपोज जैसे आपने कहा मीठा नहीं खाना, फिर भी जब भी सामने आया तो खा लिया,
0: आज खा ले कल देखते हैं,
1: अब उसमें मीठा खाना जो मेरा नुकसान कर रहा है वो तो एक नुकसान है, लेकिन मेरी विल पावर जो घट रही है हर बार में कि मुझे करना कुछ और चाहिए और कर कुछ और रहे हैं, तो आत्मा की जो विल पावर घटती जाएगी वो फिर उसके

0: और कार्यों में जहाँ यूज होनी होती है वो यूज नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ वन संस्कार वन आदत। तो जो हमने पिछली बार भी देखा, निर्णय वो हो जिसमें आत्मा की शक्ति हमेशा बढ़े, घटे नहीं, घटे नहीं। इसीलिए आज की आपकी कोटेशन ये बहुत पावरफुल है कि करेज रख के कंसिस्टेंटली उस वैल्यू को यूज करना है, उस वर्च्यू को यूज करना है। इरेटिकली मतलब कभी कभी वो तो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कहते हैं ना चाहे प्राण भी जाए वचन नहीं जाए। वो प्रतिज्ञा का इतना बड़ा महत्व है, वो प्रतिज्ञा अपने आप से आज किसी एक संस्कार के लिए करते हैं और उसको सामना करके हमने उसको फिनिश करना ही है। जो आत्मा इतनी हिम्मत वाली, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, जो अपने संस्कारों का सामना कर सकेगी, तो उस आत्मा के लिए परिस्थिति का सामना करना, लोगों के संस्कारों का सामना करना बिकम वेरी वेरी सिंपल।
1: कई बार मैं चुप रहना चाहता हूँ, नहीं रह सकता, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सारे, तो मतलब उचित शक्ति आ जाएगी कि नहीं बोलना है यहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: इट विल कम वेरी नेचुरल,
1: इवन इफ आई एम राइट एंड द अदर पर्सन सेज कि आई एम रॉन्ग, वहाँ भी आदमी को हंस के मुस्कुरा के आदमी चुप रह के निकल जाता है और ध्यान भी नहीं होता है। ये चीज, ये क्वालिटीज धीरे धीरे इतनी बढ़ती है इनसे आप जो कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी
0: नहीं, दैट्स ओके, डोंट एक्सपेक्ट कि सडनली वी आर लाइक दिस। एज लॉन्ग एज वी आर ऑन द राइट पाथ
1: एंड वी आर अवेयर,
0: जब भी हम थोड़े भी अनकम्फर्टेबल होते हैं, हम उसके अवेयरनेस में आकर उसको जस्टिफाई नहीं करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें कि मुझे इस समय क्या चेंज करना था, चाहे आसपास कुछ भी सिचुएशन या लोग थे, तब हम राइट रास्ते पे चल रहे हैं। देन वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, वी आर ऑन द प्रोसेस की आत्मा चार्ज ही होती जाएगी, डिस्चार्ज नहीं हो सकती।
1: सेम चीज तो हम गोल्फ में करते हैं, गेम में जब भी आदमी की स्विंग के अंदर डिफेक्ट आता है, कभी कभी चलते चलते वो पुराना कुछ जैसे संस्कार की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं ही इज नॉट इन टच, इज आउट ऑफ फॉर्म, तो फॉर्म में वापस आने के लिए जीरो से शुरू करते हैं, फिर बॉल मारे 50, फिर 50 और फिर 100, 300 बॉल खड़े रह के एक ही चीज के साथ, उसके ऊपर मेहनत कर के अगेन यू आर इन फॉर्म।
0: इसका मतलब कोई भी चीज पर अटेंशन रखी, प्रैक्टिस किया,
1: 20-20 साल गोल्फ खेलते लोग 30-30 के बाद भी वापस फॉर्म से हट जाते हैं, स्विंग थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, फिर ठीक कराते।
0: सिंपल है, एंड विच मीन्स अनेक जन्म भी अगर हम आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, थोड़ा सा अटेंशन,
1: फिर टीचर के पास भी जाते, आज भी 30-30 साल हो गए लोगों को खेलते हुए, फिर पहुंच जाते सर आई हैव दिस प्रॉब्लम।
0: अब इस केस में क्या है, पहले वो उनके फॉर्म था राइट, फिर थोड़े पीरियड के लिए सडनली बीच में आउट ऑफ फॉर्म चले गए, थोड़ा सा अटेंशन अवेयरनेस पुरुषार्थ किया, वापस इन फॉर्म आ गए। आत्मा भी ओरिजिनली उसका फॉर्म क्या था, ओरिजिनली वो ये थी, फिर बीच में थोड़े पीरियड के लिए आउट ऑफ फॉर्म चली गई, जैसे ही उस टीचर से कनेक्ट होगी,
1: वाओ
0: है ना, वापस वो ज्ञान और पावर को लेगी। और परमात्मा तो सबसे पहला ज्ञान यही हमें देते हैं, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है, कम ऑन, वी आर गोइंग टू गो बैक टूवर्ड्स इट। आत्मा वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी।
1: योर लव, योर पीस, योर करेज,
0: योर फॉर्म,
1: योर ब्लेस,
0: दैट्स द ओरिजिनल क्वालिटी। कोई नई चीज नहीं हम कर रहे, हम एक नया प्लेयर नहीं है जो आके गोल्फ सीखने वाला है। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। हम वो प्लेयर हैं जो फॉर्म में थे, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, आप इस फॉर्म में आ जाएंगे।
1: वंडरफुल,
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: करेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू। विदाउट करेज वी कैनॉट प्रैक्टिस एनी अदर वर्च्यू consistently. We can practice any virtue erratically, but not consistently without courage. We have to discern when to use the power to adjust and when to use the power to face or confront. When it comes to difference of opinions and ways of working, we need to adjust with others, not confront them.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडियो पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
4: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ. आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे. तो आज हम चर्चा करते हैं आज के युग के अनुसार क्या है. तनाव एक बहुत ही बड़ी समस्या है, तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं. तनाव रहित जीवन. तनाव रहित जीवन कैसा होता है? आज के युग में जो है तनाव एक बहुत ही बड़ी समस्या है. आज का युग जो है तनाव का युग ही बनकर रह गया है. तनाव का कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु इस समस्या का हल हमें निकालना ही होगा, नहीं तो यह जो है तनाव विश्व में अशांति तो लाएगा ही, साथ में क्या होता है विश्व के विनाश का कारण ही बन सकता है. यदि हम व्यक्तिगत रूप में भी तथा सामूहिक रूप में भी सुख व शांति में जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें समस्या का हल निकालना ही होगा. इस समस्या को हल करना ही होगा, यानी कि तनाव क्या है इसे भी हमें समझना है. हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति होती है जो कि रोगों से हमारी रक्षा करती है. जब भी बाहर से कोई संक्रमण होता है तो क्या होता है, हमारी यह शक्ति रोगों से हमें बचाती है.

है, लेकिन यदि बाहरी संक्रमण ज्यादा शक्तिशाली है और हमारी क्षमता कम है तो हमें क्या होता है, बीमारी लग जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर एक मानसिक शक्ति भी है जो कि जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रतिकूल जो होता है, परिस्थितियों के प्रतिकूल और उलझनों, जो उलझन होते हैं, उलझनों का भी सामना करती है। यदि ये सब हमारी आंतरिक शक्ति से ज्यादा अगर शक्तिशाली हो जाए तो तनाव की शक्ति जो है वो तनाव की स्थिति से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है और इसे ही हम चिंता, शोक, फिक्र आदि भी कह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को अगर आमदनी क्या होता है, उसका आमदनी अगर आप देखो 10,000 है और उसकी आवश्यकता 15,000 की है, या किसी अन्य कारण से जैसे बीमारी आदि से अचानक खर्चा ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है, कुछ सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी हद तक सहन शक्ति होती है, उसका शिक्षा का स्तर जो होता है या शारीरिक जो शक्ति होती है वो बौद्धिक शक्ति किसी हद तक ही होती है। यदि किसी कारण वश चाहे परिवार में संबंधों की कटुता या ऑफिस में सहकर्मियों के कारण या किसी अन्य प्रकार में परिस्थितियां हमारी सहन शक्ति से बाहर हो जाए तो ये क्या होता है, वो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है तनाव रहित जीवन। एक होता है तनाव का निवारण भी हमें करना आना चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए हमें या तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, या तो उसे हम बढ़ाएं या बाहरी दबाव को कम करें, जैसे कि हम अपने खर्चे को कम करके या आमदनी के अन्य साधन अपनाकर अपने बजट को ठीक कर लें। इसी प्रकार हम अपनी जो है सहन शक्ति बढ़ाकर साक्षी दृष्टा होकर या ज्ञान योग की पराकाष्ठा से स्वयं को संतुलित कर ले, फिर तो तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। यदि परिस्थितियां लगातार चलती रहे और हम तनाव पे ही रहें, जैसे आपसी कलह, क्लेश, बिजनेस में घाटा, दफ्तर में बॉस से अनबन, इच्छाओं की पूर्ति न होना या लंबी बीमारी आदि, तो हमारे दिल व दिमाग पर भी तनाव प्रभाव डालने लग जाता है। फिर क्या होता है, डिप्रेशन के चिन्ह जैसे उदासी आना, किसी भी कार्य में मन न लगना आदि, ऐसा मतलब पैदा होने लगते हैं। और हमें तनाव को दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक होता है तनाव के प्रति अपना जो होता है दृष्टिकोण, हमें बदलना चाहिए। इसके प्रति हम कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, किसी भी समस्या या परिस्थिति का भारीपन या हल्कापन, हल्कापन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से लेते हैं। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदल ले और यह समझ ले कि यह समस्या हमारे कल्याण के लिए है, इससे हमें कुछ शिक्षा ही मिलेगी या यह परिस्थिति हमारी कमी को निकालने के लिए आई है, तो यह हमें तनाव न होकर एक खेल ही नजर आएगा। एक यहाँ पे ये भी होता है, असफलता को कभी कभी सफलता न मिलने पे भी इंसान उदास हो जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, असफलता को स्वीकार हमें ना करना चाहिए, इसे भी हम स्वीकार ना करें। मान लीजिए कि आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पे में चलते चलते क्या होता है, आपका पांव फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या आप चलना छोड़ देंगे या उठकर अपने कपड़े झाड़ेंगे या फिर से चलना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार जीवन

में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप असफलता को स्वीकार करके हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकेंगे। अतः असफलता को न स्वीकार करके बल्कि और ही हिम्मत से आगे बढ़ने का ही सोचना, जैसे हर ताले की चाबी होती है वैसे हर समस्या का भी हल अवश्य होता है। मेहनत करते रहने पर कभी कभी हल मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए देखते हैं कि तनाव मुक्त जीवन हमें कैसे जीना है। हमारा आज का विषय है तनाव रहित जीवन। तो तनाव ग्रस्त विश्व, अभी विश्व को कैसा बनाना है? हाँ, अभी तो विश्व जो है वो तनाव ग्रस्त है। और एक होता है जीवन, एक क्या है, प्रयोगशाला है। प्रयोग करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, फिर जो प्रक्रिया करनी होती है हाँ वह की जाती है। इसके बाद जो नया केमिकल बनता है वह नई खोज के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीवन में समय जो है हमारी टेस्ट ट्यूब है। इसमें आप अपनी समस्या को डाल दीजिए, फिर समस्या का हल निकालने के लिए विचार सागर मंथन कीजिए। कुछ दिनों बाद समस्या का हल मिल जाएगा, वही हमारा अनुभव होगा और हम अपने अनुभव से दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकेंगे। यहाँ पे ये भी होता है कि समस्याओं को स्वीकार कर उनसे समझौता करें। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, समझौता भी करनी आनी चाहिए। कई बार समस्याओं का कोई हल नहीं होता, जैसे लंबी बीमारी, अंगहीनता, या परिवार में किसी भी सदस्य का व्यवहार, या ऑफिस में किसी भी हाँ व्यक्ति का व्यवहार आदि। ऐसी बातों को हम क्या करते हैं, हमें स्वीकार करना पड़ता है और उन्हें साथ लेकर चलना ही होता है। जैसे यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो आपके जो पास अपनी जो अटैची होती है, चाहे वो कितनी भी भारी हो, आप उसे उठाएंगे ही। ऐसे ही आप उन समस्याओं का ही जीवन भी हाँ उन समस्याओं को जीवन रूपी यात्रा की अटैची समझ लीजिए और यात्रा पर चलते रहिए। विश्व में भी बहुत तरह की समस्या है, हाँ तनाव ग्रस्त है हमारा विश्व। तो विश्व में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं तनाव ग्रस्त नहीं होते, परंतु उनके कारण जो है सारा विश्व तनाव में आ जाता है। जैसे हिटलर के मन में आया कि वह विश्व विजेता बने, इससे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए। वास्तव में यह भी एक तनाव ही है। आज भी विश्व के जो हालात बने हुए हैं वह भी एक प्रकार का तनाव ही है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और स्वयं को विश्व का सुपर पावर बनाना चाहता है, इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। इस पर कितना खर्च हो रहा है, यदि यह लोग भी अगर आध्यात्मिक परायण हो जाए और विश्व बंधुत्व की भावना इनके अंदर आ जाए तो विश्व विनाश से, जो विनाश हो रहा है उससे बच सकता है। आध्यात्मिकता तो कहती है मन जीते जगत जीत। वे लोग

तन जीते जगत जीत का ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि वे लोग भी विश्व पर जीत पाने की बजाय स्वयं पर जीत पाने का प्रयत्न करें और लोगों के दिलों में लोगों के जो है दिलों को जीत कर विश्व विजेता बनने की कोशिश करें, तो विश्व में जो है तनाव भी समाप्त होगा और विश्व विनाश जो हो रहा है विनाश से भी बच जाएगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और आइए सुनते हैं तब तक के लिए इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज हम हमारा विषय है तनाव रहित जीवन, योग और तनाव। एक होता है योग और तनाव। तनाव अर्थात तन प्लस आओ, तनाव। तन में आना ही तनाव होता है। आज के मानव की जो सुख शांति आनंद का आधार भौतिक प्राप्तियां ही है, इन प्राप्तियों के होते हुए भी आत्मा की जो संतुष्टता न होने के कारण आत्मा में अभाव का अभाव सा महसूस होता है और कुछ और चाहिए ऐसी महसूस होती रहती है। जब योग के द्वारा हमें आध्यात्मिक प्राप्ति होती है तो वह जो है अभाव समाप्त हो जाता है। फिर हमें सांसारिक पदार्थ जो है तुच्छ नजर आने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिलने के बाद हीरे भी पत्थर लगने लगे। योगाभ्यास करते योगा जो अभ्यास था वो करते करते हम क्या करते हैं, आत्म स्वरूप स्थिति को पाते जाते हैं और ईश्वरीय आनंद से भरपूर हो जाते हैं। फिर सांसारिक इच्छाएं जो होती है तमन्नाएं समाप्त हो जाती है। हमारा जो जीवन है आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। ऐसी अवस्था में तनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अतः हमें सदा तनाव मुक्त रहकर हर बात को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर सुख शांति से जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो यह जो अनमोल मानव जीवन, इसमें भी संगम योग का ब्राह्मण जीवन व्यर्थ नहीं चला जाएगा। मन के विचारों को लेकर शोध होना चाहिए। कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद है, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आज हम जो भी कुछ हैं अपने विचारों की देन है। अतः अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अभी का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मन की जो समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। मानसिक रूप से लोग जो है अव्यवस्थित है, जिसके कारण कई शारीरिक और मानसिक रोग भी लग जाते हैं। राजयोग जो होता है, एक राजयोग की एक विधि होती है, मन को व्यवस्थित करने में हमारी बहुत मदद करता है। राजयोग के अभ्यास से हम जो है अंतर्मुखी बनते हैं। योग का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है। अंतर्मुखी का अर्थ है अपनी भीतर की और अंदर की जो भी कमी कमजोरी है, अपनी भीतर की ओर मुड़ना और अपने अंदर हो रही जो एक्टिविटी है उसकी जांच करना। मन बुद्धि संस्कारों में क्या चल रहा है उसके रूप को समझना, उसके ऊपर नजर रखना। राजयोग के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि हम हमारे जीवन में हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ही धीमी गति से व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, लेकिन जब विचार निगेटिव होते हैं तो बहुत तीव्र गति से अव्यवस्थित तरीके से चलते हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम

ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

01024 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज के इस सफर को बनाने के लिए यादगार मैं आपके साथ यानी आपका हम सफर सनी जी हाँ साथियों, आप सभी से रूबरू होते मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों का जो प्यार है, जो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिख के भेजते हैं और पुनेरी आवाज के नंबर पर आप जब मैसेज करके नाम के साथ भेजते हैं अपना प्यार, तो हमारी जो है खुशी दुगनी हो जाती है 7219190051। तो आइए आज के इस सफर को हम लोग बनाएंगे यादगार आपके साथ में। कई बार हम लोग जो है कुछ चीजों को देखकर एक खुशी होती है और कुछ शब्दों को सुनकर, तो आइए कुछ ऐसे खूबसूरत जो है शब्दों का प्रयोग मैं आपके लिए करना चाहूंगा। जैसे कि नेकी का लिबास, कहते हैं तेरी नेकी का लिबास ही तेरे बदन को ढकेगा ऐ बंदे। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती, ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत लाइन हमारे दोस्तों ने लिख के भेजा है, नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं नाम नहीं बता पा रहा, लेकिन बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतना प्यारा मैसेज लिख के भेजने के लिए। और कहते हैं समय रहते अगर बुरी आदत न बदली जाए, वो बुरी आदत समय को ही बदल देती है। इसीलिए हम सभी को अपने आदतों पर अटेंशन देना जरूरी है, चाहे वो हमारे स्वभाव एक्शन से या फिर हमारे संकल्प से या फिर हमारी अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ी हुई हो। किसी भी तरह का बुरी आदत हो तो हमें उसे जल्दी से जल्दी बदल देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए कभी भी मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकता है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आज के इस खाबो इस सफर में मैं कुछ चुनिंदा गाने आपको सुनाने वाला हूँ, एन अक्षर वाले। बहुत कम गाने मेरे पास बचे हुए हैं क्योंकि हमने पूरे सीरीज में एन अक्षर वाले काफी गाने आपको 60s एंड 50s के सुनाए हैं। तो अब मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा, एक फिल्म थी जिसका नाम है जुआरी। जी हाँ, ये 1968 में फिल्म आई थी और इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये 1968 में फिल्म आई और इस फिल्म के कलाकार थे शशि कपूर, तनुजा, नंदा और मदनपुर, और जूरी इस फिल्म के डायरेक्टर थे सूरज प्रकाश जी, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसमें कहानी ऐसा है कि एक युवा लड़का जो है किसी लड़की के प्यार में, और फिर वहां से एक गैम्बलिंग शुरू हो जाती है, फ्रॉड शुरू हो जाता है और फिर वो जुआ खेलने लगता है, जिसकी वजह से सारी क्लाइमेक्स या फिर जुआरियों का एक ग्रुप उसके साथ जुड़ जाता है, जो एक ग्रुप होता है, और वो इस हीरो को भी अपने

इतने लेंगे। तो इस तरह से कुछ थोड़ी सी कहानी मुझे जितनी याद है मैंने ऊपर की कहानी आपको बता दी, बाकी जब फिल्म आप देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ आ ही जाएगा। और शशि कपूर, तनुजा और नंदा का बहुत ही खूबसूरत रोल है और मदन पुरी साहब इसमें विलन का रोल कर रहे हैं। तो चलिए इस फिल्म का एक गीत जो मुझे पसंद आता है वो भी एन अक्षर वाला, तो वो गाना है ये।

जी हाँ, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। तो आइए आनंद बख्शी साहब के खूबसूरत कलम से लिखा हुआ ये गीत मुबारक बेगम का और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए फिल्म जुआरी 1968 का। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना ज्वारी इस एल्बम का, नींद न उड़ जाए तेरी वो चैन से सोने वाले। तो चलिए, आप एक और खूबसूरत गाने की तरफ मैं आपको ले चलूंगा, जैसे कि ये

निगाहें क्यों भटकती हैं, कदम क्यों डगमगाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, मजरू सुल्तानपुर साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत ही खूबसूरत संगीत है। और ये फिल्म आई थी 1968 में ही, जिसका नाम था बहारों की मंज। अब ये जो फिल्म है ये बहुत ही पॉपुलर रही उस समय, और इसमें जो फिल्म के अंदर काम करने वाले कलाकार थे जैसे कि धर्मेंद्र, मीना कुमारी, रहमान और फरीदा जवाब। इस फिल्म की कहानी थोड़ी सी बहुत डिफरेंट थी, जिसे सुनकर आप भी थोड़ा सा समझ जाएंगे। अगर देखी होगी तो बात अलग है, अगर नहीं देखी होगी तो जरूर देखने की जिज्ञासा आपके अंदर आ सकती है। जैसे कि एक महिला को बताया गया है, उसकी दुर्घटना हो जाती है, घायल हो जाती है, और उसके बाद अपने पति और बेटे से संबंधित यादों को बिल्कुल भूल जाती है। और फिर वो भूलना, यहाँ तक तो ठीक है, कहानी मेरे भी समझ में आ जाती है, आपके भी समझ में आ जाती है। कभी कभी चोट लगती है दिमाग पे तो व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए अपनी यादें भूल जाता है। लेकिन यहाँ फिर उसके बाद और भी क्लाइमेक्स ये है कि वो महिला जो है, जिसकी यादें भूल जाती है, वो अपने बेटे और पति को, और वो ये दावा करती है एक महिला की कि मैं वो महिला जो 16 साल पहले मर चुकी है, और वो कहती है कि मैं वो हूँ। अब यहाँ पर पूरे जो कलाकार बाकी जो रहते हैं वो चौंक जाते हैं इन सारी चीजों को देखकर। तो याकूब हसन रिजवी साहब ने इस फिल्म का डायरेक्शन दिया था, और इसके निर्माता थे हसन रिजवी साहब, और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चलिए अब कहानी को मैं और ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझ ही गए होंगे कि कहानी किस तरह की है। और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था, तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गाना है और मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहते हैं, चांदनी लहरों को तूफान बना देती है, मौत जिंदा इंसान को बेजान बना देती है, रास्ते के पत्थर को पत्थर मत समझना, क्योंकि इंसान की श्रद्धा उसे भगवान बना देती है। आइए आगे बढ़ते हुए बहारों की मंजिल, इस खूबसूरत फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आपके नाम। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: तपश और बढ़ गई इन चंद बूंदों के बाद। काले साए बादल, काले चाय बादल ने भी बस यूं ही बहलाया मुझे। काले साए बादल ने भी बस यूं ही बहलाया मुझे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज। ख्वाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

और कहते हैं सप्तरंगी अरमानों वाले सपने दिन में पलते हैं, आशा और निराशा की धुन में रोज मचलते हैं, बरस बरस के सावन सोचो प्यास मिटाई दुनिया की, वो क्या जाने दीवाने तो सावन में ही जलते हैं, सावन में ही जलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। ये गीत है ये

राह मिला मेरे को जी चाहता है। वाह क्या खूबसूरत गाना है। दिन ही तो है इस एल्बम का, जिसमें राज कपूर साहब, नूतन प्राण और आगा साहब ने काम किया है। तो इनके ये बहुत ही खूबसूरत गाना है दिल ही तो है, 1963 का ये फिल्म है, जिसे पीएन संतोषी साहब ने डायरेक्ट किया था। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इस गीत की तरफ, जिसे साहिल जैनी साहब ने लिखा है, आशा भोसले ने गाया है, रोशन साहब का खूबसूरत संगीत दिल ही तो है। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अभी, और दिन ही तो है 1963 का, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उस समय बहुत पॉपुलर था, आज भी वो गाना सुनकर कहीं न कहीं आपकी यादें ताजा हो गई होगी और बहुत ही एक अच्छा फील आप कर पा रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। उसके पहले ये चंद लाइनें मौसम पर किसी ने भेजा है, नाम नहीं लिखा है, सब मैं कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नाम जरूर लिख के भेजिए। बादलों ने बहुत बारिश बरसाई, तेरी याद आई पर तू न आई, सर्द रातों में उठ उठ कर हमने तुझे आवाज लगाई, तेरी याद आई पर तू न आई, भीगी भीगी हवाओं में तेरी खुशबू है समाई, तेरी याद आई पर तू न आई, बीत गया बारिश का मौसम बस रह गई तन्हाई, तेरी याद आई पर तू न आई। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लाइनें मेरे एक हमसफर साथी ने लिख भेजा है जो मैंने आपको अभी सुना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको, बहुत ही प्यारे खूबसूरत लाइनें आपने लिख के भेजी हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और फिल्म का बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाने वाला हूँ। और ये फिल्म थी बहू बेगम, मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, जॉनी वॉकर पर पिक्चर आई

किया गया था ये फिल्म, और ये 1967 की फिल्म थी, जिसमें कहानी इस तरह की थी कि जीनत नाम की एक लड़की और जीनत के चाचा उसकी शादी नवाब सिकंदर मिर्जा के साथ तय करते, लेकिन उसे लगता है कि उसकी शादी उसके प्रेमी यूसुफ के साथ हो रही है, और सच का जब पता चलता है जीनत को यूसुफ से मिलने के लिए अपनी शादी से भाग जाती है। तो ये थोड़ा सा जो क्लाइमैक्स है प्रेम कहानी और शादी, ये दोनों चीजों को जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और इसके निर्माता है जान निसार अख्तर साहब और एम सदीक जी ने इसे डायरेक्ट किया था। साहिल रिजवी साहब ने इसमें संगीत दिया था और गीत लिखे थे। इसकी जो कहानी जो लिखी थी वो जान निसार अख्तर और सदीक दोनों ने मिलकर इस कहानी को लिखा था। तो बहु बेगम का एक खूबसूरत गाना है जैसे कि ये

यहाँ निकले थे कहाँ जाने के लिए और पहुंच गए कहाँ। तो आइए ये खूबसूरत गाना अभी आपको मैं सुनाता हूँ, साहिल वितानवी साहब का, आशा भोसले का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सदा बहु बेगम इस एल्बम का, अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनील आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। तो आइए, आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ खास बातें तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ कुछ खास गीतों के साथ कुछ चंद शायरियां और कुछ गजलें भी आपको सुना रहे हैं। निकल पड़ी आंसू जब जब तुमसे मिलने की उम्मीद नजर आई, तब तब मेरे पैरों में जंजीर नजर आई। निकल पड़े इन आंखों से हजारों आंसू, हर आंसू पे, हर आंसू में आपकी तस्वीर नजर आई। जी हाँ साथियों, आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गजल की तरफ। और ये पंकज उल्लास साहब का बहुत ही रोमांटिक गजल है, शायद आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो अभी जरूर हम लोग आपको सुनाएंगे ही, जैसे कि ये।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर पहुंचे हैं और इसके बाद बैक टू बैक मैं दो गजलें आपको सुनाने वाला हूं। एक गजल ये है,

0: नगमा जनाब सुदर्शन
1: फाक्सी। जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता,

सोचो, जरा सोच के देखो, खेत में उगते टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, वेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सावित्री जी, आपके पतिदेव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
3: आइए। ये क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
4: सुनिए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर।
5: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है, मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
6: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
5: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
3: नमस्ते।
5: मेरा छोटा भाई
3: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
6: वैसे लोग मुझे मनोहर गाय भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
5: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
6: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
3: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा चंपा से मिलकर आती हूँ।
5: आप बैठिए ना।
6: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
5: हाँ साहब, आप होते तो शादी का मजा ही और होता।
6: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खा नहीं रहे?
5: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खासकर बहुत बढ़िया।
6: एक और खाइए।
5: अजी नहीं साहब।
6: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

0: क्या कर रहे हो?
1: सर, प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो सभी तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म। पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ,

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है।

0: नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बेड उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आपको ओरिजिनल प्लान था कि लता के साथ डुएट होगा, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी या कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट के द्वारा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूं फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है, नहीं आपको मैं गाके सुनाता हूँ आप सुनिए। एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इन टू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप बैक टू

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोतेजू, आपण आपल्या आजच्या शो मधला पुढच्या एका सुंदर कवितेकडे वळूया, ज्यामध्ये सौ जयश्री अर्जुन मुंडे मॅडम लिहित आहेत अंबाजोगाई येथून। सौ जयश्री अर्जुन मुंडे मॅडम यांनी अंबाजोगाई येथून लिहिलंय की विश्वासघात

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: ते हुए गिर जाओ तो उठो और फिर चलो। सारे जमाने का दामन झुक जाए पर उम्मीदों का दामन झुकने न दो। चाहे आसमान का सूरज झुक जाए पर मन का सूरज बुझने न दो। कठिनाइयों का सामना करने से ही हमारे अंदर अनुभव आते हैं और ऐसे अनुभवी को ही रवि से ज्यादा माना गया है। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक होनहार अनुभवी बैठे हुए हैं जिन्होंने न केवल अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है लेकिन देश में एक ऐसे वर्ग का नाम रोशन किया है जिस वर्ग के बारे में शायद मैं और आप दोस्तों बहुत कम सोचते हैं। वो वर्ग है हमारे प्यारे किसानों का, हमारे अन्नदाता किसानों का। आज हमारा सौभाग्य है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हमारे देश के यशस्वी, भारत के यशस्वी किसान जेनाराम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जेनाराम जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है।
1: हमारे इस कार्यक्रम का नाम है यशस्वी भारत और ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि गेनाराम भाई पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। गेना भाई जी नमस्ते।
2: नमस्ते। ओम शांति।
1: ओम शांति। कैसा महसूस कर

0: आज आप हमारे साथ रहते हुए।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज ब्रह्मा कुमार ओम शांति में बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो मधुबन में हमारे जितने भी श्रोता हैं, ये सब बहुत दिल से आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनके सामने एक ऐसा अनोखा उदाहरण रेडियो मधुबन लेकर के आया है, जहाँ पर कई कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी उमंग उत्साह के पंख से एक पंछी ने ऐसी उड़ान भरी कि हर एक की नजर उस पे थी। तो ऐसे विशिष्ट अतिथि हमारे गेना जी, आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, मेरी उत्सुकता है कि गेना राम इस शब्द का मतलब क्या होता है?
1: ये हमारे यहाँ पे ऐसे तो मैं भी मारवाड़ प्रांत से हूँ, मेरे बुजुर्ग जो लोग है वो मारवाड़ से आए हुए है यहाँ पे गुजरात में, लेकिन ये ऐसी जो अपने समाज में नाम दिए जाते हैं तो ऐसे ही नाम मेरे पिताजी ने भी मेरा नाम रख दिया है।
0: और उस नाम को आपने फलीभूत किया है, आपने अपने को इतना ऊंचा उठाया है कि उस नाम को भी आपने चरितार्थ किया है, तो आपके पिता को भी आपके परिवार को भी आपके ऊपर नाज होता होगा।
1: बिल्कुल है सर।
0: तो मुझे चीज आपसे जो सबसे पहले ये जाननी थी कि जीवन जब सामने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी एक परीक्षा देता है, तो उस परीक्षा को संभालना, उसको उत्तीर्ण करना, उसमें उसके लिए उसमें शक्ति भी भरता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उस शक्ति को पहचान नहीं पाता और उस परीक्षा में वो फेल हो जाता है। आपने बहुत छोटी आयु में ही आपके सामने जीवन ने एक बहुत बड़ी परीक्षा रख दी, वो परीक्षा पोलियो से आई, जिसकी वजह से आप शारीरिक तौर पर विकलांग हुए। ये छोटे बच्चे के लिए भी ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, तो उस बचपन में इतनी कम आयु में आपने क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम था आपका, क्या ऐसा आपका आधार था कि आपने इतनी छोटी सी आयु में भी उस परीक्षा को पास किया?
1: ये मैं बिल्कुल वो कुछ करने लायक नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से ही जो मेरे पिताजी एक गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उनको मिलने के लिए लोग हर रोज लोग आते थे, तो एक मैं रोजिंदा सुनता रहता था कि कोई आता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसको आवकार देना चाहिए। तो मैं वो बचपन से ही एक पॉजिटिव थिंकिंग आप बोलते हैं वैसे ही पॉजिटिव ही रहता था कि कोई अपने यहाँ पे मेहमान आते हैं तो उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए, और वो मेहमान आते थे उनकी बातें मैं सुनता रहता था। कोई ऐसे लोग बहुत बड़ी बातें करते थे, ये बच्चा अपंग है लेकिन ये किस्मतवान है, ऐसा ऐसा है, तो उसी टाइम से मेरे अंदर जो जो जो हौसला रहता है वो उस टाइम से बुलंद हो गया था कि मैं दिव्यांग होते हुए भी मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं छोटा था तो जो लोग बड़े करते थे वो ऐसे ही काम करने के लिए मेरा हौसला रहता था रोज का। मेरे बड़े भाई ट्रैक्टर चलाते थे तो मैं सोचता था कि मैं ट्रैक्टर नहीं चला पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसके पीछे काम करने के लिए मन काम करने का बहुत अंदाजा अलग रहता था। और मैं एक आपको एग्जांपल मैं दूं तो मेरे यहाँ पे मेरे गांव में कोई नीम के पौधे है बड़े बड़े, मेरे साथ में जो पढ़ाई करते थे वो सब बच्चे चढ़ जाते थे, तो मैं सोचता था मैं इस पौधे पे नहीं चढ़ पाऊंगा क्या, और मैं चढ़ पाया, एक दो बार गिर गया फिर भी चढ़ पाया। उसमें से मुझे एक ऐसा पॉजिटिव सब विचार मिल गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो लोग आम लोग कर सकते वो मैं भी कर सकता हूँ।
0: इसका मतलब प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, उस मकड़ी की तरह बार बार अपने जाले में चढ़ने प्रयास करते थे, 21वीं बार में वो चढ़ी, तो इसका मतलब
1: बिल्कुल है।
0: भले सामने वाले व्यक्ति जो है, जो दूसरे लोग हैं, उसको एक बार में कर लेंगे, मेरे खेत हो सकता है वो दो बार तीन बार की मेहनत से होगा, लेकिन होगा जरूर, हिम्मत नहीं छोड़नी,
1: बिल्कुल है नहीं छोड़नी चाहिए, सही बात है।
0: तो जब मैंने आपकी जीवन कथा को सुना समझा और उसमें ये पाया कि आपको पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा से बहुत प्रेम था, आपकी दिव्यांगता को भी आपने उसके आड़े नहीं आने दिया, और अपने पढ़ाई करने के लिए कितने गांवों को आपने चेंज किया, पहले कक्षा चौथी कहीं पर, पहले तो स्कूल नहीं था, आपके पिता के लिए आपके कलेक्टर जी ने वहाँ पर स्कूल खोला, फिर वो स्कूल से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा में ऐसा क्या आपको महसूस हुआ जिसने आपको अंदर से ये प्रेरणा दी कि शिक्षा का साथ नहीं छोड़ना?
1: ये शिक्षा में मुझे ऐसा लगा, मैं गांव में पढ़ता था तब मेरे गुरुजी बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और उसके बाद में जब मैं सिटी, हमारी तो ओडिशा सिटी है, हमारे गांव से

0: 35 किलोमीटर पे 35 किलोमीटर पे, तो वहीं पे मैं पढ़ने गया। वहां पे पूरा ही जो सिस्टम था, बाजार का सिस्टम था, वो गांव और बाजार में बहुत अंतर रहता है। लेकिन वहां जाने के बाद में बड़ी स्कूल में गया, वहां पे जो हमारा ग्रंथालय पुस्तकालय बोलते हुए उसमें मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला और वहां मैंने अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी। उसमें स्वामी जी की विवेक पुस्तक बहुत अच्छा और उन आधार में उनका पुस्तक हुआ। जब मैंने पढ़ाई किया उसके बाद बहुत मेरा वसूल है, सभी में मैं नंबर वन आ सकता हूँ।
1: तो गेना भाई जी, रास्ते में जब थोड़ी छोटी बड़ी रुकावटें आती हैं, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, कई बार गरीबी, कई बार जैसे आपके केस में भी था कि दिव्यांगता थी, लेकिन फिर भी आपने उसको क्रॉस किया क्योंकि आपने शिक्षा का जो महत्व है उसको समझा था, आपके माता पिता ने समझा था। तो आज के समय में जो बच्चे या जो परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते से किसी भी कारण से उनको आगे बढ़ने नहीं दे पाते या नहीं देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का महत्व क्या है उन आज?
0: मैं ऐसा मानता हूँ कि निर्बल मन के मानवी को रास्ता मिलता नहीं, अड़ग मन के मानवी को हिमालय नरता नहीं। जो माता पिता को ऐसे बच्चे हैं, उनको मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके ऊपर भगवान को विश्वास है कि ये लोग ये दिव्यांग बच्चे को अच्छी तरह से और उसके रख रखाव कर सकेंगे, उसी के घर में ही ये दिव्यांग बच्चा भगवान देते, सभी को नहीं देते। और ये दिव्यांग होते हुए भी इसका किस्मत लेके जन्म लेता है और उसको थोड़ा कम देता है, उसके पीछे बहुत भगवान उसके रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा। मेरे पिताजी की मान लो कि उनको ऐसा बच्चा दे दिया, लेकिन उनके पीछे मुझे बहुत अच्छा भगवान ने सब कुछ दे दिया। तो मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि जिस माता पिता के घर में ऐसा कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा आ गया है तो उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पालना चाहिए और उसको बड़ा करना चाहिए, उसको पूरी पूरी उसके अंदर बहुत अच्छी प्रेरणा देना चाहिए। उसकी वजह से वो बच्चा उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरे में कुछ कमी है, वो अच्छी तरह से बहुत अच्छा, उसी का जो कोई शरीर कम है तो एक ज्यादा उसका मगज ज्यादा चलेगा। तो सभी बच्चों को भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप हिम्मत हारे बिना अपने को बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहिए और किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। और भगवान ने हजार लोगों में से, हजार दो हजार लोगों से एक दिव्यांग बच्चा दिया है तो वो सभी हजारों से अलग बनाया है, तो कुछ हम अलग कर सकते हैं, ऐसी सोच अपने को रखनी चाहिए।
1: मतलब अपनी विशेषता, अपना महत्व हमारी सोच में है। जब सोच की बात आती है तो मुझे यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना है कि साधारणतः किसी भी परिवार में जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनको आता है कि भाई ये कमाई करे और ये किसी प्रकार से स्वावलंबी हो जाए। ऐसे समय में आपने कृषि जैसे एक अनूठे रास्ते को चुना था जिस रास्ते में कठिनाइयां ज्यादा होती हैं। जनरली हमने देखा है जो किसान के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करके शहरों में चले जाते हैं या कुछ नौकरी आदि करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसान के पढ़े लिखे बच्चे वापस किसान बने ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपने कृषि को ही क्यों चुना?
0: मैंने जब मैं बचपन से छोटा था तो मेरे गांव में, सब गांव में लोग गरीब रहते हैं, उनके पास दो चार पशु होते हैं और उसकी खेती की बहुत अनिश्चितता रहती है, बारिश होता है तो उसको पाक मिल जाता है, नहीं होता है तो अकाल रहता है। तो ऐसे गांव में मैं बचपन से सोच रहा था कि हमारे किसानों के लिए क्या किया जाए, उसकी वजह से हमारे किसान के घर में बहुत पैसा आए। जो हमारे गांव के आसपास में, हमारे गांव में बड़े किसान कम है, हमारे गांव में दो चार बड़े किसान है और सब दो एकड़ तीन एकड़ के मालिक है और उसके बच्चों को बच्चियों को पढ़ाना है, उसको अच्छी तरह से लगन इसकी शादी करना है या उसके सही तरीके से उसको गुजरान करना है तो वो नहीं कर सकते थे। तो वो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा किया जाए उसकी वजह से हम किसान किसी के सामने भी हम बोल सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो उसी टाइम हमने ये, पहले तो मैंने ये मस्टर्ड यानी राई का एक आखा पूरा हमारे गांव और आसपास के गांव का एक मंडल बनाया था किसानों का और एक दूध डेयरी का भी चयन किया था और उसी से भी बहुत अच्छा मुझे करने की एक प्रेरणा हुआ करती थी कि कुछ अलग किया जाए। और हमने सोचा कि किसानी में भी जो परंपरागत खेतियां होती थी, जो पानी का बहुत ज्यादा

0: हमारे साथ तो हमें ऋषि मुनियों की भूमि है और मैंने तो 2007 से ये प्राकृतिक खेती का शुरू कर दिया था। हम यहाँ पे हमारे घर पे गाय रखते हैं और पूरी गाय माता का गोबर और यूरिन यानी उसका जरण हम अलग रखते हैं और उसमें से मैं तो किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अपनी जो भूमि है उसमें रासायनिक खाद लगा के उसमें से सब जो जमीन बिगाड़ दी है उसको अच्छी करने के लिए जो हमारी गाय माता है उसका गोबर और उसका यूरिन यानी जरण दोनों का उपयोग करके मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक बताऊं कि सभी किसान भाइयों को अपनी जो गाय है उसका 10 किलो गोबर लेना है, 10 लीटर जरण लेना है, उसमें 2 किलो गुड़ डालना है, उसमें 2 किलो बेसन यानी चना है या मूंग है, माठ है, अड़द है, उसका आटा डालना है और 200 लीटर पानी लेना है इसमें। और अपने पास में जो कोई खिजड़ा है या कोई बरगद का पेड़ है या कोई पीपल का पेड़ है उसके नीचे से 500 ग्राम उसकी नीचे से माटी लेना है, वो सब एकत्रित करके छांव में प्लास्टिक के ड्रम में रखना है, एक हफ्ता तक रखना है और फिर वो अपने जमीन में पूरी जमीन में जितना तक आ सके उतने तक पानी के साथ में भी दे सकते हैं या पौधे के मूल में भी दे सकते हैं। तो उसकी वजह से अपना पौधा है वो एकदम हरा हरा हो जाएगा, उसके ऊपर जो फ्रूट आएगा या अपने बाजरी है या कुछ भी आप करो उसी में रासायनिक खाद के अलावा ये कर सकते हैं। रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डालना है और इसमें से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा और ये सब अपने किसान का मित्र है। मैं एक आपको बात बताऊं कि अपने गाय का जो घन बोलते थे जो नंद बाबा के वहां पे जो गाय लेके जाते थे किशन जी, वैसे ही अपने गांव से गाय निकलती है। तो आपको मैं एक बताऊं कि जो जीव है गोबर खाने वाले वो सब नीचे चले गए, लेकिन गाय जब उसका पोटा करती है तो आप देखेंगे सुबह में रात को उसने पोटा किया है और सुबह में आप देखेंगे उसको हटा के तो इस जमीन में 10-12 छिद्र मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उसके गाय का पोटे की सुगंध लेके वो ऊपर आते हैं उसको खाने के लिए, तो उससे छिद्र हो जाता है। तो वो ऐसी तरह से वो बैक्टीरिया जो है वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं और वो किसानों का मित्र है, जो बैक्टीरिया है वो किसानों का मित्र है, वो गाय के गोबर से ही हो सकता है। ये रासायनिक खाद से वो नीचे चले जाते हैं और पूरा एक रासायनिक खाद से जमीन के एक फीट के नीचे पूरा पड़ बन गया है, एक पत्थर जैसी जमीन हो गई है, तो वो बहुत जमीन बेकार हो गई है। इसमें यही एक जीवामृत डालने के गाय का गोबर से ही ये अच्छा होगा और उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो किसानों के हर किसानों को मैं सभी को बोलता हूँ कि आप अपने घर में गाय रखिए और गाय का गोबर और बड़द रखिए, बड़द का गोबर भी ऐसे ही काम करता है। सभी किसान भाइयों को उसका कोई खर्च नहीं होगा और गाय और बड़द जो अपने किसान उनके मित्र है वो सभी पाल सकेंगे, तो अपनी गाय भी बचेगी, गाय बचेगी तो अपना देश बचेगा और किसान बचेगा।
1: किसान को तो अन्नदाता भी कहा गया है और मैं समझता हूँ कि अन्नदाता को ही पहले ये समझना होगा कि मैं अन्नदाता हूँ और मेरे द्वारा लोगों तक अन्न पहुँच रहा है, तो मुझे वही अन्न उगाना है जिस अन्न से मेरा देश सशक्त बने, देश के लोग सात्विक बने। तो इसलिए बिगिनर राम जी आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी बातों बातों में हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को इतना सुंदर आपने एक सहज विधि बता दी जिसके द्वारा पथरीली जमीन को या जो हमारे मित्र कीटक होते हैं उनको वापस लाने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। आपने ये विधि बताई, इसके लिए बहुत बहुत एक्स्ट्रा धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: मुझे आपको अभी आपके साथ एक गेम खेलना है, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब आपको एक शब्द में देना है।
0: जी,
1: तो ये रैपिड फायर राउंड है, मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा और आपको जो पहला जवाब आता है बुद्धि में आपको वही बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे कि आपने अनार ही क्यों चुना?
0: क्योंकि उसी से पानी की बचत होती है और किसान का भला होता है।
1: वेरी नाइस। मुझे लगा आप कहेंगे एक अनार 100 बीमार, तो मैं 100 बीमार को ठीक कर सकता हूँ, शायद अनार चुना। जी, तो पानी की बचत भी होती है और आमदनी भी बहुत अच्छी होती है।
0: जी,
1: दूसरा सवाल है, श्रम क्या है?
0: श्रम एक ऐसा परिबल है जो वो जो श्रम करता है वो कभी पीछे नहीं रहता।

0: संघर्ष क्या है?
1: संघर्ष एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को, जो किसान को या कोई भी व्यक्ति को उसको आगे जाने में मदद करता है।
0: आपके लिए शांति क्या है?
1: मेरे लिए शांति यही है कि बस सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो और सभी के ऊपर भगवान की दया हो, ये शांति।
0: अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल, भारत क्या है?
1: भारत एक युग पुरुष है, भारत एक ऋषि मुनियों की भूमि है, भारत एक दुनिया से सबसे अलग विश्व गुरु सभी को साथ में लेके चलने वाला एक युग पुरुष है।
0: और आखिरी सवाल, नहीं आखिरी नहीं, एक और सवाल, कृषि क्या है?
1: कृषि एक ऐसी चीज है कि जो करने से पूरे दुनिया को खाना मिलता है, जो सभी को शांति मिलती है।
0: और लास्ट सवाल, गेनाराम कौन है या क्या है?
1: गेनाराम तो कुछ नहीं है, एक किसान है और एक मित्र है सभी लोगों का, कि जिसको एक गेनाराम ऐसा व्यक्ति है जो गरीब हो या पैसेदार हो लेकिन सबसे मदद करने वाली थी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गेनाराम जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में खुद को विश्वामित्र समझाया, जो सारे विश्व का मित्र है, जो अन्नदाता है वही देश का गौरव है, और यशस्वी भारत को यशस्वी बनाने में वही कदम से कदम मिला के चल रहा है और लोगों को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। तो ऐसे हमारे विश्वामित्र गेनाराम भाई जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट हैज हैपन्ड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
2: राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे भारत को विदेशी सत्ता से मुक्त होते हुए देखें और इस दिशा में कार्य करें। उनकी इस इच्छा को बढ़ावा दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले जी की मार्फत ही वे गांधी जी से मिली। अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी के निर्देशन में उन्होंने पंजाब के बुनकर संघों को व्यवस्थित करने, जालंधर जिले के ग्राम उद्योगों को पुनर्गठित करने, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, निरक्षरता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों की दशा सुधारने जैसे कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। गांधी जी की प्रेरणा से वे कांग्रेस में शामिल हुई और नमक सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तार हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कारावास की यातनाएं भी सही। भारत के स्वतंत्र होने पर वे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का श्रेय भी राजकुमारी अमृत कौर को ही जाता है। उनका मानना था कि भारत की प्रगति बालकों के चरित्र निर्माण और उत्थान से संभव है। एक सक्रिय और समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन जीने के बाद 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया।
3: आज शाम 7 बजे बाशोक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। अधिक से अधिक संख्या में आए और लाभ उठाए। आज शाम 7 बजे बाशोक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है।
4: अरे नमस्कार राम भरोसा काका।
5: नमस्कार नमस्कार भैया, क्या बात है? आज दोनों अकेले ही? साथी लोग कहाँ हैं?
4: वो सब आपकी दुकान पर है। हम तो न्यूज़पेपर लेने चले आए थे। कहाँ से आ रहे हैं काका?
5: मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ।
4: इसीलिए 2 दिन से आप दुकान पर दिखे नहीं। पर ये अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया?
5: अरे वो अपने चौक वाले दीनू काका है ना, उनकी बहू विमला माँ बनने वाली है और उसको पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने को कहा था तो उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवा के आ रहा हूँ।
4: क्या वो बहुत बड़ा अस्पताल है काका?
5: हाँ बड़ा है और सुविधाजनक भी। वहाँ कई बीमारियों का इलाज होता है। बहू का इलाज शुरू हो गया है। अरे उसे फायदा भी है।
4: इतना अच्छा संस्थान किसने बनवाया काका?
5: बेटा इसकी स्थापना राजकुमारी अमृत कौर ने की थी।
4: राजकुमार और राजकुमारी ही तो बनवा सकते हैं ये सब। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
5: अरे अमृत कौर वैसी राजकुमारी नहीं थी।
4: फिर कैसी थी?
5: चलो पहले दुकान चलते हैं, फिर विस्तार से बताऊंगा तुम्हें।
6: क्यों रे छोटू, आधे घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू कहाँ भटक रहा था?
4: बस स्टैंड ही गया था, काका से पूछ ले। और ये ले अखबार।
7: अरे राजू भाई चाय पिलाओ यार, बढ़िया अदरक वाली।
6: अच्छा छोटू मैं चलता हूँ।
4: अरे रुक जा, आज काका राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बताएंगे।
8: भैया चाय ले लो, चाय ले लो।
4: हाँ ले, चाय भी आ गई, चल बैठ। हाँ तो काका, उनका नाम राजकुमारी अमृत कौर था। और
5: अमृत कौर सिर्फ नाम की राजकुमारी नहीं थी बेटा, अपने कामों से उसने लोगों के दिल पर राज किया। अमृत कौर के पिता पंजाब की रियासत कपूरथला के राजा के बेटे थे। अमृत कौर की माँ सामाजिक कार्यकर्ता थी। अपनी माँ से उसने समाज सेवा का पाठ सीखा। राजकुमारी अमृत कौर की शिक्षा इंग्लैंड में हुई।
7: हाँ भैया राजकुमारी जो थी,
5: लेकिन उनका मन तो भारत में रमता था। वो भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई थी।
9: राजकुमारी अमृत, यू आर ग्रेट। तुम इंग्लैंड की नंबर वन प्लेयर हो, यह हमारे कॉलेज के लिए फक्र की बात है। तुम क्रिकेट और हॉकी दोनों की ही कैप्टन हो। तुम्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ इंग्लैंड का अवार्ड दिया जाता है।
10: मैं इस समय अपनी माँ को याद कर रही हूँ जिन्होंने मुझे अपने सारे कामों की शक्ति दी। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
9: अमृत कौर

0: आप भविष्य में इंग्लैंड के लिए खेलती रहेंगी या कुछ और भी इरादा है, मतलब शादी वादी?
1: नहीं नहीं, शादी तो कतई नहीं, वो जिंदगी भर चलता रहेगा। मेरी नजर अपने भारत पर है, उस सरजमी को मेरी जरूरत है और मुझे उसकी।
0: अमृत कौर की भारत को ही नहीं इंग्लैंड को भी उतनी ही जरूरत है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जिसने हमारे ब्रिटेन का नाम रोशन किया, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। धन्य है भारत देश जिसने ऐसे महारथियों को पैदा किया।
1: मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मेरे नाम से एक अवार्ड शुरू किया, और चाहती हूँ इस अवार्ड में जात पात रंग भेद का भेदभाव ना हो, ये योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए। और जो मुझे आज ये सम्मान राशि दी गई है, उसे मैं कॉलेज के विकलांग छात्र एल्विन के लिए समर्पित करती हूँ।

0: मुझे सौगंध है गीता की, सौगंध है बाइबल की। मैं अविवाहित रहकर लोगों की सेवा करूंगी।
1: ठीक है, हम मैं आगे क्या बोलूं? ईश्वर तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ इस सेवा मार्ग पर। बढ़ो और आगे बढ़ो।
0: पिताजी, माँ की जनसेवा मैंने बचपन से देखी है। आपके त्यागी स्वभाव ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक इस सेवा मार्ग पर चलती रहूंगी।
1: देखो बेटा, ऐसा काम करो जिससे इस दुनिया में जरूरतमंद गरीब लोगों का कल्याण हो। राह में कांटे जरूर मिलेंगे, पर तुम्हें निडर होकर यह कार्य करना होगा। समझे बेटा?

0: राजकुमारी जी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है हम राजकुमारी जी से मिले बगैर नहीं जाएंगे यहाँ।
1: पिताजी, सबसे पहले तो आप सबसे ये कह दीजिए कि मुझे राजकुमारी कहकर संबोधित नहीं करें। मैं सिर्फ अमृत कौर हूँ, मैं सब लोगों की बहन बेटी हूँ बस। हाँ, आप चलिए और उनसे कहिए परेशान ना हो, मैं उनसे अवश्य मिलूंगी।
2: वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मैं अभिभूत हो उठता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर सबको तुम जैसी बेटी दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे सभी प्रयत्नों में तुम्हारा साथ दे।
3: गांधी जी के भारत लौटने पर अमृत कौर ने उनसे कई बार भेंट की।
4: महात्मा गांधी की
5: जय।
4: महात्मा गांधी की
5: जय।
4: महात्मा गांधी की
5: जय।
1: बापू, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे मिलने की कई दिनों से इच्छा थी, आज सौभाग्य मिला। आपके साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह से मैं अभिभूत हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
3: बेटा, सीखा है तो और लोगों को सिखाओ। सेवा मार्ग सबके लिए है। अपने पति को इस काम के लिए प्रेरित करो।
1: मैंने अविवाहित रहने का प्रण किया है। मैं गरीबों और असहायों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती हूँ।
3: अरे, तुम कह रही थी मुझसे तुमने बहुत सीखा है, अब मैं तुमसे सीख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आओ देखो, ये कुष्ठ रोगी, इन्हें सहानुभूति नहीं, इन्हें तो स्नेह चाहिए।
1: लाइए, मुझे दीजिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। आओ इधर आओ। आज मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है। मैं आपसे मिलकर धन्य हूँ बापू।
3: तुम्हारा नाम ही सिर्फ अमृत नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम का अमृत भी है। उस अमृत को बांटते चलो। जीवन की सत्यता इसी में है।
1: आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे आज दीक्षा मिल गई। बताइए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं?
3: तुम लोगों के लिए जियो और ऐसे काम करो कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं, तुमसे हमेशा प्रेरित रहूं, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी।
1: बापू, मैं नतमस्तक हूं, मेरा मानव जीवन सफल हो गया।
3: और राजकुमारी अमृत कौर निकल पड़ी अकेली, गाते हुए, एकला चोलो रे, और आंधी तूफान सबसे जूझते हुए उनके कदम आगे बढ़ते रहे। कई बार अमृत कौर

गांधी जी से साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति मांगी, पर गांधी जी ने कहा, बेटी तुम घर पर रहो और माता पिता की सेवा करो। 1924 में अमृत कौर की माता और 1930 में पिता का स्वर्गवास हो गया।

0: पिताजी आप चले गए और माँ भी। नहीं, ये आंसू नहीं, श्रद्धा सुमन है। माँ, अब मेरे जीवन का हर पल जनसेवा के लिए होगा, भारत देश के लिए होगा। मेरा अगला कदम बुनकर और हरिजन कल्याण के लिए होगा।
1: 23 दिसंबर 1932, राजकुमारी अमृत कौर अखिल भारतीय महिला मंच को संबोधित कर रही थी।
0: मेरी प्यारी बहनों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है। आज मैं अखिल भारतीय महिला मंच से उसका जोरदार विरोध करती हूँ।
1: राजकुमारी अमृत कौर 16 वर्ष तक महात्मा गांधी की सचिव रही और कई आंदोलनों का संचालन किया।
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
0: भाइयों, आगे बढ़ो, चलो, अब हमें बंदूक, तोप, लाठियां कोई नहीं रोक सकता। हम आजादी लेकर रहेंगे।
2: अंग्रेजों,
3: भारत छोड़ो!
2: अंग्रेजों,
3: भारत छोड़ो!
2: अंग्रेजों,
3: भारत छोड़ो!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
1: पुणे सरकार ने कालका में गिरफ्तार कर लिया, फिर वहां से अंबाला जेल में भेज दिया। जेल में एक संतरी उनका हाल चाल पूछने आया, तब उन्होंने कहा,
0: अंबाले की इस काल कोठरी में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। मैं, बाइबल, गीता और पानी का एक बर्तन। बाहर सरकार हमें तंग कर रही थी और जेल में चूहे। दोनों में अंतर नहीं है, जेल में गंदगी और खराब भोजन भी हमारे साथी हैं।
4: बीबी जी, आपका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, आप जेलर से निवेदन कर लें तो आपको रियायत मिल सकती है।
0: नहीं चाहिए, मुझे रियायत नहीं चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, संपूर्ण आजादी।
1: और फिर वो दिन भी आया, 15 अगस्त 1947, जब हम आजाद हो गए, हमें आजादी मिल गई।
0: भाइयों, देश आजाद हो गया, हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। पर अभी हमारे सामने कठिनाइयों के पहाड़ खड़े हैं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, अब हमें इनसे लड़ना है।
5: राजकुमारी अमृत कौर की
3: जय!
5: राजकुमारी अमृत कौर की
3: जय!
5: राजकुमारी अमृत कौर की
3: जय!
0: नहीं, जयकार मेरी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जय बोलो भारत माता की, जय उन शहीदों की जिनके बलिदान से हम आजाद हुए और आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जय हो जनता जनार्दन की, भारत माता की
3: जय!
0: भारत माता की
3: जय!
4: अमृत कौर जी, अब आपकी आगे की क्या क्या योजनाएं हैं?
0: सबसे पहले मैं पूरे भारत देश का दौरा करना चाहती हूँ। सांप्रदायिकता का ये बीज जो अंग्रेज बो गए हैं, उसे जड़ से उखाड़ना होगा। हम मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा।
6: हम सब आपके साथ हैं, युवा पीढ़ी आपके साथ है।
0: तो बस, अब और कुछ नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, वीर दल सजा रहे। वीर तुम बढ़े चलो।

0: राजकुमारी अमृत कौर।
1: कौन है, कौन है, कौन मेरे ही यज्ञ में विघ्न डाल रहा है?
0: मैं हूँ यमराज। उठो, जागो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पुण्य कर्मों का घड़ा भर गया है, अब छलक रहा है, तुम्हारा जीवन पूरा हुआ, चलो स्वर्ग चलो।
1: नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम करने हैं, बहुतों को मेरी जरूरत है। मैं मृत्यु से नहीं डरती, पर अपने अधूरे कामों को छोड़कर नहीं जा सकती।
0: तुम्हें यमराज का आदेश मानना ही होगा, चलो मेरे साथ।
1: ठीक है, मैं मृत्यु का वरण करने को तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है।
0: मुझे भी मंजूर है, बोलो।
1: मुझे दोबारा मानव जन्म मिले और भारत में फिर से अपने भाई बहनों की सेवा करती रहूं जन्मों जन्मों तक।
0: ठीक है, पर तुम अमृत कौर बनकर दोबारा जन्म नहीं ले सकती। हर जन्म में नया रूप लेकर आओगी। जब रोगियों के घावों को जो सहलाएगा वो हाथ तुम्हारा होगा। जब भी अत्याचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाने आगे आएगा उसकी आत्मा में तुम रहोगी।

0: आता हूं, मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम अपने काम निपटा लो।
1: देखा तुम लोगों ने, कर्म ही उनके लिए पूजा थी, और लगातार काम करते करते कब जीवन की संध्या हो गई पता ही नहीं चला उन्हें। 75 वर्ष पूरे कर ये सूर्य अस्त हुआ, और अस्त होते हुए सूर्य ने कहा था, जीवन नाम ही चलने का है।
2: वाह काका, आज का दिन सार्थक हो गया।
1: बेटा, सार्थकता तो तब मानी जाएगी जब हम सार्थक काम करें। तो चलो, शहर में स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, लोगों को जानकारी दो, स्वस्थ रहे घर तेरा मेरा, तभी होगा सच्चा सवेरा।
3: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
4: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
5: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
4: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश रहो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हम खुशी की बात करते हैं तो साथ में गुस्से की भी बात कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि भाई ये दोनों तो साथ साथ ही चलेंगे। कई बार कहते हैं कि लव और हेट रिलेशनशिप है, वी हैव अ लव हेट रिलेशनशिप, बट नाउ वी रियलाइज कि या तो प्यार रहेगा या नफरत रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब ये पता चलता है तब हमें चूज करना है कि हम प्यार में रहना चाहते हैं या नफरत में रहना चाहेंगे। और हम में से अधिकतर लोग, जितने भी मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, सबने यही चूज किया कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम प्रेम में रहना चाहते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे उस खुश रहने को या प्रेम में रहने को, उस आस्पेक्ट को डिप्लीट करती हैं? और इस पर एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी, गुस्सा। गुस्सा जब मैनिफेस्ट होता है तब हमें पता चलता है कि अरे हमें गुस्सा आया था, लेकिन उसके पहले का प्रोसेस भी तो चल रहा होता है। जब हम कभी इरिटेट हो रहे होते हैं, कुछ और बातें चल रही होती हैं, उन्हीं को आज साथ मिलकर खंगालते हैं कि क्या है ऐसा जो मैनिफेस्टेशन उसका गुस्से में निकलता है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जहां गुस्से की बात की थी तो पिछली कड़ी में याद है मुझे कि हमें तब रियलाइज होता है कि मेरा गुस्सा करना कितना गलत है जब मैं किसी और को देखती हूं और मुझे लगता है कि इसके इन्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, गुस्से में जब हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हम कहते हैं कि हम कहना ही नहीं चाहते थे, यू नो, सो वो जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो तो समझ में आया कि जब बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को और मैंने गुस्सा कर दिया। लेकिन इसके पीछे का कुछ एक पूरा प्रोसेस चलता होगा, क्योंकि जब तक हम उस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे हम शायद इससे पार नहीं जा पाएंगे।
1: गुस्सा इज अ एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस ना, जो यहाँ क्रिएट होती, लेकिन वो हमेशा ऐसे वाली नहीं होती है। इट कैन नेवर गो, इट्स लाइक द गियर्स ऑफ द कार, इट हैज टू गो 1, 2, 3, 4, 5, इट विल नॉट गो डायरेक्टली इनटू 5 फ्रॉम योर न्यूट्रल स्टेज। लेकिन हमें वो कब दिखाई देते, जब इट्स गॉन इनटू गियर 5। हम अगर उसकी अवेयरनेस में चलते तो फ्रॉम न्यूट्रल टू 1 पर ही जब पहुंचते तो हमें पता चल जाता कि ओके समथिंग इज हैपनिंग, एंड क्यों ना उसको यहीं पर रोक कर चेक किया जाए, तो फिर वो कभी एक एक्सप्लोजन का रूप तो लेगा ही नहीं। तो सबसे पहले जब गुस्से की शुरुआत हमारे अंदर होती है, इट्स विद अ वेरी लिटिल इरिटेशन। और इरिटेशन, अब हम गुस्सा करते हैं या नहीं करते ये हर एक अपने आप से पूछे, लेकिन इरिटेशन कब होता है नॉर्मली अगर हम देखें, बिकॉज एक एनर्जी है। जरूरी नहीं है मैं एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन में पहले इरिटेट हुई, फिर थोड़ा और गुस्सा हुआ, फिर और, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह इरिटेट होती, फिर और दो जगह इरिटेट होती, तीसरी जगह कहीं बड़ी बात हो जाती, तो ये सारे जो इरिटेशन भी बिल्डअप हुई होती है सुबह से मेरे साथ। इसीलिए हमने बार बार इस सीरीज में ये देखा कि जब आप सुबह उठते हैं और वो सुबह का जो टाइम है 1-2 घंटा, जो हम मैक्सिमम डिस्टर्बेंस एक घर के अंदर क्रिएट कर देते हैं इन द नेम ऑफ बच्चों को उठाना, बच्चों को तैयार करना, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ध्यान रख के जितना हो सके उसको ईज डाउन करें, क्योंकि वो आपके दिन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। यू नो, दिन की शुरुआत है, दिन की शुरुआत अगर हर रोज ऐसे ऐसे वाली होगी तो वो इट विल कैरी फॉरवर्ड इन टू द रेस्ट ऑफ द डे। और दिन की शुरुआत अगर कामली होगी, पर लेकिन ये हमने एक पैटर्न बना लिया, यू नो, इट हैज बिकम अ पैटर्न कि बच्चों को उठाना है तो ऐसे ही उठाना,

0: एंड किसी का मोबाइल बजता था एंड आई विल गेट क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि मोबाइल क्योंकि इट इज लेस अबाउट यू गेटिंग डिस्टर्ब बट आई यूज टू सी सो मेनी पीपल अराउंड आर गेटिंग डिस्टर्ब बट देन दैट वॉज डिस्टर्बिंग मी एंड आई सेड एक की वजह से अभी देखो इतने लोगों का अटेंशन डेविएट हो गया इनको ध्यान में नहीं आता कि इनको सो दिस इज माय इरिटेशन एंड नाउ ये एक बार हुआ दो बार हुआ चार बार हुआ एंड एवरी टाइम आई सॉ माय सेल्फ गेटिंग इरिटेटेड एंड देन आई हैड टू स्टॉप एंड टॉक टू माय सेल्फ दे हैव द फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट टू डू हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना मोबाइल साइलेंट पे रखें लेकिन उसके बाद चॉइस हर एक की अपनी है हमें हर एक की चॉइस को रिस्पेक्ट देना है वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सारी दुनिया हमारे रिस्पेक्ट या ऑर्डर या कंट्रोल में चलने वाली है और ये मोबाइल बजा वो उतना डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा लेकिन जो हम इरिटेट हो जाते हैं और वो जो एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती
1: करने में
0: वो डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करता सो नाउ आई ऑलवेज ट्राई कि अगर किसी का मोबाइल बजता है आई इमीडिएटली चेंज द कॉन्वर्सेशन एंड आई टेल एवरीवन व्हाट अ वंडरफुल ट्यून ना नाइस म्यूजिक द मोबाइल हैड ताकि हरेक का माइंड भी यू नो ठीक हो जाता है एंड आई रियलाइज कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है मोबाइल भले बजा था तो मोबाइल नहीं डिस्टर्ब कर रहा है हम जो इरिटेट हो जाते हैं
1: क्योंकि हमने कहा था यू नो हम एक फ्लो
0: हमारी बात नहीं मानी गई इट्स मोर ऑफ दैट कि हमने जो कहा आपने हमारी बात नहीं मानी हम इरिटेट हुए उससे पूरा एनर्जी लेवल तो जहां हम थोड़ा थोड़ा ऐसा इरिटेट होते हैं ना इफ वी जस्ट स्टॉप एंड अपने आप क्योंकि वो हैबिट बन रही है ना इफ आई वुडेंट हैव चेक्ड माई सेल्फ मैं हर प्रोग्राम में इरिटेट होती जाऊंगी अब हर रोज या वट एवर सो फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम हो रहे हर प्रोग्राम में इरिटेट हो आदत बनती जाएगी एंड फिर इट इज समथिंग जो मुझे पता भी नहीं चलेगा वो मेरे को लगेगा इरिटेट होना तो नेचुरल
1: जो मैंने कहा फिर वो होना चाहिए यू नो कि अगर मैंने कहा कि फ्लावर वास जो है वो यहाँ से यहाँ रखना चाहिए तो वो वैसा ही रखा होना चाहिए क्योंकि फिर मुझे इरिटेशन होनी चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा फिर मेरी इरिटेशन यू नो आई
0: फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है इसलिए जहां आप ये नोटिस कर रहे हो ना क्योंकि होती है लेकिन अगर नोटिस कर लिया और उस पर अटेंशन डाल दिया एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ अगर हम उनको बोल सकते हैं मोबाइल ऑफ करो हम अपने को भी तो बोल सकते हैं इरिटेट मत हो इट्स ऑल अबाउट giving instruction to someone तो हमेशा instruction दूसरों को क्यों
1: तो हम irritation irritate मत हो अगर कहेंगे अपने आप को तो will it work
0: yeah it happened that's what I shared this with you because I got irritated you know few times every time I got irritated and awareness है तो पता चल जाता है कि हम irritate हुए हमें अंदर से अच्छा नहीं लगा जो हुआ so I had to just sit back and say today in today's program अगर कोई mobile बजेगा I will just accept and I will see to it that not a single एंड क्योंकि नाउ आई टेक केयर तो मैं इरिटेट नहीं होती तो आई इमीडिएटली ट्राई कि सभी लोग भी उसको एक्सेप्ट कर ले यू नो आप अगर इरिटेट होते हो तो बाकी तो वैसे ही रेडी बैठे हुए हैं इरिटेट होने के लिए वो सब उसको जिनका बचता है ना सारे टर्न करके उनको घूरते हैं अननेसेसरली स्पॉइल्स द रूम सी एक्सेप्ट मीन्स कि आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हो
1: इट्स ओके
0: क्योंकि होता क्या जैसे ये मोबाइल वाली चीज में ओनली आप नोटिस्ड जिसका बजता है दे डिडंट डू इट डेलिबरेटली मोस्ट ऑफ द टाइम वो भूल गए उसको ऑफ करना तो जैसे ही उनका बजता है ना पहले तो वो ही एकदम ऐसे हो जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू यू नो स्पेशली द लेडी दे विल ट्राई टू ओपन देयर पर्स एंड वो सबकी जो एनर्जी उन तक पहुंचती है उनको वो मोबाइल मिलता ही नहीं है उनके पर्स में फिर मोबाइल में उनको पता ही नहीं चलता उसको ऑफ यू नो इट यू कैन जस्ट सी कि इरिटेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है कि जो चीज आप बहुत नॉर्म क्योंकि वो ऐसे ऐसे करने लगते हैं दिस इज वॉट इज अ रिजल्ट कि इरिटेशन से आपकी एफिशिएंसी एकदम बट इफ यू एक्सेप्ट देम एंड यू से इट्स ओके आपका मोबाइल बजा नो प्रॉब्लम टेक योर टाइम यू नो टॉक अबाउट द मोबाइल टॉक अबाउट टेक योर टाइम स्विच इट ऑफ द पर्सन फील्स एक्सेप्टेड कि हाँ कोई मेरे से इरिटेट नहीं हुआ तो वो भी उसको आराम से कर देते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है सबको आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हुए कि एक दूसरे को हम स्वीकार करें एवरीवन इज डूइंग थिंग्स एट देयर पेस
1: एंड इफ यू गेट सिनिकल या उसके ऊपर ऐसा कुछ सार्कास्टिक सा कमेंट कर रहे हैं इट डज नॉट मीन कि आपने एक्सेप्ट किया है
0: एक्सेप्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव तो इसलिए इरिटेशन जिन जिन बातों पर आपको हो और कई चीजें बहुत स्पेसिफिक होती हैं जो हमें पता होती हैं कि ये चीज मुझे इरिटेट करती है
1: अमेजिंग बात है और हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहे थे तो वो गलत क्यों कर रहा था उसे पता नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए यू नो वी एक्चुअली एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि सो मच हम जो भी पूरी बात कर रहे हैं एक मूल मंत्र हमें याद रखना है कि ध्यान अपना रखना है
0: क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ना आपको सारा दिन में कितने लोग मिलने हैं कितने

0: काम नहीं कर रहे तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये दो चीजें हम समझ लें, रुक जाए जरा से भी इरिटेशन, और आई थिंक हमें बहुत बार रुकना पड़ेगा, लेकिन एक दिन हम ट्राई करें, एक दिन है हमारे पास जिसमें हम ट्राई करके देखेंगे कि हम इरिटेट ना हो, और वो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हम इरिटेट तो कंप्यूटर से हो रहे होते हैं, तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम इरिटेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लिए ये करके देखें, और फिर उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है हम चेक कर पाएंगे कि कहां तक पहुंचता है। थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। ट्राई आपको करना है, ट्राई हमें करना है, हम साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ध्यान तो हमें अपना रखना है ना। हम बार बार ये कहते हैं कि हम सबका ध्यान रखते हैं, हमें नहीं पता था कि हम क्यों अपना ध्यान नहीं रख पाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसे रखना है। अब हमें प्रोसीजर पता चल गया है, जैसे ही हमें पता चल जाती है चीजें हम अपने लिए कर सकते हैं, कोई और दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, किसी को साथ लेकर नहीं चलना, सिर्फ अपने साथ ये काम करना है। क्यों ना हम अपने साथ आज एक प्रॉमिस करें कि हम ये जरूर करेंगे, ट्राई करके देखेंगे। कोई मन में बात उठ रही है, कोई सवाल है, कोई अनुभव है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है इसको करने के लिए, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 01242 66 000 999 344 555 999 344 66 9873 666 555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आज तो बात हमने की इरिटेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, लेकिन एंगर से जुड़ी बहुत बड़ी बातें अभी भी हैं। बहुत ऐसी ऐसी बातें जो डीप हैं, जिसमें रिजेंटमेंट आती है, नफरत आ जाती है, हेट्रेड है, जिसे हम पकड़ कर बैठे हैं। कैसे उसे छोड़ना है खुद का ध्यान रखने के लिए, आने वाली कड़ी में बात करेंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा, क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए?

0: उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो वो आत्मा ऑलरेडी इग्नोरेंस में है और हम भी एक और इग्नोरेंस का कर्म करते जब हम कहते पनिशमेंट से परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी तो एक इग्नोरेंस है। पनिशमेंट से कौन सा परिवर्तन आज दिन तक हुआ? तो ये सिर्फ सो कॉल्ड क्रिमिनल के लिए नहीं, लेकिन बचपन से लेकर जो आज हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से पनिशमेंट देकर सिर्फ परिवर्तन करने की कोशिश करते, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मंथन करना होगा।
1: बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जब अपराध हो रहा है तो अपराधी को क्षमा कैसे किया जाए? अपराधी को अपराध की सजा तो मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है। इतना अपराध क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वायलेट किया है दूसरे की इंडिपेंडेंस,
0: दैट इज ट्रू,
1: है ना? दूसरे की कहीं ना कहीं दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं ही इज रिस्पॉन्सिबल।
0: We are not saying that you know the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is ki ek bar you have got the person in your custody, ab aapne kya karna hai unke sath? उसमें आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर जो एंगर है, रिजेंटमेंट है, उसको और बढ़ने दें, उनको हील करें। द सो कॉल्ड प्रिजन एरिया कैन बी मोर लाइक अ काउंसलिंग सेंटर, इट कैन बी मोर लाइक अ हीलिंग सेंटर, जहां क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? बिकॉज दैट्स नॉट ओनली फॉर देम, इट्स फॉर ईच वन ऑफ अस। लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो बिटरनेस से नहीं लेकिन हील्ड होकर बाहर।
1: एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, एटीट्यूड में, हमारी पूरी सोच में ही जहां अपराधी की बात आती है, जहां जेल की बात आती है, वहां हमें घृणा, एक घृणा से भर जाते हैं हम।
0: ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है, पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है? सुधार लाना। पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज न करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते, सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक यू नो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसने उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं। सो दैट इज समथिंग यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड उसके लिए चाहिए कि जहां पे भी सब है वहां पे देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग, एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स बट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ईच वन ऑफ अस। जो आज गलतियां अगर हमारे से होती हैं तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ पनिश न करें या सिर्फ रिवेंज न लें। वो रॉन्ग मेथड क्यों हो जाता है? बिकॉज वो हमारे अंदर की बिटरनेस को और बढ़ा देता है। हमें इवन ऑफिस में, आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा, इट्स ऑलवेज एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, उससे क्या रिजल्ट निकलेगी? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो एक्शन लिया और यू नो कि ठीक है ये पनिशमेंट दे दी, ये हमने एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया,
1: उससे और रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो कंटिन्यू सिमर रहता है।
0: तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको खत्म करना है, बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है। यू नो ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वॉन्ट टू डिसिप्लिन द पर्सन, हैव यू रियली सक्सीडेड?
1: वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है। अगेन दिस इज अ मेजर मेजर बिलीव विद विच वी आर वर्किंग, कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है, भय जो है वो काम करवा सकता है, भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे। एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफी वाला फैक्टर जो है कि एक बार मिस्टेक को आप माफ कर सकते हैं। इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ कर देते थे, 100वीं बार जो था ही सेज दैट इट हैज टू बी पनिश्ड। सो बार बार जब रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक हैपन्स, देन
0: बार बार रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज हैपनिंग बिकॉज नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट पर्सन। आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि व्हाई इज दैट मिस्टेक हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ डीप रूटेड संस्कार। मिस्टेक वो जान पूछ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है। हो सकता है कई बार, आप देखो हम अपने आप से नहीं होता, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना फिर भी करते हैं, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना फिर भी करते हैं, तो 99 बार करते हैं या उससे ज्यादा बार करते हैं? तो हो रहा है।
1: सिस्टर शिवानी, अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब कि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी

0: वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड से।
1: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है। सो नाउ यू कैन नॉट हैव हेट्रेड, यू विल हैव कंपैशन। वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है। अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं। बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया। It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
0: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान। रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
1: ओनली वन, यू नीड ओनली वन। कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की।
0: और उसे एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ।
1: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
0: और ये मेरे लिए जरूरी
1: है, वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है, नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं, अपना। तो सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है। इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल वेन,
0: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
1: लेट मी स्टॉप नाउ, नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then meko lagta hai 10 minutes apne liye nikalna
0: mushkil nahi hoga, bilkul nahi. In fact that's it. ये तो हम अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं, और अब हर बार और क्लैरिटी से आता जा रहा है कि मेडिटेशन इज एम्पावरिंग माय ओन सेल्फ। यू नो हीलिंग की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ हीलिंग अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, और ग्रेजुअली पूरे समाज के लिए। जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। सो शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का, और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। बहुत कुछ हमारे आसपास हो जाता है, चाहे वो समाज में हो या फिर घर में, एक ही अंदाज से अभी तक हम देखते आ रहे थे। देखने का नजरिया अगर थोड़ा सा बदला जाए, जहां हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है या किसी और के साथ गलत हुआ, और ऐसे में जिसने गलत किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, तो एक बार फिर खुद को टटोले, और जिस परिपेक्ष में आज हमने देखा है क्राइम को, क्रिमिनल को और पनिशमेंट को, उसे कुछ देर बैठ के अपने साथ रखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो परिपेक्ष सही है। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं।

फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि ये सफर खुद को पहचानने का और पूरी जिंदगी को जो जिन रॉन्ग बिलीफ पे या जिस बिलीफ सिस्टम पर हम अभी तक जिंदगी जीते आ रहे हैं, जहां उसने हमें हील नहीं किया है, एक ऐसे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: साल मुबारक साहिब जी,
1: साल मुबारक साहिब जी।
0: आज पियो हंस के दो घूंट थूम रख के,
1: लो आज पियो हंस के दो घूंट।

0: साल मुबारक पापा जी,
1: साल मुबारक काका जी।
2: लो लो आज पियो हंस के, दो घूंट सोम रख के, ये साल भर इसका नशा रहेगा।
1: और जो आज हंसे हंसे, जो आज हंसे।

वतन करा के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। भारत की आजादी के लिए भारतीयों ने अपना सर्वस्व त्याग कर अंग्रेजों का सामना किया। लोगों ने अपने प्राणपण से स्वतंत्रता संग्राम की वेदी पर स्वयं को न्यौछावर कर दिया था। आजादी के संग्राम की ओर अंतिम कदम बढ़ाते हुए देशवासियों ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जो भारतीय इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से मशहूर हुआ। यह आंदोलन अपने आप में अभिनव आंदोलन था, जिसमें देश का हर एक नागरिक स्वयं अपना नेता था और उसका अपना स्वयं का कार्यक्रम था, तथा उसे स्वयं तय करना था कि वो किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करेगा। किंतु उद्देश्य निश्चित था, अंतिम सांस तक संघर्ष करना और भारत को आजादी दिलाना। 9 अगस्त 1942 को सूर्य की पौफटते ही अखिल भारत की जनता आंदोलन में कूद पड़ी और अगस्त क्रांति आरंभ हो गई। पूरा देश आजादी की आकांक्षा में कुलांचे मारने लगा। भारत ने पहली बार महानगरों से लेकर गांवों तक राजनीतिक जागृति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अब भारत के लोग अपना स्वराज प्राप्त करने के लिए आजादी की बलवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अपने

घरों से बाहर निकले और अपने सिर पर कफन बांधकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का तांडव करने लगे। चारों ओर नारे गूंज रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो।

सारा देश आजादी के संघर्ष में शामिल हो चुका था। आंदोलनकारी नेतृत्व विहीन थे, वे स्वयं अपने विवेक से कार्य कर रहे थे। उन्होंने सरकारी प्रतीकों और अंग्रेजी सत्ता के चिन्हों को सर्वप्रथम अपना निशाना बनाया। पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों, प्रशासनिक भवनों, सभी को निशाना बनाया गया। साथ ही रेलवे लाइनों, पुलों, टेलीफोन और तार की लाइनों तथा यातायात के अन्य साधनों को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। भारत की आम जनता की इस प्रतिक्रिया से अंग्रेजी सरकार सकते में आ गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। इस बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कठोरतम दमन चक्र चलाया और सारे देश में एक प्रकार से पुलिस राज्य की स्थापना कर दी गई। आंदोलन इतना भयानक था कि आंदोलन आरंभ होने के प्रथम हफ्ते में 500 डाकघर, 150 पुलिस थाने और 250 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया। 1942 के अंत तक 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 26,000 लोगों को सजा दी गई और 18,000 लोगों को भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत जेलों में ठूंस दिया गया। 1943 के अंत तक अंग्रेजी सरकार ने 91,836 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तथा 945 डाकघरों, 208 पुलिस स्टेशन तथा 332 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया। 538 बार आम जनता पर पुलिस और सेना ने गोलियां चलाईं, जिनमें 1,000 से अधिक आंदोलनकारी मारे गए।

अगस्त क्रांति निश्चित रूप से अब तक के आंदोलनों में अभिनव और विशिष्ट थी, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान अनेक ऐसी खासियतें दिखीं जो पूर्व के आंदोलनों में नहीं थीं। इसकी सबसे विशिष्ट बात आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का गठन होना था। ऐसी पहली समानांतर सरकार चिश्रू पांडे ने संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में गठित की थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक और महाराष्ट्र के सतारा जिले में समानांतर सरकारें बनी। समानांतर सरकारों ने अपने क्षेत्रों में भारतीय पद्धति से शासन किया और अंग्रेजी शासन की प्रतिनिधित्वकारी संस्थाओं और वस्तुओं को ध्वस्त कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने बड़ी ही बेदर्दी से आंदोलन को कुचल दिया था। समस्त भारत में अंग्रेजी सत्ता की शक्ति का बीभत्स नाच हुआ और 6 से 7 सप्ताहों में आंदोलन को कुचल दिया गया। किंतु अगस्त क्रांति भारत के राजनीतिक पटल पर होने वाला सबसे बड़ा और आम जनता के राजनीतिक रूप से आजादी के लिए तन मन धन से राष्ट्र के प्रति समर्पण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति था। अगस्त क्रांति ने आम जनता को अपने घरों से खींचकर

सड़क पर ला खड़ा किया और ऐसा घनघोर रूप से आंदोलित किया कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जय घोष गूंजने लगा, जिसकी अंतिम और तार्किक परिणति 15 अगस्त 1947 को आजादी के रूप में हुई। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन करा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्रा ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे पेश किया सुधानुपम ने।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप जब भगवान के महावाक्य पढ़ रहे थे, परमपिता परमात्मा के, उस जिसे मुरली कहते हैं, वही चीज मैंने एक साइंटिस्ट ने जो लिखा है वो पढ़ लिया।
2: वंडरफुल।
1: ये कहता है कि द अवेयरनेस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एवरीथिंग especially on the level of thoughts is known as the universe mind.
2: The universe mind.
1: Ji. In the simplest terms, universe mind is the idea that at the level of the unconscious, we are not separate, but linked like one vast mind.
2: Hmm.
1: So, anything happening to one has an influence on the whole. Many people have heard of the 100th monkey phenomena, where monkeys on separate islands were given potatoes. Iske bare mein

0: एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, पोटेटोज को पानी में भिगा के ना मिट्टी विट्टी लगा के रख दिया था मंकीज के सामने। तो पहला मंकी गया नहीं खा सका, दूसरा मंकी गया नहीं खा सका, तो दो दिन बाद लोग देखे कि ये लोगों को इतनी मिट्टी लगी हुई। एक मंकी ने क्या किया, उसको पानी में नदी में डुबाया, डुबा के साफ करके खा लिया। इमीजिएटली ये लोग दूसरे आइलैंड में फोन किए कि वहां पर भी साथ चल रहा था, सेम चीज। दो तीन साइंटिस्ट बल्कि अपने अपने आइलैंड में कर रहे थे, तो इमीजिएटली फोन किया तो बोला कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे वहां से नॉलेज ट्रांसफर हुई। और उन्होंने भी एज सून एज वन ग्रुप स्टार्टेड टू क्लीन द पोटेटोज इन वॉटर द अदर मंकीज पिक्ड अप एंड कॉपीड द आइडिया। द मोर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड द मोर लाइकली अदर्स विल ट्यून into the pattern.
1: The more an action is performed, the more likely it is that others will tune into it.
0: Sir, ek bandar ne uska thought liya ki isko bhigao, nadi ke kinare dubao aur mitti saaf kha lo.
1: Very true.
0: Kaise knowledge transfer hoti hai?
1: Sara din mein agar hum bhi dekhe to ye hota hai, kahin ek jagah ek desh mein koi discovery hoti hai aur kahin dusre desh mein सेम पीरियड के अंदर सेम इन्वेंशन या सेम डिस्कवरी हो रही होती है। ज्ञान की बातों को भी अगर हम देखें तो सेम बातें अलग अलग जगह से आज आती हुई दिखाई दे रही है, सेम हीलिंग टेक्निक आज चारों तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स सो विजिबल कि ऑल ऑफ अस आर ट्यून्ड इनटू द सेम फ्रीक्वेंसी।
0: वन वास्ट माइंड
1: एंड द वर्ड इज सो ब्यूटिफुल, द यूनिवर्स माइंड। कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो विजुअलाइज करके हमें उसके प्रभाव का इफेक्ट पता चलेगा। कि उसने कहा कि हम इतने इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जैसे कि हम अलग अलग मन नहीं एक मन है। और इसी को देखो हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं कि ये सारा कुछ एक ब्रह्मांड है, एक है। वाई इज इट सेड एक, जबकि हमें आत्मा के लेवल पर समझ में आता है कि हम सब आत्माएं कोई जुड़ी हुई नहीं है। आत्मा हर एक
0: इंडिविजुअल
1: है, लेकिन कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि थॉट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक का थॉट का असर दूसरे पर होता है, एंड ही कॉल्स इट, द साइंटिस्ट कॉल्स इट अ यूनिवर्स माइंड, कि वो एक मन बन जाता है। अब अगर हम सोचें कि इस एक यूनिवर्स माइंड के अंदर हम एक हिस्सा हैं, हर एक, और हम जो सोचेंगे और जो करेंगे उसका ये पूरे यूनिवर्स माइंड पर प्रभाव पड़ेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी हो जाएगी।
0: आरबी के अकाउंट का सोच रहा था मैं कि जब मैं अगर नफरत फैलाऊं कि ये जात वाले ऐसे हैं, या वो नॉर्थ के या साउथ के या ईस्ट के या वर्ल्ड के अमेरिकन किसी के भी बारे में एक घृणा एक नफरत फैलाता,
1: सो वी आर ड्रॉपिंग दैट इन द यूनिवर्स माइंड।
0: व्हाट अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी?
1: My responsibility is that I'm creating a negative world today by radiating negative energy and vibration सारा दिन में। इसी को अब हमें change करना है। जब हम meditation से अपनी power को बढ़ाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती है, तो हमारा जो सोचने का तरीका है उसमें एक shift आता है। पहले जो हमारा सोचने का तरीका था वो body conscious होने की वजह से इट वॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमने सुना। हमें सब कुछ अचीव करना है, लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, हमें दूसरों से आगे जाना है, बाय हुक और बाय क्रूक मुझे तो जीतना है, एवरीथिंग इज फेयर
0: इन लव एंड वॉर,
1: सब कुछ हमने सुन लिया। और ये सब कुछ सुन सुन के हमारी प्रोग्रामिंग कैसी बन गई कि बस जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, प्राप्त करना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, छीनना है, इकट्ठा करना है। इसके रास्ते में अगर कोई भी आए तो उसको हमने गिराना है, हटाना है, बस औरों से आगे जाना है। तो ये सोच भी कुछ लोगों की बनी होगी पहले, ऐसे नहीं था कि सारी दुनिया ऐसा सोचने लग गई। ये सोच हमारी बनी कि मुझे और पाना है, इसके बीच में कोई रास्ते में आए तो उसको गिरा भी देना है, ये पहले नहीं था कॉन्सेप्ट। दूसरे को धक्का मार के आगे जाना है, ये कहीं कहीं ना कहीं किसी की शुरू हुई, फिर किसी और की ट्यून इन हुई उस फ्रीक्वेंसी पे, एंड टुडे द होल

0: दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, हु इज बेटर, आई और देम। जब हम किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, जब हम किसी की गलतियां भी बताते हैं, तो हम एक्चुअली कम्पीट कर रहे हैं ना उनके साथ।
1: कम्पीट और नफरत भी।
0: कॉम्पिटिशन इज अ वेरी सूक्ष्म थी। हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने आप को बता रहे हैं और औरों को बता रहे हैं कि आई एम बेटर देन देम। आई एम बेटर देन देम हैज बिकम अ वेरी डीप इनग्रेन्ड प्रोग्रामिंग। सी, मैंने उनके लिए कितना किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए ये किया, उन्होंने क्या किया, आई एम बेटर देन देम। मैंने कितना किया फिर भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, आई एम बेटर देन देम। मैंने इतना किया, उन्होंने तो ऊपर से धोखा भी दे दिया, आई एम बेटर देन देम। ये हमारे जीवन जीने का तरीका बन गया। And very soon, all of us were tuned into this frequency. And today we feel that this is the right way of living. Yehi jeevan jeene ka tarika hai. Lekin jitna atma bharti jayegi, jitna bharpoor hoti jayegi, hum khud anubhav karenge ki hum is frequency se hatte jayenge.
1: You mean to say santusht hote jayenge, contentment jitna aayega?
0: Jitni contentment aayegi, तो हमें ये समझ में आएगा कि जीवन जीने का तरीका ऐसे नहीं, ऐसे है। जीवन जीने का तरीका औरों के साथ रेस करना नहीं है, जीवन जीने का तरीका है हर एक को अपने साथ लेकर चलना है। ये जीवन जीने का तरीका है, ये हम बहुत पहले भूल चुके हैं सारे। ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो उस तरफ चली गई, देन वी सेड व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। जितना आत्मा भरपूर होगी, आप देखो वो ढूंढती रहेगी सारा दिन कि क्या मैं करूं, कैसे मैं किसी की सेवा करूं, किसको मैं कुछ दूं, किसको मैं हेल्प करूं, किसको मैं सहयोग दूं। वो नेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। जो फिजिकल चीजें भी हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें भी, जो पहले हमारी क्रेविंग थी कि ये मेरे पास और आ जाए, इसकी मेरे पास और आ जाए, और इतना है अभी और आ जाए, अपने आप फील होगा नहीं, अब तो मेरे पास इतना है, मैं किसके साथ ये शेयर करूं सारा। पहले नहीं सोचते थे, पहले तो और इकट्ठा कैसे करूं, कहां से और लाऊं। दिस शिफ्टिंग फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग, शिफ्टिंग टू शेयरिंग एंड गिविंग, ये शिफ्ट आएगा जितनी आत्मा भरपूर होती जाएगी उसमें। बचपन से अगर हम देखें, इवन व्हेन वी वर चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, कभी भी मिलजुल कर किसी कार्य के लिए कुछ करना, इट यूज टू गिव अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। कभी कुछ हम डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं सभी बच्चे मिलकर, कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जहां अहंकार नहीं आ रहा बीच में, जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ अनकंडीशनली लविंग, शेयरिंग एंड कमिंग टूगेदर।
1: हम लोग जब छोटे थे, साइकिल पे जाके स्काउट्स का यूनिफॉर्म पहन के गांव में जाके गांव के लड़कों के साथ वो वॉलीबॉल फुटबॉल ले जाते थे और चने मुरमुरे ले जाते थे, उनके साथ खाते थे और खेलते थे।
0: और ये बहुत अच्छी एक फीलिंग देता है, बिकॉज जब हम देने के मोड में शिफ्ट होंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलना है,
1: इसमें मेरा क्या,
0: जैसे आपने कहा वो गांव के बच्चों के लिए हम कुछ खाने के लिए छोटी छोटी चीजें ले जाते हैं, अब उसमें आपकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जब हम उनको ये खाने की चीजें देंगे तब वो भी हमें कुछ देंगे, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे ही बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई कर्म किया, मतलब सिर्फ दिया, तो आत्मा को कितनी खुशी और शक्ति का अनुभव होने वाला है। ऐसे ही कभी कुछ ट्रेजेडी होती है, कोई क्राइसिस होता है कहीं भी, सारा देश इकट्ठा हो जाता है कि हमें उस जगह के लिए कुछ करना है, तन से, मन से, धन से, जो स्किल हमें आता है, एवरीवन कम्स टुगेदर। ये है एक दूसरे के साथ सहयोग दे के एक कार्य को करना। इसमें जब सारी एनर्जीज इकट्ठी जुड़ती हैं, असंभव संभव कार्य हो जाते हैं, ये होते हैं। तो हम ये सब हम करते हैं, ये सारी विशेषताएं हमारे पास हैं, लेकिन फिर हम जब अब अपनी डे टू डे लाइफ में आते हैं, तब हम वो चना मुरमुरा अनकंडीशनली एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। हम गिनने लग जाते हैं, मैंने इतना दिया उसने दिया, मैंने इतनी बार दिया उसने रिटर्न में कुछ दिया, हम तब नहीं गिनते थे। जैसे ही हमने गिनना शुरू कर दिया और ये

0: करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या मिला, और फिर अगर मुझे नहीं मिला तो हर्ट होना, रिजेक्टेड फील करना नेचुरल था, और अगर मुझे नहीं मिला तो फिर अगली बार ना देना ये भी मुझे लगा कि बहुत नेचुरल है। और ये करने से हम अपने देने वाले मोड से शिफ्ट हो गए, एंड फिर वो जो देना है, ये जो लेन देन हमारा चल रहा था, ये सिर्फ फिजिकल चीजों में नहीं था कि कितना दिया, उसने कितना दिया, गिफ्ट कितने दिए, मैंने कितने का दिया, पिछली बार कितना दिया था, वो सिर्फ फिजिकल चीजों में नहीं था, वो सूक्ष्म चीजों में भी होने लगा, थॉट्स एंड फीलिंग्स के लेवल पर, कि उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, कितना रिस्पेक्ट दी, कितना मेरा कहना माना, कितनी मुझे अप्रिसिएशन दी, उन्होंने मुझे कितना क्रिटिसाइज किया तो मुझे भी क्या करना चाहिए। थॉट्स एंड फीलिंग्स के लेवल पर भी हम सारा दिन एक दूसरे के साथ लेन देन करने लगे, और जब हमें लगा हमने दिया और हमें वहां से नहीं मिला, हमने अपने देने वाले गेट को बंद कर लिया,
1: मान सम्मान भी बंद कर देते हैं,
0: रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो दिस वी हैव टू चेक कि हम देने वाली आत्मा है।
1: हम लोग को बचपन में एक कहानी सुनाते थे कि एक ब्राह्मण रोज नहाने जाता था, तो सबको राम राम, नमस्कार, राम राम, और जो भी उसको नमस्कार वापस करता था उसको आशीर्वाद देना रोज, और एक आदमी को रोज वो बोलता था और वो जवाब नहीं देता था। तो बच्चों ने उसको पूछा, आप पंडित जी इसको क्यों करते हैं, एक दिन, दो दिन, महीना? तो वो कभी बदलता ही नहीं है। तो वो बोला कि अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता है राम राम नमस्कार का जवाब नहीं देने का, तो मैं अपनी आदत उसके लिए क्यों
0: छोड़ू,
1: मैं तो कंटिन्यू करूंगा।
0: मतलब
1: बट ये मुझे कहानी लगी, मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है यार, आई थॉट इट्स सेल्फ को डिसरेस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ।
0: वी डिसरेस्पेक्ट आवर सेल्फ व्हेन वी डू नॉट लेट दैट व्हाट इज आवर नेचुरल फ्लो थ्रू अस। ये हमारी अपनी स्व के प्रति डिसरेस्पेक्ट है कि ये मेरी विशेषता है, मुझे ये करते जाना है, लोगों की तरफ से जो भी आए मेरी विशेषता कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई भी आकर मुझे मेरी विशेषता से हिला देता है तो वो मेरी विशेषता रही कहां, फिर वो फिर क्वालिटी नहीं है ना, वो तो फिर दूसरों के अच्छे होने की वजह से मेरी क्वालिटी है, वो फिर मेरी क्वालिटी नहीं है। अगर जैसे आपने यही कहानी बताई कि पंडित जी नमस्ते करते थे, बाकी लोग भी नमस्ते करते थे, राइट, और एक नहीं करता था, अगर पंडित जी उस एक के नहीं करने से उसको नमस्ते करना बंद कर देते हैं, तो फिर लोगों को ग्रीट करना और आशीर्वाद देना उनकी विशेषता नहीं है, वो उनका सिर्फ वो कर्म था, क्योंकि लोग उनको नमस्ते कर रहे थे तो वो भी कर रहे थे, लोग अच्छे थे उनके साथ तो वो भी अच्छे थे। अच्छे के साथ अच्छा होना ये विशेषता नहीं है, ये तो दूसरे को कॉपी करके कोई भी कर सकता है, लेकिन सामने कुछ भी हो उसमें अपनी सही पर खड़े रहना, तब वो हमारी विशेषता है, नहीं तो वो दूसरे की एनर्जी का सिर्फ रिटर्न है, वो हमारी अपनी क्वालिटी नहीं है। जो देना बंद कर देता है वो अंदर घुट के खत्म हो जाता है, पानी अगर फ्लो करना बंद कर दे स्टैग्नेंट हो जाएगी, पेड़ पौधे देना बंद कर दे खत्म हो जाएंगे। मनुष्य आत्मा ने देना क्यों बंद कर दिया, और देने से तो वो लेने के मोड में शिफ्ट हो गया।
1: एक स्कूटर खरीदी थी मेरे बड़े भाई और मैंने, तो उसका एक स्टेपनी था पीछे टायर, और उसने कभी अपना सुख देना स्कूटर को और अपना कर्तव्य करना वो टायर ने कभी किया ही नहीं, क्योंकि जिस दिन से खरीदे थे कभी पंक्चर ही नहीं हुई,
0: राइट,
1: दो टायर अच्छे रहे, वो कड़क होके टूट टूट के प्रॉप हो गया, उसके पीसेस गिरने लगे,
0: राइट,
1: जड़ हो या चेतन हो, यूज इट और लूज इट,
0: वेरी ट्रू, योर क्वालिटीज, यूज इट और लूज इट,
1: जस्ट लाइक मसल्स,
0: यस,
1: आप यूज नहीं करोगे वो मसल में दर्द होते होते वो मर ही जाता है,
0: एंड इफ जस्ट बिकॉज दूसरे लोग नहीं यूज कर रहे कि दूसरे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, ये करने से नुकसान किसका होगा, ये हमारा होगा। तो सारा दिन में चेक कि ऐसे नहीं खड़े हैं, मुझे क्या मिल रहा है सबसे, मुझे क्या देना है, देने से मेरा बढ़ता है। आप देखो पशु पक्षी प्रकृति वो देते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में एक ही

0: फर्क है, उनके अंदर ये थॉट नहीं आती मैंने दिया इन्होंने मुझे क्या दिया। अगर ये पेड़ गिनने लगे आज, हम यहाँ आए पूरा दिन हमने इस वृक्ष के नीचे शूटिंग भी की, हमें छाया भी मिली, ऑक्सीजन भी मिला, सब कुछ हमें मिला, हमने इसको क्या दिया, हमने तो पानी भी नहीं डाला, और ही हमने कुछ यहाँ से तोड़कर खा ही लिया होगा, किसी ने पत्थर भी मार दिया होगा। लेकिन पेड़ ने अपना काम देना का रुका नहीं, कि पेड़ के अंदर वो थॉट नहीं आती है कि मैंने इतना दिया इन्होंने मुझे क्या दिया। सेम विद एनिमल्स, क्यों आज पेट्स इतने पसंद आते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये थॉट नहीं आती है मैंने इतना दिया। हर्ट हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, वो हो सकता है, लेकिन ये थॉट नहीं आती कि मैंने किया इन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये थॉट जहां आती है तो हम अपने देने के नेचुरल कार्य से रुक जाते हैं, और तब जैसे आपने अभी पढ़ के सुनाया वो यूनिवर्स माइंड के अंदर इंटरकनेक्टेड है। अब जब हमें समझ में आ गया कि सारे माइंड्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो इंटरकनेक्टेड में एनर्जीज फ्लो करनी चाहिए ना, फ्लो करनी चाहिए ना सारे। अब इसमें अगर हम सब आत्माएं एक एक भी ये जिम्मेवारी उठाकर कि मुझे सिर्फ देने के मोड में आज जाना है, बाहर घर जाना है, फैमिली के साथ, ऑफिस में लोगों के साथ ट्रैवल करते हुए, स्ट्रेंजर ऑन द रोड, कोई भी मिल जाए, मुझे देना देना और देना है, हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे थोड़े दिन के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। इट विल हैपन, वी विल ऑल एक्सपीरियंस इट इफ वी ओनली स्टार्ट डूइंग इट। हमारी शिफ्ट हो जाएगी। लेने में सिर्फ जितना हम मेहनत करके एक्वायर करेंगे उतना ही बढ़ेगा, लेकिन देने में जितना हमने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये है हमारा एक दूसरे को सहयोग देना, एंड इसमें सबसे बड़ा सहयोग है एक दूसरे को दुआएं देना, एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे को मतलब जो कुछ हमारे पास है लेट्स शेयर इट विद एवरीवन। उसमें हमारी भी उन्नति, सामने वाले की उन्नति, पूरे विश्व में हम एक प्योरिटी के लेवल तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू स्टार्ट डूइंग। इट्स समथिंग विच वी रियली मूव्ड अवे फ्रॉम आर नेचुरल सेल्फ सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि लेना, छीनना, हड़प ही लेना दूसरे की चीज को। वी शिफ्टेड टू मच फ्रॉम आर ओरिजिनल सेल्फ। वेयर हैव वी रीच? अक्यूमुलेट करके उसको अंदर पकड़ के रख लेना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। आज अपनी नॉलेज भी नहीं शेयर करना चाहते, अपना स्किल भी नहीं शेयर करना चाहते, आई एम द बेस्ट ना। अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे इस मोड में जाएं कि हमें सबको देना है, सबको आगे बढ़ाना है, ये अगर हम रोज जब हम काम पे जाते हैं अपने जॉब और प्रोफेशन में, बिजनेस में, जहां हमारे अंदर डीप इनग्रेन्ड है कि वहां तो कॉम्पिटिशन ही है, डीप इनग्रेन्ड है कि कॉम्पिटिशन है, हमें सबसे आगे जाना है, अगर ये वहां हम प्रैक्टिस करने की शुरू करें कि मैं वहां औरों के साथ कम्पीट करने के लिए नहीं, औरों के साथ कोऑपरेट करने के लिए जा रहा हूं, मैं आत्मा, मुझे किसी से रेस में आगे नहीं जाना है, सबको अपने साथ आगे लेकर चलना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफिस में बीतता है ना, काम पर बीतता है, वो एक ब्यूटीफुल एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम शाम को अपनी शक्तियों को बढ़ाकर घर आएंगे, क्योंकि हमने पूरे दिन में इस मोड में हम रहेंगे कि हमने देना है, और जितना दिया होगा उतनी दुआएं रिटर्न में हम अक्यूमुलेट करेंगे। और अगर हम सारा दिन इस मोड में जाते हैं मुझे इसके आगे निकलना है, ये निकला कैसे, इसने किया कैसे, तो शाम तक आते आते हमारी स्थिति कैसी हो जाती है। वाई आर वी सो डिप्लीटेड टूडे? बिकॉज वी आर रनिंग अ रेस। जो आत्मा हर रोज रेस में ही रहेगी वो थक तो जाएगी ना आत्मा। एक मीटिंग में भी अगर बैठे हैं, कोई करके देखे इसको, हम करके देखते हैं सेंटर्स पर, कि अगर हम एक मीटिंग में बैठे हैं, सपोज हम पांच लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है अपना फैक्ट जब प्रेजेंटेशन कर रहा है, बाकी सब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट चल रहे हैं उनके माइंड?
1: बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि मैं जब अपना बोलूंगा मैं क्या क्या बोलूं,
0: मैं उससे अच्छा क्या सुनाऊं, मतलब आई एम इन अ रेस।
1: हर जगह,
0: हर जगह,
1: खाना पकाने में, खाने में, उठने में, बैठने
0: में, उससे
1: गलत काम में भी रेस।
0: अच्छा, अब एक दिन ही एक्सपेरिमेंट करके देखें।

0: कि अगर हम पांच लोग बैठे हैं, कोई एक अपना कुछ प्रेजेंट कर रहा है, चाहे जैसे आपने कहा सोशल सर्कल में, चाहे प्रोफेशनल सर्कल में, वी सिट बैक एंड हम परमात्मा से कनेक्टेड अंदर उस आत्मा को एक पावरफुल थॉट भेजें कि इसका बहुत अच्छा हो ये जो कर रहा है, इसको इस टाइम बिल्कुल सब राइट टच हो कि इसको सही सही इस टाइम क्या बोलना है यहाँ पर, ये थॉट भेजो और अंदर देखो चेकिंग कैसा फील होगा। ये हम जो यूनिवर्स माइंड में कनेक्टेड हैं, तो वो आत्मा जो प्रेजेंटेशन दे रही है और मैं आत्मा जो बैठकर सुन रही हूँ, हम कनेक्टेड है ना, तो क्या हमारा सहयोग ये नहीं होना चाहिए कि वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनका बेस्ट होना चाहिए अभी? तो हम कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? अब अगर हमने इसके ऑपोजिट वाइब्रेशन भेजी, जैसे आपने कहा मैं इससे बेटर करूं, मेरा प्रेजेंटेशन इससे अच्छा होना चाहिए, तो हम उसको प्रेजेंटेशन देते समय कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि तेरा गड़बड़ हो जाए?
1: सही बात,
0: मेरा तेरे से बेटर होना चाहिए। सो व्हाट आर वी सेंडिंग इनटू दैट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क?
1: आई विश नोबडी पीपल क्लैप फॉर मी मोर।
0: सही,
1: क्या तालियां बजी मेरे बाद।
0: अब ये अगर हमें सारा दिन याद रहे कि हमारी थॉट्स का इफेक्ट सामने वाली आत्मा पर पड़ रहा है, अगर हम ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, इसको टचिंग हो कि इसको राइट क्या बोलना है, अभी रिलैक्स्ड रहे, बेस्ट अपना परफॉर्म करे, तो हमारे थ्रू अच्छी एनर्जी जा रही है, दैट विल हैव अ गुड इफेक्ट ऑन मी, सामने सब पर उस एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा, और फिर वो जो सामने वाली आत्मा है उसको जब सबकी इतनी अच्छी एनर्जी आएगी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये है इंटरकनेक्टेडनेस। और यही अगर वो टेबल पे चार लोग बैठे हुए ये वेट कर रहे हैं कि हम इससे बेटर क्या बोलेंगे, या अगर उस सामने वाले का अच्छा हो रहा हो प्रेजेंटेशन तो एक डाउट क्रिएट करेंगे, इसका इतना अच्छा हो रहा है तो फिर मेरा क्या होगा, तो हम सब एक दूसरे को कौन सी एनर्जीज भेज रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म है, बट दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड। ये हमें ध्यान रखना है सारा दिन, इवन हर आत्मा के लिए और पूरी सृष्टि के लिए। अगर हम बार बार कहेंगे दुनिया की हालत देखो कैसी हो गई है, यहाँ भी गलत, ये भी दर्द, वो भी, तो हम क्या एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं इनटू द यूनिवर्स? दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल बिकम। क्यों ना हम सारा दिन ये ध्यान रखें कि मैं विश्व को कौन सी वाइब्रेशन दे रहा हूँ। एट द ब्रह्मा कुमारीज हमारा इवनिंग का टाइम 6:30 to 7:30 डेली सब सेंटर्स पर, ये जो टाइम ऑफ मेडिटेशन है वो है सारे विश्व को और सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने का समय। सुबह का जो समय हम मेडिटेट करते हैं वो है अपने लिए कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर अपने अंदर पावर भरनी है, लेकिन शाम को 6:30 to 7:30 खास इस लक्ष्य से बैठा जाता है कि पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को, इस ग्लोब पे हर आत्मा को हमें परमात्मा से वाइब्रेशन ले सबको देनी है। वी हैव टू टुगेदर क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू वर्ल्ड।
1: हाउ वेरी ब्यूटिफुल। बट कितनी ये मतलब दुआएं धरती को देना, प्रकृति को देना, सारे लोगों को देना, विश्व को देना, तो अपने अंदर कितना फिल होता होगा ना।
0: बिल्कुल। एंड लेकिन वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ बिगर पिक्चर। यू नो जब मैं दोनों तरफ को देखती हूँ कि एक साइड हम बैठे हैं लोगों के साथ, ये दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है, दुनिया में कुछ रहा नहीं, ये एक वो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, और एक तरफ मैं ये देखती हूँ सेंटर पर जब ये सभी बहनें भाई इकट्ठे बैठते हैं, ये विश्व में प्योरिटी फैल रही है, द वर्ल्ड इज गेटिंग गॉड्स लव, गॉड्स पीस। सर इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। It's such a beautiful feeling, rather than sitting with five people and complaining about how the world is. हमारी अपनी consciousness में एक shift आता है। हम भी पहले ऐसे ही दुनिया के बारे में गलत बात करना, सब negative ही देखना, now instead of complaining, जो है उसकी शिकायत करने की बजाय क्यों ना जिम्मेवारी उठाकर एक नई दुनिया क्रिएट करें। Contribute with your thoughts and feelings to create that beautiful world.
1: उसके बदले में जो फल मिल रहा है आपके रूहानियत और चेहरे पर रूहानियत
0: तो है,
1: और प्यार लेना, प्यार देना, और सारी दुनिया इसे सम्मान ही मिलेगा ना इसके बदले में।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप सारी दुनिया को सम्मान दे रहे हैं।
1: वंडरफुल सिस्टर, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: आवर माइंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू आवर थॉट्स।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर,

0: So tech, it stays on my mind and it comes back to my mind later on.
1: शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी. मतलब माय माइंड, ये हमारा एक्सरे है.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
3: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं।

0: अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दगड़ास मंडपी थांब लगसू वहा मोटो दगड़ास मंडपी थांब लगसू वहा मोटो दगड़ास मंडपी थांब लगसू वहा मोटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर, आनंदी रहा, आनंदवान.
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन। तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

फिर आप क्या हैं? है? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल है किसी बाग के, सयाद नहीं है।

0: पकड़ा, एक पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे रखो।
1: अरे अरे अरे भैया ना छोड़ो।
0: और ठहर जा बाबी।
1: अरे सारे शराबी क्या हो राजा,
2: गली में आ जाओ।
3: होली होली
4: भांग की गोली, ओ नखरे वाली,
1: दूंगी मैं गाली।

0: प्यार क्यों न होगा ये अदाए उफ यम्मा
1: ये मौसम उफ यम्मा।

नगर है, मंजिल है मुश्किल, गिरने का डर है, पर न रुकेंगे, चलते चलेंगे, ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आकारी।

अय्या करूं मैं क्या सुख सुख, अय्या करूं मैं क्या सुख सुख, हो गया दिल मेरा सुख सुख।

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।